भोर सुहानी आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। किसी से क्या कहें, किसी से क्या सुने, अब गुबार हो गए हम ही, हवा की जद में थे हम ही शिकार हो गए। हमें तो एक उम्र से पड़ी थी अपनी जान की, अभी जो साहिलों पे थे कहां से पार हो गए। हम ही हवा की जद में थे हमें शिकार हो गए।

भोर सुहानी, आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। नाकाम है असर से दुआएं दुआ से हम, मजबूर हैं कि लड़ नहीं सकते खुदा से हम। चाहोगे तुम ना हमको ना छूटोगे हमसे तुम, मजबूर तुम जफा से हुए हो वफा से हम। तुमसे बिगाड़ इश्क में होना अजब नहीं, तुमसे बिगाड़ इश्क में होना अजब नहीं।

और चलिए भोर सुहानी में चलते चलते आपको सुनवाने जा रहे हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत, और इसी के साथ आप

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 33 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब समय है कार्यक्रम विवरण का। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 6:10 का समय होगा कार्यक्रम अर्पण का। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात। 8:45 का वक्त होता है म्यूजिकल दिल्ली दिल्लगी का। 10:30 पर आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स। 11:10 पर तस्वीर कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप पटना बिहार के बारे में जानेंगे। 1:10 पर कलाकार बेमिसाल, आज अभिनेता निर्माता निर्देशक राजीव कपूर को आप के बारे में आप जान सकते हैं। 2:15 पर दोपहर समाचार। 2:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम संगीत.com, जिसे प्रस्तुत करेंगी अंजलि। 3:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मन भावन। 4:20 पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज। 4:30 पर परिक्रमा। 5:10 का वक्त है गाते गुनगुनाते। और 6:10 पर आप सुनेंगे विश्लेषण। पर सांझ ढले। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार। 8:10 पर मधुरिमा। और 8:45 का समय है समाचार संध्या का। 9:45 पर मंथन। 10:30 पर हर श्रृंगार। और 11:40 पर गीत मेरे मन में। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 2 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं।

0: वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन बीएल संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का दो दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। दो दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in their countries of posting and deepen India's connection with local communities, interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service IFS at Sevatirth. Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. He encouraged them to combine India's civilizational strengths with technology, innovation and effective communication to further strengthen India's global management. The Prime Minister called upon the officer trainees to serve as catalytic agents for India's economic engagement with the world. He also emphasized the importance of strengthening the digital presence of Indian missions. He said that a website is often the first gateway through which people interact with an institution and called for greater use of technology to make the delivery of consular and other services more seamless, responsive and citizen-centric. Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. To effectively tackle terrorism and radicalization, Mr. Shah emphasized training for implementation of the Home Ministry's Prahar scheme, expediting trials by bringing back fugitives and utilizing trial in absentia provisions and undertaking a comprehensive and integrated approach while investigating UAPA cases. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia, Vinay Kumar, enjoined

ईश्वर के साथ जुड़े रहने का सर्वोत्तम मार्ग ध्यान और प्रार्थना है। इसीलिए अगर देखनी और महसूस करनी है इसकी कृपा तो कीजिए अर्पण। जी हाँ, ये मंगल की प्रभात है, मंगल की मुक्ता के साथ है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर ये वक्त है अर्पण का। सुप्रभात।

इस मन को अर्पण में लगाना है। भगवान शिव जो घट घट में रमी हुई परम चेतना है, महादेव की सच्ची भक्ति मन की पवित्रता से ही संभव है। शिव भक्त जीवन की नश्वरता को समझते हुए अहंकार से दूर रहते हैं। जब मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं तो फिर अहंकार किस बात का।

स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जीवन में चुनौतियां सभी के सामने आती हैं। ऐसे समय में घबराने की बजाय ईश्वर पर विश्वास, सकारात्मक सोच और आत्मबल बनाए रखना जरूरी है। आस्था से हमारा मन स्थिर होता है, मुश्किल का सामना करने की शक्ति आती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रार्थना में शक्ति है, अर्पण में आनंद है।

0: मेरा आप ही की कृपा से सब काम हो रहा है। अर्पण का ये भाव बना रहे, अर्पण के इस भाव को और आगे बढ़ाते रहे। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

असीम शक्ति के साथ विनम्रता, साहस और निष्काम कर्म। जी हाँ, ऐसे ही जीवन जीकर प्रेरणा दी है श्री हनुमान ने, जिनका पूरा जीवन भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था। मंगल की इस प्रभात श्री हनुमान को नमन।

स्वयं को ही सुधारे, सच्चा वही सुधारक है। कर्म जिसका बोलता है, सफल वही प्रचारक है। हर पल हर क्षण जिस बंदे ने खुद को ही समझाया है, सदा उसी बंदे के वचनों में असर आ पाया है। सचेत रहने वाला जन ही संभल संभल कर चलता है, काजल की कोठरी से बच के साफ निकलता है। पाक साफ है दामन जिसका, वो बंदा बेदाग है। इस दुनिया में दूसरों के धो सकता वो दाग है। उसके लिए है सब कुछ अच्छा, खुद अच्छा बन जाता जो कहे हर देव गुरु की शिक्षा जीवन में अपनाता जो। जो वचन बोलते हैं वो कर्मों में भी बने रहें। अपने आप को सुधारें तो सब अपने आप सुधर जाएगा। 6:44 और ठीक 8 सेकंड हो चले हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है और अब समय है श्री रामचरितमानस के पाठ का। आइए मिलकर श्रवण करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ।

समर्पण का भाव जब मन में आ जाता है तब यही शब्द निकलते हैं जुबान से और यही भाव बन जाता है जीवन में। लिखा गया है जो स्वयं

गंगा तट पर श्री राम तथा सीता को रात्रि विश्राम के लिए धरती पर सोते देख निषाद राज को बहुत दुख हुआ। उनके आहत मन को सांत्वना देने के उद्देश्य से रात भर लक्ष्मण ज्ञान वैराग्य की मीमांसा करते हुए भक्ति का उपदेश देते रहे। इस प्रकार श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए सवेरा हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम ने बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देख सुमंत्र की आंखों में आंसू उमड़ आए। महाराज दशरथ ने उन्हें यह कहकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ भेजा था कि वन दिखाकर गंगा स्नान करा वो उन्हें साथ अयोध्या लौटा लाएं। श्री राम को महाराज का यह संदेश सुनाकर सुमंत्र बालकों की भांति रो पड़े। राम ने अपने चरणों में गिरे सुमंत्र को उठाकर उन्हें धीरज बनाते हुए कहा, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का अध्ययन मनन किया है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म पालन का अवसर सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठावान व्यक्ति के लिए अपयश तो करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला होता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ। आइए अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार सुनें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युवकूटनीतिज्ञान् स्वनियुक्ति देशेषु जनस्तरे दृढसंपर्कं स्थापयितुं तथा स्थानीय समुदायैः सह भारतस्य संबंधान् अधिकं सुदृढीकर्तुं च प्रेरितवान्। सेवातीर्थे भारतीय विदेश सेवायाः गतवर्षीय समूहस्य प्रशिक्षु अधिकारिभिः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी तान् पारंपरिक कूटनीतिक वृत्तेः परे स्वसंपर्क जालस्य विस्तारं कर्तुं अथ जनैः सह संपर्कं च सुदृढीकर्तुं प्रोत्साहितवान्। असौ भारतस्य रिक्थ सम्बद्ध शक्तीनां प्रौद्योगिक्या नवोन्मेषेण प्रभावी संप्रेषणेन च सह संयोजनं कृत्वा भारतस्य वैश्विक संपर्कं अधिकं सुदृढीकर्तुं प्रेरितवान्। असौ भारतीयोपक्रमाणाम् अंकीयोपस्थितिं सुदृढीकर्तुं महत्त्वमपि प्रतिपादितवान्। विश्वस्य युवकेषु भारतं प्रति अधिकरुचिं जनयितुं भारत को जानिये इत्येतस्य प्रश्नोत्तर कार्यक्रमस्य उपयोगस्य असौ परामर्शं प्रदत्तवान्। प्रशिक्षु अधिकारिभिः स्वप्रशिक्षणस्य भारतदर्शनस्य च अनुभवाः अभिव्यक्ताः। अस्मिन् समूहे देशस्य विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च आगताः 50 भारतीय विदेश सेवा प्रशिक्षु अधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सर्वेभ्यः संस्थानेभ्यः अन्तःप्रवेशस्य विरुद्धं कठोर पदक्षेपाणि स्वीकर्तुं निर्देशं दत्तवान्। नवदिल्ल्यां ऐषमः नवम राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वन् श्री शाहः निर्देशितवान् यत् बहुसंस्थान केन्द्रस्य मञ्चे उपलब्धानां सूचनानां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः आधारेण विश्लेषणं करणीयम्, येन विविध राष्ट्रिय सुरक्षाह्वानानां प्रतिकाराय मानक संचालन प्रक्रियाः निर्मातुं शक्यन्ते। सम्मेलनस्य प्रथमदिने राष्ट्रिय सुरक्षायाः महत्वपूर्णेषु पक्षेषु चर्चा अभवत्। तेषु आतंकवाद विरोधी आह्वानानां प्रतिकारः, बहुसंस्थान केन्द्र माध्यमेन गुप्त सूचनानां एकीकरणं, विश्लेषणं कार्यान्वयनं च मादक द्रव्याणां नियन्त्रण सम्बद्ध दृष्टिपत्रं, अवैध प्रवासिनां परिचयः निर्वासनं च तथा तेषां प्रतिकाराय नीति निर्माणं इत्यादयः विषयाः सम्मिलिताः आसन्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः क्रेमलिन इत्यत्र रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। उपवेशने द्विपक्षीय व्यापारः, आर्थिक सहयोगः अथ आगामि उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनानि चेत्यादिषु विषयेषु चर्चा अभवत्। रूस स्थितः भारतस्य राजदूतः विनय कुमारः एवं च संयुक्त सचिवः मयंक सिंहः अपि भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य सदस्यौ आस्ताम्। उपवेशनावधौ डॉ एस जयशंकरेण विशेषतः आर्थिक सहयोगे, व्यापार क्षेत्रे अथ ऊर्जा क्षेत्रे च भारत रूसयोः सहमतिं सुदृढीकर्तुं प्रतिपादितम्। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदाता अजीत डोभालः ह्यः चीनस्य द्विदिवसीय यात्रायै बीजिंग नगरं प्राप्तवान्। असौ अद्य स्वीय चीन देशस्य समकक्षेण विदेशमन्त्रिणा वांगी इत्यनेन सह उभयोः देशयोः सीमा विवाद सम्बद्ध विषये विशेष प्रतिनिधीनां वार्तायाः 25वें चरणे भागं ग्रहीष्यति। ह्यः वार्ताहर सम्मेलने विशेष प्रतिनिधीनां वार्ताम् उद्घोषयन् चीन देशस्य विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता लिन जियान उक्तवान् यत् डोभालः, वांगयी च सीमा विवादस्य अतिरिक्तम् अन्येषु विषयेषु अपि घनचर्चां करिष्यतः। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य एम्स्टेलविन नगरे आयोजिते FIH इत्यस्य विश्वचषकस्य पूल क्रीडायां भारतीय पुरुष दलं अर्जेंटीना दलेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने उन्हें पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। 2 दिन की इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा महासचिव BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य

एक नई सुबह का नया सवेरा, जहां जीवन का एक और नया पन्ना खुला है। जी हाँ, आइए शुक्राने के साथ इस पन्ने पर उकेरें खूबसूरत रंग। गोल्ड सुप्रभात है आप सभी को, मंगल की प्रभात, मंगल की मुक्ता के साथ।

जनाब उठ जाइए, क्योंकि अब ख्वाबों को हकीकत में बदलने का समय है। सुबह का वक्त बहुत सारी प्लानिंग का तो है ही, लेकिन जिस तरह के ख्वाब में खूबसूरत सा माहौल, पहाड़, बादल, झरने हम देखते हैं ना, कुछ वैसा ही माहौल इस वक्त दिल्ली में बना हुआ है। कल की तेज बारिश के बाद इतनी खूबसूरत सुबह हुई है ना आज, अगर आपने वो नहीं देखी आज तो बहुत कुछ मिस करेंगे। आज का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आज भी दिल्ली में हल्की बारिश होगी। सूर्योदय 5:55 पर हो चुका है और सूर्यास्त का समय 6:50 का है। इस मौसम का लुत्फ उठाइए, आनंद लीजिए, घर की खिड़की पर बैठकर या फिर किसी खूबसूरत से बागीचे में जाकर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आज की सुबह को तो देखो, जैसे कोई बहार लेकर आया है। आज अपने दिल से तो पूछूं, जैसे उस पर कोई खुमार छाया है।

इस खूबसूरती को अपने मन में भी बसा के रखना है जनाब। अपने मन की स्थिति को परस्थिति से यानी कि बाहर की स्थिति से अफेक्ट होने ही नहीं देना है। अरे जो चीज बाहर की है उसे अंदर आने क्यों दें? अपने अंदर की दुनिया हम बना कर रखेंगे। बाहर पे बस नहीं है तो क्या हुआ? मन में अगर खुशी है तो सब कुछ ठीक है। इस मन को संभाल करके रखिएगा और खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। लीजिए गीत का आनंद गोल्ड सुप्रभात में।

इस दिल को बेचारा मत रखिएगा। सुनते रहिए गोल्ड सुप्रभात। और अब समय हो चला है समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। मुक्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, ये जो सुर अभी अभी आपकी रूह को छूकर गुजरा है, यही सुर हमारे इस देश की धड़कन है, हमारी अनेकता में एकता की पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज सुबह सुबह हमने इस कालजयी धुन से शुरुआत क्यों की? इसका जवाब छुपा है हमारे कार्यक्रम के सबसे आखिरी सेगमेंट में, जहां हम इस अमर धुन को तैयार करने वाले दिग्गज संगीतकार अशोक पटकी जी का जन्मदिन मनाने वाले हैं, और इसके साथ हम अन्य कई शख्सियतों को भी याद करेंगे। वक्त और यादों के इस हसीन सिलसिले को जोड़ते हुए किसी ने क्या खूब लिखा है कि वक्त बदलता है मगर यादें अपनी जगह रहती है। सुबह की ताजगी कल के इतिहास की गवाह बनती है, और इसी खूबसूरत ताजगी के साथ शुरू करते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे। तो श्रोताओं, खबरों, मौसम और यादों से सजा आज सवेरे का यह खूबसूरत कारवां अब शुरू होने जा रहा है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और मेरी सहयोगी है शगुन चोपड़ा।
1: नमस्कार लिसनर्स, दिस इज मी शगुन चोपड़ा विद जया टुडे। दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, एंड वेल वी आर हियर एंड वी आर लाइव कीपिंग यू कंपनी थ्रू अर्ली कम्यूट। टुडे इट्स ट्यूसडे ऑगस्ट 25th, and a very good morning to all of you. Well, we are beginning with the headlines first. We have Metro City updates, and we will be exploring today's history in great detail today. And as Jaya told you, there are so many personalities that we will be telling you about. We have songs which we have gathered, and there is so much interesting stuff that we have lined up for you. And this is our way of telling you, stay tuned till the next half an hour, till 8 a.m. with us and beyond as well, because we have a lot of great news and stuff for Shagun. You. We are first beginning with the headlines now.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा IFS के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने उन्हें पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने और लोगों के साथ जुड़ाव को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए प्रेरित भी किया।
1: Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges and to effectively tackle terrorism and radicalization. Mr. Shah emphasized training for implementation of the Home Ministry's Prahar scheme and expediting trials by bringing back fugitives and utilizing trial and absentee provisions and undertaking a comprehensive and integrated approach while investigating UAPA cases.
0: शगुन, गृह मंत्रालय से जुड़ी एक और खबर है मेरे पास। दरअसल केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया है कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 30,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।
1: The government has lifted export restrictions on wheat flour and related products, opening the way for overseas shipments of atta, maida, semolina and other wheat-based products, according to the notification issued by the Directorate General of Foreign Trade. The government has amended the export policy for wheat flour and related products with immediate effect. In a separate notification issued by the Directorate General of Foreign Trade, the government has also changed the export policy for specified wheat and durum wheat categories from prohibited to free.
0: राजनीतिक मैदान से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन BAL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं।
1: And now let's tell you about Union Finance Minister Nirmala Sitharaman's official visit to Canada and the United States, which begins today. The Finance Ministry said the focus of the visit will be on strengthening bilateral, economic and financial partnerships, deepening investment linkages and advancing cooperation on shared global economic priorities. So during her visit to Toronto, Ms. Sitharaman will participate in the inaugural economic and financial dialogue with a Canadian counterpart, François-Philippe Champagne.
0: और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे।
1: Onam is being celebrated with full festive fervor. Kerala is celebrating Uthradam today, the penultimate day of the 10-day Onam festival, as the state prepares to welcome Thiruvanam tomorrow. We have more details and a detailed report actually from our correspondent. Listen in.

0: प्रक्रिया को दो चरणों में पूरी की गई है।
1: ओके, सो नाउ ऑन टू वेदर। इन दिल्ली इट हैज बीन रेनिंग इनसेसेंटली, हैविंग विटनेसेस इट टुडे एक्चुअली एट द आकाशवाणी हेडक्वार्टर्स, वी हैव डन दैट। Meanwhile, the India Meteorological Department IMD has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh today. The Met Department has forecast heavy rainfall over Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Madhya Maharashtra, Vidarbha, Sub-Himalayan West Bengal, Northeast India, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Coastal Karnataka, Kerala and Mahi. And well, yes, Jaya, these sounds, they bring, they paint quite a picture. We can hear them, we can visualize rain, having witnessed it today with our eyes. So according to IMD, thunderstorm accompanied with lightning and gusty winds may prevail over East Rajasthan, Odisha, Andhra Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and Karnataka also today. Well, rain activity in Odisha is likely to ease from today, though the impact of the active low-pressure system over the Bay of Bengal continues to be felt in several parts of the state. And we have a detailed report now. Let's listen in.
2: The low-pressure area over the Bay of Bengal remains active and is continuing to influence weather conditions over Odisha. Moderate rain is likely in several areas, with north coastal districts expected to receive rainfall. However, the IMD says rainfall activity will decrease from today, though rain is likely to continue till 30th of this month. A orange warning has been issued for 6 districts till this morning, while a yellow warning has been issued for 16 districts. In flood-affected Bhadrak and Jashpur, a large number of vulnerable schools are closed today as a precaution amid continuing rain and waterlogging. Meanwhile, the Baitarani at Akwapada is still flowing above the danger mark, though the water level is showing a declining trend. At 6 this morning, it was reported at 18.44 meters against the danger level of 18.33 meters. Mahanadi is also rising due to opening of more gates in Hirakud Dam, while Jalaka River is also flowing above the danger level. Authorities are maintaining close vigil in vulnerable areas. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: और अब बात कुछ खेल खबर की। दरअसल कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। नई दिल्ली में इस महीने की 28 से 30 तारीख तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं जयंती के अवसर पर परंपरा से प्रतिभा विषय पर 3 दिन का भारत संस्कृति यात्रा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और वाद्य कलाओं की प्रस्तुतियां होंगी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डीडीयूके सहित कई विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में पंडित अविनाश कुमार, डॉ सुनीता टिकारी, पंडित राम कुमार मिश्रा, सुमंत और मालवी मंजुनाथ सहित कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। कथक और विभिन्न वाद्य प्रस्तुतियां भी समारोह का हिस्सा होंगी। तो बहुत ही रोचक और रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है ये। और बिल्कुल अशोकन, इस आयोजन का उद्देश्य ही यही है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को किस तरह से संरक्षित किया जाए और इसे नई पीढ़ी के साथ जोड़ा जाए। तो सभी नई पीढ़ी से यही आशा होगी कि इस कार्यक्रम में वो जरूर भाग।
1: Yes. Now we are heading to Bengaluru, Jaya. The Greater Bengaluru Development Minister Krishna B. Gowda has initiated action against vacant plots in the state capital. He has directed the officials to identify dirty vacant plots in all the 5 city corporation zones and serve notices to the owners to take up cleaning work. If they do not comply, the minister has asked the corporation to clean up such plots and recover the cost from the owners. He has informed that only around 20% of owners have complied with the notices and taken up cleaning work. He has authorized the municipal marshals and junior health inspectors to serve notices to the owners and thereby initiate the cleaning work. The minister has called upon the citizens to report dirty vacant plots and upload them on Clear It mobile app. The app is Clear It. Now, where are we heading to, Jaya?
0: Ab chalte hain Maharashtra ki or, yani Mumbai. महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 2026-27 में अब तक 24,40,000 से अधिक महिलाओं को लाभ मिल चुका है।

0: राज्य सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करने के लिए कार्यरत है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को पहले बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रूपए मिलते हैं और यदि दूसरा बच्चा लड़की है तो 6,000 रूपए की राशि एक ही किस्त में सीधे बैंक या डाकघर को हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो बहुत अच्छी पहल है शगुन की, जिस तरह से बेटियों को लेकर के बेटी बढ़ाओ के बार, जब कभी एक समय था जब भ्रूण हत्याएं होती थी तो इस तरह से काफी प्रोत्साहन मिलता है और अब माता पिता बेटियों को भी उसी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, हालांकि अब बेटियां बहुत आगे जा चुकी हैं।
1: जी, दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव एक्चुअली ओवरऑल।
0: और अगर हम एक और अपडेट की बात करें मुंबई से, तो बता दें कि उर्वरक वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए पालघर जिले में 25 अगस्त से उर्वरक बिक्री ढांचा प्रणाली लागू की जा रही है और इस प्रणाली से उर्वरक स्टॉक और बिक्री की ऑनलाइन निगरानी संभव होगी। साथ ही किसानों को डिजिटल रसीदें भी जारी की जाएंगी। इसी के साथ किसानों को यह भी सलाह दी गई है कि वे केवल अधिकृत डीलरों से ही उर्वरक खरीदें और डिजिटल रसीदें प्राप्त करें, क्योंकि जिस तरह से अभी फ्रॉड चल रहा है हर जगह, तो इससे लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है।
1: एंड वी आर देयर बाय इन्फॉर्मिंग यू। सो नाउ वी आर हेडिंग टू हैदराबाद। वेल, हैदराबाद इज रैपिडली मर्जिंग एज अ ग्लोबल हब फॉर टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोफेशनल एंड लीगल सर्विसेज। स्टेट मिनिस्टर फॉर इरिगेशन एंड सिविल सप्लाइज उत्तम कुमार रेड्डी इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल AI फर्म इन द सिटी एंड प्रेसिंग इट एज अ मेजर माइलस्टोन फॉर क्रॉस बॉर्डर लीगल एक्सेसिबिलिटी। एंड दिस फर्म, international AI firm, aims to connect individuals, businesses, NRIs and investors seamlessly with legal experts worldwide. The firm will leverage artificial intelligence to streamline complex processes such as legal research, number one, number two, data gathering, number three, document analysis, number four, case mapping. However, the leadership emphasized that AI is strictly a supportive tool and will not replace human lawyers. All professional advice and representation will continue to be handled strictly by qualified legal professionals adhering to local laws and ethical standards.
0: अब बात करते हैं जॉय सिटी कोलकाता की। पश्चिम बंगाल में पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने घोषणा की है कि राज्य का पर्यटन विभाग अब 365 दिन पर्यटन के नारे के तहत काम करेगा, जिसका उद्देश्य पर्यटन को सभी के लिए सुलभ बनाना है। तो एक मौसम होता है शगुन की, जब विशेष मौसम में ही वहां के पर्यटन को ज्यादा देखा जाता है, लेकिन ये ना सभी मौसम में फॉर एवरी सीजन पर्यटन को सभी तक पहुंचाने के लिए ये पहल की जा रही है। प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने अपने जिलों के प्रमुख आकर्षणों का उजागर करते हुए एक व्यापक पर्यटन पैकेज तैयार करें और इसके अतिरिक्त पर्यटन प्रधान क्षेत्रों में समर्पित जिला हेल्पलाइन भी स्थापित की जाएगी। उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी में एक होटल प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की भी पहल चल रही है। और अब महानगरों से जुड़े मौसम का पहले बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। तो सबसे हमने शुरुआत में ही बात की कि किस तरह से आज दिल्ली में गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, झमाझम बारिश कह सकते हैं हम। तो आज दिन भर में राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम तापमान की बात करें तो शहर का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। उधर कोलकाता में आज तूफान के साथ बारिश के आसार हैं। तूफान और बारिश में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है।
1: इफ वी टॉक अबाउट चेन्नई विल हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन और ड्रिजल। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस व्हाइल मैक्सिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु विल हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम टेम्परेचर मे रीच 28 डिग्री सेल्सियस इन बेंगलुरु। हैदराबाद again pretty similar, we'll have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The minimum temperature will be around 24 degrees celsius while the maximum temperature may reach 30 degrees celsius in Hyderabad.
0: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 25 अगस्त है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन कई कारणों से

0: महत्वपूर्ण है, तो आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 1609 की। महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने आज ही के दिन वेनिस के शासकों के सामने दुनिया के पहले कमर्शियल टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन का प्रदर्शन किया था, जिसे खगोल विज्ञान का इतिहास कहा जाता है।
1: Yes, the Venetian lawmakers, he demonstrated his first telescope, Galileo Galilei, to them in 1830. Now, the Belgian Revolution began, leading to Belgium's independence from the Netherlands.
0: 1981 में नासा का अंतरिक्ष यान वॉयजर 2 और शनि ग्रह के सबसे करीब पहुंचा था और उसने इस खूबसूरत वलयों वाले ग्रह की बेहद साफ तस्वीरें भेजी थी, तो ये भी इतिहास के उन प्रमुख घटनाओं में दर्ज है।
1: In 1917, well, the first significant step towards the Indianization of the army was initiated on this day when 7 selected Indians serving in the army were granted King's Commission in the infantry and the cavalry. Before the World War ended, 2 more Indians who previously held temporary commissions, they were granted King's Commission.
0: बिल्कुल, 7 भारतीयों को पहली बार King's Commission मिला था और जिससे उन्हें सेना में अफसर बनने का अधिकार प्राप्त हो गया था। अगर हम कुछ दिनों की बात करें तो 1957 में भारतीय पोलो टीम ने फ्रांस में आयोजित पोलो विश्व कप जीता था, जो खेल के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है।
1: In 1944, Paris was liberated from German occupation by the French 2nd Armored Division and Allied troops during World War II. It ended 4 years of Nazi rule.
0: और आजादी की बात की है आपने, तो बता दें कि आज ही के दिन दक्षिण अमरीकी देश उरुग्वे ने ब्राजील साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी।
1: In 1948, very important, Jan Gan Man to be the provisional national anthem till Constituent Assembly made a final decision. In 1960, Olympics opened at Rome. In 1965, Indian troops crossed the Kashmir ceasefire line pursuing Pakistani infiltrators. And now in 2012, the last one, NASA's Voyager 1 spacecraft became the first human-made object to enter interstellar space.
0: और अब समय है उन प्रमुख हस्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के क्रांतिकारी वामपंथी उर्दू शायर और स्वतंत्रता सेनानी मखदूम मोइद्दीन को, आज उनकी जयंती है। उन्होंने कलम और क्रांति दोनों को एक साथ जिया है। हैदराबाद के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 1969 में अपने कविता संग्रह बिसाते रिस्क के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले मखदूम साहब एक क्रांतिकारी राजनेता के साथ साथ एक बेहद मखमली शायर भी थे। तो आइए आज उन्हें याद करते हुए सुनते हैं फिल्म बाजार से लता मंगेशकर और तलत अजीज की बेहद खूबसूरत आवाजों में उनका लिखा यह अमर और रोमानी गीत, फिर छिड़ी रात बात फूलों की।

0: आज देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर लेखक और गांधीवादी राजनेता हरिभाऊ उपाध्याय की भी पुण्यतिथि है। 25 अगस्त 1972 को उन्होंने इस संसार से विदा ली थी। 24 मार्च 1892 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मे हरिभाऊ उपाध्याय जी ने अपना पूरा जीवन देश की आजादी और समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। आजादी के बाद वे तत्कालीन अजमेर राज्य के मुख्यमंत्री बने और बाद में राजस्थान सरकार में वित्त और शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। राजनीति के साथ साथ साहित्य जगत में भी उनका अमूल्य योगदान रहा। उन्होंने नवजीवन, त्यागभूमि और सरस्वती जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया और समाज को जागरूक करने के लिए कई पुस्तकें लिखी। देश के प्रति उनके निस्वार्थ सेवा भाव को देखते हुए साल 1966 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
1: We are also remembering Michael

आज बॉलीवुड के प्रतिष्ठित कपूर खानदान के दिग्गज अभिनेता, निर्देशक और फिल्म निर्माता राजीव कपूर की जयंती है। आज ही के दिन 1962 में मुंबई में जन्मे शोमैन राज कपूर साहब के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर को इंडस्ट्री में लोग प्यार से चिंटू यानी कि ऋषि कपूर के बाद चिंपू के नाम से बुलाते थे। साल 1983 में फिल्म एक जान है हम से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाले राजीव कपूर को असली पहचान साल 1985 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली से मिली थी। 9 फरवरी 2021 को राजीव कपूर जी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपनी कला के जरिए वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आइए आज उनकी जयंती पर फिल्म राम तेरी गंगा मैली से सुरेश वाडेकर की सुरीली आवाज में राजीव कपूर पर फिल्माया गया ये सदाबहार गीत सुनते हैं।

आज देश के उस वर्सेटाइल संगीतकार का जन्मदिन है जिनकी बनाई धुनें हर भारतीय के दिल की धड़कन और पहचान बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं दिग्गज संगीत निर्देशक अशोक पटकी जी की। भले ही आपने इनका नाम कभी ध्यान से न सुना हो, लेकिन दूरदर्शन पर गूंजने वाला वो ऐतिहासिक और अमर गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, जो हमने आपको शुरुआत में ही सुनाया था, आपने अपनी जिंदगी में हजारों बार सुना होगा और पूरे देश को अनेकता में एकता का संदेश देने वाले इस बेहद खूबसूरत गीत की जो धुन है उसको और किसी ने नहीं बल्कि आज के हमारे बौद्ध स्टार अशोक पटकी साहब ने ही कंपोज किया था।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने शिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिक

0: नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
1: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमरीका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा

0: कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरलम में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
1: उत्थरादम सिर्फ तिरु ओणम से पहले का दिन ही नहीं है, बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच अखुआपदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
3: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि।

0: times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And in some more news, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will undertake an official visit to Canada and the United States beginning today. The Finance Ministry said the focus of the visit will be on strengthening bilateral economic and financial partnerships, deepening investment linkages, and advancing cooperation on shared global economic priorities. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon young diplomats to build strong grassroots-level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Union Home Minister Amit Shah asks all secret agencies to take strict measures against infiltration. UPI completes 10 years of digital payments revolution, clocks nearly 13,000-fold rise in transaction volume. Government lifts export restrictions on wheat flour and related products. BJP to contest all 117 seats in upcoming Punjab Assembly elections. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. And in men's cricket, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal give India command over Sri Lanka in the second and final test in Colombo. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कोनेन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवान सिफारतकारों पर जोर दिया है कि वो जिन मुल्कों में मुतायन हैं वहां सबसे निचली सतह पर मजबूत रابطے कायम करें और मकामी लोगों के साथ भारत के रिश्ते को फरोग दें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो दरअंदाजी के खिलाफ सख्त इकदाम करें। डिजिटल अदायगी के इनकलाब के तौर पर यूपीआई को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और लेन देन के एतबार से तकरीबन 13,000 गुना का इजाफा हुआ है। सरकार ने गेहूं के आटे और इससे तैयार होने वाली अशिया पर बरामदी बंदिशें हटा ली हैं। बीजेपी आने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामले पर चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खसूसी नुमाइंदों की बातचीत में शिरकत करेंगे। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मजबूत पोजीशन हासिल कर ली है। ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल ने सेंचुरियां बनाई। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवान सिफारतकारों पर जोर दिया है कि वो जिन मुल्कों में मुतायन हैं वहां सबसे निचली सतह पर मजबूत रابطے कायम करें और मकामी लोगों के साथ भारत के रिश्ते को फरोग दें। सेवा तीर्थ में इंडियन फॉरेन सर्विस के 2025 के बैच के जेर तरबियत अफसरों के साथ गुफ्तगू करते हुए जनाब मोदी ने रिवायती सिफारती हलकों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क को वसत देने और लोगों के साथ राब्तों को बढ़ाने के लिए इन जेर तरबियत अफसरों की हौसला अफजाई की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: जनाब मोदी ने जेर तरबियत अफसरों की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो आलमी सतह पर भारत के राब्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर तकनीक इख्तरा और मौसर मवासलात के जरिए भारत की तहजीबी कुवत को मरबूत करें। वजीर आजम ने उनसे जोर देकर यह भी कहा कि वो दुनिया के साथ भारत के माशी राब्तों के लिए एक सरगर्म वसीले के तौर पर काम करें। जनाब मोदी ने भारतीय मिशनों की डिजिटल मौजूदगी को मुस्तहकम बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने जेरे तरबियत अफसरों से कहा कि वो भारत की तहजीबी सकाफती और जोग्राफियाई कुव्वत की अक्कासी करते हुए आलमी सतह पर सियाहत के लिए भारत को और ज्यादा पुरकशिश मकाम बनाने की समत काम करें। जनाब मोदी ने दुनिया के नौजवान लोगों में भारत के बारे में ज्यादा दिलचस्पी पैदा करने की खातिर भारत को जानिए नो इंडिया क्विज का एहतमाम करने की तजवीज भी पेश की। इन जेर तरबियत अफसरों में इंडियन फॉरेन सर्विस के 50 अफसर शामिल थे जो मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से आए हुए थे। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो दरअंदाजी के खिलाफ सख्त इकदाम करें। नई दिल्ली में कौमी सलामती से मुतालिक हिकमत अमली के बारे में

0: चुनावी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब अमित शाह ने हिदायत दी कि मुख्तलिफ एजेंसियों पर मुश्तमिल सेंटर के प्लेटफॉर्म पर दस्तियाब जानकारी का एआई पर मबनी तज्जिया किया जाना चाहिए ताकि कौमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजों से निपटने के लिए एसओपीज तैयार किए जा सकें। जनाब अमित शाह ने दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से मौसर तौर पर निपटने की खातिर वजारत दाखिला की प्रहार स्कीम पर अमल दरामद के लिए तरबियत मफरूर अफराद को वापस लाकर मुकदमात में तेजी लाने और यूएपीए केसों की तहकीकात करते वक्त एक जामे और मरबूत रवैया अख्तियार किए जाने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन कौमी सलामती से मुतालिक अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। इनमें दहशतगर्दी के चैलेंजों से निपटने के लिए जवाबी कार्रवाई, मुख्तलिफ एजेंसियों पर मुश्तमिल सेंटर के जरिए खुफिया मालूमात को बरूएकार लाने, मुनशियात पर कंट्रोल के लिए एक विजन दस्तावेज, गैर कानूनी माइग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने, साइबर जराइम से निपटने के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क और पाकिस्तान की दरपर्दा जंग का मामला शामिल है। ये दो रोजा कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड फॉर्मेट में हो रही है। इसमें मुल्क भर से 850 से ज्यादा शुरका हिस्सा ले रहे हैं। जनाब अमित शाह ने इससे कबल इंटेलिजेंस ब्यूरो के उन जाबाज एहलकारों की याद में शहीदों की यादगार पर गुलहाय अकीदत नजर किए जिन्होंने कौमी सलामती और सालमियत के तहफ्फुज़ में अपना फर्ज निभाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। डिजिटल अदायगी के इनकलाब के तौर पर यूपीआई को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और लेन देन के एतबार से तकरीबन 13,000 गुना का इजाफा हुआ है। यूपीआई निजाम भारत के डिजिटल अदायगी के इको निजाम की एक मजबूत बुनियाद बनकर उभरा है। इसका आगाज 25 अगस्त 2016 को हुआ था। वजारत खजाना ने कहा है कि 2016-17 में यूपीआई के सालाना लेन देन महज 1,78,00,000 थे, जबकि 2025-26 में ये बढ़कर 24,162 करोड़ लेन देन पर पहुंच गए हैं। इस अरसे के दौरान लेन देन की मालियत भी 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर तकरीबन 314,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वजारत ने कहा है कि यूपीआई मुख्तलिफ मुल्कों में डिजिटल अदायगी के एक आलमी प्लेटफॉर्म के तौर पर भी उभरा है और सरेदस्त 11 मुल्कों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इनमें मुत्तहिद अरब इमारात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशियस, कतर, कम्बोडिया, यूनान और मालदीव शामिल हैं। सरकार ने गेहूं के आटे और इससे तैयार होने वाली अशिया पर बरामदी बंदिशें हटा ली हैं। इस तरह आटा, मैदा, सूजी और आटे से तैयार होने वाली दीगर अशिया की बरामद की राह हमवार हो गई है। गैर मुल्की तिजारत से मुतालिक डायरेक्टोरेट जनरल की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने आटे और मुतालिका अशिया के लिए बरामदी पॉलिसी में तरमीम की है। इसका इतलाक फौरी तौर से होगा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पंजाब के आइंदा असेंबली इंतखाबात में सभी 117 असेंबली सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पटियाला में पहली जोनल मीटिंग से खिताब करते हुए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष ने कहा कि पंजाब तब्दीली के लिए पूरी तरह तैयार है और पार्टी रियासत में इंतखाबात जीतकर हुकूमत तश्कील देगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: बीजेपी जनरल सेक्रेटरी की तरफ से ये ऐलान बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के दरमियान इत्तेहाद के इम्कानात के ताल्लुक से जारी बातों के दौरान सामने आया है। जनाब संतोष ने कल पटियाला और भटिंडा में तंजीमी मीटिंगों की सदारत की। जनाब संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज वो लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में मीटिंगें करेंगे। आइंदा इंतखाबात के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में बातचीत के लिए पार्टी कारकुनान और लीडर इन मीटिंगों में पहुंच रहे हैं। आज अमृतसर में रियासती जनरल सेक्रेटरियों के साथ एक अलहदा मीटिंग भी होनी है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामले पर चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खसूसी नुमाइंदों की बातचीत में शिरकत करेंगे। ये इस तरह की 25वें दौर की बातचीत होगी। जनाब डोभाल चीन के 2 दिन के दौरे पर कल बीजिंग पहुंचे हैं। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लिंग जियान ने मीडिया ब्रीफिंग में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत का ऐलान करते हुए कहा कि जनाब डोभाल और जनाब वांग यी सरहद के मामले पर तफसीली बातचीत के साथ साथ दीगर दो तरफा इलाकाई और बैन अलाक्वामी उमूर पर भी तबादले ख्याल करेंगे। मगरबी बंगाल सरकार इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए अग्निवीरों को भर्ती करके कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली नई फोर्स अर्जुन वाहिनी तश्कील देगी। रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने बताया।

0: 30 फुट का शिगाव पड़ने की वजह से कई पंचायतों के दायरे में आने वाले इलाके मुतासिर हुए हैं। आबी वसाइल के महकमे की टीमें पुश्तों की मरम्मत के काम में लगी हुई हैं। उधर रियासत के वजीर आला सम्राट चौधरी ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सैलाब से मुतासर जिलों का फजाई सर्वे किया। उन्होंने इंतजामिया को यह हिदायत दी है कि वो तेजी के साथ राहत और बचाव कार्रवाई अंजाम दें। गंगा में पानी चढ़ने के तनाजुर में मगरबी बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी फाटक खोल दिए हैं। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी की दरखास्त पर ऐसा किया गया है। इससे बिहार में सैलाब की सूरत हाल को कंट्रोल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: ओडिशा में आज बारिश की सूरत हाल कुछ बेहतर होने का इम्कान है। अगरचे खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव के हल्के का असर रियासत के कई हिस्सों में महसूस किया जा सकता है। रियासत के शिमाली साहिली जिलों में औसत बारिश का इम्कान है। इस दौरान हालिया मुसलसल बारिश के सबब दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा होने के पेश नजर सैलाब से मुतासर इलाकों में निगरानी की जा रही है। महकमे मौसमियात IMD ने 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रियासत में इस माह की 30 तारीख तक बारिश जारी रहने का इम्कान है। तफसील हमारी नामनिगार से।
2: खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव के जेरे असर ओडिशा में मौसम में मुसलसल तब्दीली आ रही है। कई इलाकों में औसत बारिश और शुमाली ओडिशा के साहली जिलों में बारिश का इम्कान है। 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। लगातार बारिश और पानी जमा होने के मद्देनजर एहतियात के तौर पर आज सैलाब से मुतासर भद्रक और जाजपुर में बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल बंद हैं जो सैलाब से बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं। इस दौरान अखोपाड़ा में बैतरनी दरिया अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अगरचे इसके पानी की सतह में कुछ कमी आ रही है, सैलाब के खतरे वाले इलाकों में हुक्काम मुसलसल करीबी नजर रखे हुए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते, शिमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, साहिली कर्नाटक, केरला और माहे में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। केरलम में 10 रोजा ओनम त्यौहार से कबल आज उत्तरादम मनाया जा रहा है। रियासत में कल तिरुओनम के इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आज के दिन लोग इस बड़े त्यौहार के लिए आखिरी तैयारियां मुकम्मल करते हैं और खरीदारी भी करते हैं। रिवायती उथराड़ा पाचिल की वजह से बाजारों और खरीदारी के मराकज पर लोग जश्न की आखिरी खरीदारियों में मसरूफ हैं। ओना पुक्कलम से घरों को सजाया जा रहा है और रिवायती ओना सदिया के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अमेरिका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान पर नई बंदिशों का मकसद उसके मुमकिन माली जराए पर रोक लगाना है। उन्होंने मुल्कों को मुतनब्बे किया कि वो ईरान के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात को खत्म करें वरना उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मर्दों के क्रिकेट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पटेगल की सेंचुरियों की बदौलत भारत ने कल कोलंबो में दूसरे और आखिरी टेस्ट के बारिश से मुतासिर दूसरे दिन मेजबान श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 503 रन बनाकर खत्म कर दी। ध्रुव जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 115 रन बनाए। देवदत्त पडिकल ने कल शानदार 117 रन बनाकर इनिंग्स की मजबूत शुरुआत की थी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
2: शुक्रिया कौनैन। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से डॉक्टर एस जय शंकर की मुलाकात से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। इस मुलाकात के दौरान भारत रूस ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खसूसी पैगाम भी उन तक पहुंचाया गया। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल वजीर खारजा वांग यी की दावत पर चीन पहुंचे जहां वो 25वीं भारत चीन सरहदी मुजाकरात में शिरकत करेंगे। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, मुसाफिरों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए रेलवे ने शुरू की सफाई मुहिम। इस हिकमत अमली के तहत पीने के पानी के पूरे निजाम की बार बार जांच और सही तरीके से देखभाल पर जोर दिया गया है।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवान सिफारतकारों पर जोर दिया है कि वो जिन मुल्कों में मुतय्यन हैं वहां सबसे निचली सतह पर मजबूत राबते कायम करें और मकामी लोगों के साथ भारत के रिश्ते को फरोग दें। मरकजी

अमित शाह ने सभी सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो दरअंदाजी के खिलाफ सख्त इकदामात करें। डिजिटल अदायगी के इनकलाब के तौर पर यूपीआई को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और लेन देन के एतबार से तकरीबन 13,000 गुना का इजाफा हुआ है। सरकार ने गेहूं के आटे और इससे तैयार होने वाली अशिया पर बरामदी बंदिशें हटा ली हैं। बीजेपी आने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामले पर चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खसूसी नुमाइंदों की बातचीत में शिरकत करेंगे। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मजबूत पोजीशन हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

मौसम भी है, मस्ती भी है और म्यूजिक भी, तो इन तीनों के बाद क्या करना चाहिए? जी हाँ, म्यूजिकल दिल लगी। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मुक्ता के साथ आप सुनिए अब म्यूजिकल दिल लगी। बहुत खूबसूरत से गीत, कुछ बातें, कुछ थोड़ी सी गपशप, क्योंकि बारिश का मौसम है और इस मौसम में हो सकता है आपका वर्क फ्रॉम होम हो, तो ऐसे में संगीत का साथ होगा तो काम दोगुना होगा।

वफा मजबूर तुमको कर रही थी तो फिर मजबूर होना चाहिए था। वफा मजबूर तुमको कर रही थी तो फिर मजबूर होना चाहिए था। हमारा हाल तुम भी पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, ये वक्त की ताकत है, न ये रुकता है न ये कभी लौट कर आता है, यही इसकी कीमत भी है। तो इसकी कीमत को समझते हैं, जो वक्त बीत रहा है वो केवल यादों में रह जाएगा, यादों को बनाते हैं खूबसूरत। इसी कामना के साथ फिलहाल म्यूजिकल दिल लगी के इस सफर को थोड़ा सा विराम देंगे, हिंदी और अंग्रेजी में होंगे समाचार और उसके बाद इस यात्रा को रेखा बढ़ाएंगे आगे। मुक्ता को दीजिए इजाजत, रहिए आप खुश, रखिए दूसरों का ख्याल और खुद भी खुश रहने की कोशिश कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय दूतावासों की डिजिटल उपस्थिति मजबूत करने के महत्व पर भी बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर भी बल दिया। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का आधार बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और उससे संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान पर भी बातचीत की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की यात्रा पर पेचिंग पहुंचे थे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए

0: दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, दुनिया में किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वो छाया जरूर देता है। सच है, हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटीज जरूर होती है ना। तो दूसरों की क्वालिटीज को पहचानिए, हंसिए, मुस्कुराइए, दिन की शुरुआत कीजिए। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। आपकी दोस्त आरती रेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ, और ये सफर है म्यूजिकल दिल लगी का। बाहर कितना खूबसूरत मौसम है ना भाई, मैं तो भीगते भीगते आज स्टूडियो पहुंची, लेकिन पहुंच गई क्योंकि मुझे आपसे मिलना था। उस वक्त मुझे बस यही गाना याद आ रहा था।
1: ओ, सजना।

हर बार मैं आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताती हूँ जिनका लाभ सभी को मिल सकता है। वेल, आज जिस चीज की मैं बात करने वाली हूँ, भारत विकास की ओर बढ़ रहा है और उसी में से एक कार्यक्रम है जिसकी आज हम बात करेंगे, राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टि बाधा नियंत्रण कार्यक्रम। भारत सरकार द्वारा ये कार्यक्रम 1976 में शुरू किया गया और एक 100% केंद्र प्रायोजित ये योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में अंधेपन के मामलों को कम करना और नेत्र स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। देश में दृष्टिहीनता के प्रसार को कम करके लक्ष्य स्तर तक लाना इसका एक उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है। मोतियाबिंद सर्जरी के माध्यम से दृष्टि बहाल करना, कॉर्नियल अंधत्व से निपटने के लिए नेत्र संग्रह और दान को प्रोत्साहित करना, स्कूली बच्चों में दृष्टि दोष का शीघ्र पता लगाना और चश्मे का वितरण करना, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये जो योजना है वो शुरू की गई। अगर मैं बात करूं इसके अंतर्गत होने वाली गतिविधियों की, तो अस्पतालों और नेत्र चिकित्सा इकाइयों का आधुनिकीकरण इसके अंतर्गत किया गया, नेत्र सुरक्षा और नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करना और ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित करना, ये सभी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत की जाती हैं। और अगर आप इससे जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो फिर आप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। और भी बहुत कुछ है आज जानने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको रहना होगा मेरे साथ। 9:16:37 हो चुके हैं फिलहाल। ये खूबसूरत गीत आप तक पहुंचाती है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस सफर में। तेरे

दोस्तों, भारत में हर साल हजारों लोग कॉर्निया की वजह से होने वाले अंधेपन के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि नेत्रदान जैसे सरल काम से उनकी दृष्टि वापस लाई जा सकती है। समस्या उपचार की कमी नहीं बल्कि प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक दान किए गए कॉर्निया की कमी है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलाया जाता है, यानी नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट, इसके अंतर्गत ये याद दिलाया जाता है कि मृत्यु के बाद किसी एक व्यक्ति द्वारा अपनी आंखें दान करने का निर्णय किसी अन्य व्यक्ति की दृष्टि को बहाल करने और उसके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है, इसका उद्देश्य नेत्रदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना, लोगों को अपनी आंखें दान करने के लिए प्रोत्साहित करना और परिवार को अपने प्रियजन के नेत्रदान के निर्णय का सम्मान करने के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। यह अभियान उन आम भ्रांतियों और गलत धारणाओं को दूर करता है जो व्यापक रूप से दान करने की इच्छा के बावजूद अक्सर नेत्रदान में बाधा डालती हैं। दोस्तों, इन दो सप्ताहों के दौरान अस्पताल, नेत्र बैंक, नेत्र रोग विशेषज्ञ, सरकारी एजेंसियां, शैक्षणिक संस्थान और गैर सरकारी संगठन स्वैच्छिक नेत्रदान को प्रोत्साहित करने और कॉर्नियल प्रत्यारोपण के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। ये पखवाड़ा शुरू क्यों किया गया था, इसकी जो खास वजह रही वो यही थी कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टि बाधा नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था और इस अभियान का उद्देश्य दान किए गए कॉर्निया की बढ़ती कमी को दूर करना और नेत्रदान के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाना था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के वजह से इसे रखा गया और नेत्रदान से जुड़ी आम गलतफहमियों को दूर करना और परिवारों के जो लोग हैं उनको अपने प्रियजनों की आंखें दान करने की जो इच्छा है उसका सम्मान करने के लिए प्रेरित करना, तो ये इसके पीछे एक खास वजह रही। और अगर मैं बात करूं नेत्रदान है क्या, तो भाई नेत्रदान एक स्वैच्छिक काम है जिसमें मृत्यु के बाद कॉर्निया दान किया जाता है ताकि कॉर्निया से प्रभावित लोगों की दृष्टि को बहाल किया जा सके। कॉर्निया आंख की स्पष्ट पारदर्शी सामने की परत होती है जो प्रकाश को प्रवेश करने और ठीक से केंद्रित करने में मदद करती है। हालांकि नेत्रदान शब्द का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है लेकिन पूरी आंख का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता, सिर्फ स्वस्थ कॉर्नियल ऊतक को ही निकाला जाता है और ऐसे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है जिसकी दृष्टि कॉर्नियल रोग, चोट, संक्रमण या कुछ आनुवांशिक स्थितियों से प्रभावित हुई हो। और एक और खास बात जो आपको जाननी चाहिए कि ये कॉर्निया दान कौन कौन लोग कर सकते हैं। लगभग सभी लोग उम्र की परवाह किए बिना अपनी आंखें दान कर सकते हैं। पात्रता का निर्धारण मृत्यु के बाद प्रशिक्षित नेत्र बैंक पेशेवरों द्वारा कॉर्नियल ऊतक की गुणवत्ता और दाता के चिकित्सा इतिहास के आधार पर किया जाता है, यानी जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग और क्या क्वालिटी है आपकी कॉर्निया की उसके अकॉर्डिंग ये निर्धारित किया जाता है कि दान करने लायक है भी या नहीं। और अगर इसे सही पाया जाता है तो फिर आप जीवन के बाद भी, आप अपनी जिंदगी के बाद भी दूसरों को, दूसरों की आंखों को रोशनी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत काम है, ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक ऐसा काम है जो

आपके बाद भी दूसरों की आंखों की रोशनी बनकर कहीं ना कहीं देश में उजाला करता है। तो आपको इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने लिए और अपने आसपास के लोगों को इसके लिए प्रेरित जरूर करना चाहिए। फिलहाल एक और प्यारा सा गीत और उसके बाद फिर कुछ और बातें।

0: दोस्तों आज है 25 अगस्त और आज का दिन भी अपने इतिहास में बहुत कुछ समेटे हुए है। अगर आज की बात करूं तो प्रसिद्ध तमिल आध्यात्मिक गुरु वक्ता और भगवान मुरुगन के महान भक्त थिरुरु मुरुगा डॉक्टर किरुबानंद वरियार स्वामी जी की जयंती हर साल 25 अगस्त को मनाई जाती है। उनका जन्म 25 अगस्त 1906 को तमिलनाडु के वेलोर जिले के कागयेनालूर गांव में हुआ था और अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपने ओजस्वी और सरल प्रवचनों और तमिल धार्मिक साहित्य के माध्यम से हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार किया। उन्हें धार्मिक एकता और भगवान मुरुगन की महिमा का प्रसार करने वाले एक प्रमुख शिक्षक के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु सरकार द्वारा उनकी जयंती को एक आधिकारिक राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार एक और खूबसूरत गीत। जुड़े रहिएगा इस सफर में मेरे साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: एनसीआर एपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

दोस्तों, अगस्त का महीना चल रहा है और एक और ख़ास वजह है इस महीने को हम कह सकते हैं कि एक और सेलिब्रेशन होता है इस महीने में। केरल का सबसे लोकप्रिय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण त्यौहार ओणम इस साल अगस्त में मनाया जा रहा है। ओणम केवल एक दिन का पर्व नहीं है बल्कि करीब 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। इस बार ये अगस्त में पड़ा है जिसका सबसे महत्वपूर्ण दिन थिरुवोणम माना जाता है। ओणम पर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस साल 16 अगस्त से ओणम का 10 दिवसीय उत्सव आरंभ हुआ है। ये पर्व समृद्धि, समानता, एकता, फसल और कृतज्ञता की भावना से भी जुड़ा हुआ है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो 10 दिन का उत्सव है, इसे अलग अलग दिन अलग अलग नामों से अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट किया जाता है। अथम जो है वो पहला दिन होता है जो कि 16 अगस्त को मनाया गया था। और ये इस दिन जो ख़ास बात है वो ये है कि इस दिन फूलों की रंगोली की शुरुआत होती है। दूसरा दिन चिथिरा होता है और रंगोली में फूलों की एक और परत इस दिन जोड़ी जाती है। तीसरा दिन चौथी कहते हैं और इस दिन लोग नए कपड़े और उपहार खरीदते हैं। चौथा दिन वैशाखम है और ओणम के भव्य भोज की तैयारियों का आरंभ इस दिन हो जाता है। पांचवा दिन अनिडम कहा जाता है, प्रसिद्ध वल्लमकली यानी नौका दौड़ की प्रतियोगिताएं इस दिन शुरू होती हैं। त्रिकेटा छठा दिन है, परिवार के लोग मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। और सातवां दिन जिसे मूलम कहा जाता है, बाजारों में खास रौनक होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होते हैं। आठवां दिन जिसे पुरादम कहा जाता है, इस दिन राजा महाबली के प्रतीक ओनाथप्पम की मूर्तियां घरों में स्थापित की जाती हैं। नौवां दिन जिसे उथरादम कहा जाता है, इसे पहला ओणम भी कहा जाता है जो कि आज मनाया जा रहा है और इस दिन खास तौर पर पकवान बनाए जाते हैं। दसवां दिन तिरुवोणम होता है जो कि कल होगा और इस दिन राजा महाबली का स्वागत किया जाता है और ओणम साद्या खाया जाता है। इस पर्व के महत्व की अगर मैं बात करूं तो ओणम का सबसे प्रसिद्ध संबंध जो है वो राजा महाबली की कथा से है। माना जाता है कि महाबली के शासन में लोगों के बीच समानता और समृद्धि थी। भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी कथा के अनुसार महाबली से 3 पग भूमि मांगी उन्होंने, जो वामन अवतार बनकर भगवान विष्णु जब धरती पर आए, और इसके बाद उन्होंने उन्हें पाताल लोक जाने का वर दिया और ओणम पर उनके अपनी प्रजा से मिलने लौटने की मान्यता जो है वो इस त्योहार को खास बनाती है। ऐसा माना जाता है कि राजा बलि इस दिन अपनी प्रजा से मिलने के लिए वापस धरती पर आते हैं और ये पर्व समृद्धि, समानता के तौर पर भी मनाया जाता है। कृतज्ञता की भावना से जुड़ा है, एकता की भावना से जुड़ा है और फसल के लिए भी इस दिन को खास तौर पर आज मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो कैसे इसे सेलिब्रेट करते हैं तो पुक्कलम बनाए जाते हैं घरों और आसपास फूलों से खूबसूरत पुक्कलम, जिसे फूलों की रंगोली कहा जाता है, वो बनाई जाती है। और डिज़ाइन जो है वो ओणम की खास पहचान होता है, जो फूलों से बनाए गए डिज़ाइंस होते हैं। और इस दिन ओणम पर की बात करूं अगर मैं इस पर्व की, तो इस दिन केले के पत्तों पर पारंपरिक शाकाहारी भोजन परोसा जाता है जिसे ओण सधा कहा जाता है। इसमें कई तरह के पारंपरिक व्यंजन शामिल होते हैं जिन्हें लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। पारंपरिक कपड़े पहने जाते हैं। ओणम के दौरान लोग पारंपरिक परिधान पहनकर उत्सव में शामिल होते हैं और परिवार के साथ त्योहार मनाने और एक दूसरे को शुभकामनाएं देने की परंपरा भी है। और केरल की प्रसिद्ध स्नेक बोट रेस, जिसे वल्लमकली का कहा जाता है, इसका आयोजन भी होता है और ये ओणम उत्सव से जुड़ी प्रमुख सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। ओणम के दौरान प्राकृतिक जो अगर मैं बात करूं यहाँ की जो परंपराएं हैं, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, पारंपरिक नृत्य हैं, संगीत हैं, लोक कलाएं हैं, उन सभी का आयोजन किया जाता है और लोग इसमें बहुत ही जोश के साथ शिरकत करते हैं। और इससे पहले कि कुछ और बताऊं, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार फिर से एक गीत है। जुड़े रहिएगा।

0: है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:45 और 57 सेकंड हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। म्यूजिकल दिल लगी का ये सफर बिना म्यूजिक के तो एकदम अधूरा है ना। तो चलिए ये प्यारा संगीत आपके लिए, उसके बाद कुछ काम की बात और भी बताऊंगी।

दोस्तों, मेरे दोस्त ने एक पंक्ति लिखकर हमें भेजी थी, कुछ चार पंक्तियां, जैसे कि पल पल बदल रही है दुनिया, बदल रही दुनियादारी, बात यही अच्छी है देखो, टूटे ना अपनी यारी। सच बात है कि दुनिया समय समय पर बदल रही है, लेकिन हमारे जो दूसरों के साथ बर्ताव के तरीके हैं वो भी बदल रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अब अपने रिलेशंस को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना हमें देना चाहिए। छोटी सी बहस होती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। रिश्तों में हमें बहस को टालना चाहिए या उससे बचना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है ताकि रिश्ते और उनमें प्यार बना रहे। पर किसी न किसी बात पर बहस हो ही जाती है और हम अक्सर बहस को बढ़ाते चले जाते हैं, है ना? होते क्यों है बहस? इसके तीन कारण जो मुझे सबसे ज्यादा समझ में आते हैं। एक तो ये गलतफहमी जब कभी कभी हो जाती है, जैसे कि हम सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही रिएक्ट कर देते हैं, तो गलतफहमियां बढ़ती चली जाती हैं। ईगो भी कभी कभी बहस का कारण बनती है। मैं सही हूं, तू गलत वाली सोच रिश्ते खराब कर देती है। गुस्सा और थकान, जब हम भूखे होते हैं, थके होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो छोटी सी बात पर भी चिंगारी भड़क जाती है, है ना? तो कुछ आसान से टिप्स देती हूं जिससे कि झगड़ा ना बढ़े, बहस ना बढ़े और रिश्तों में प्यार और अपनापन जो है वो बना रहे। पहले सुनो और फिर बोलो, बात को काटो मत। सामने वाला पूरी बात कह ले फिर अपना पक्ष रखो। 80% झगड़े सिर्फ ना सुनने से होते हैं। और तू की जगह मैं बोलो, तुम हमेशा लेट आते हो, ये बोलने की बजाय कहो कि मुझे टेंशन हो जाती है जब आप लेट आते हो। आरोप नहीं, फीलिंग्स बताओ। 10 सेकंड का रूल अपनाओ। गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत दो, 10 सेकंड पानी पियो, गहरी सांस लो। उस 10 सेकंड में 90% जो बहस होती है वो टल जाती है। मुद्दे पर रहो, पर्सनल मत हो जाओ। तुम लापरवाह हो ऐसा मत कहो, कहो कि ये काम लापरवाही से हुआ है। इंसान पर नहीं, प्रॉब्लम पर बात करो। माफी मांगना कमजोरी नहीं होती, गलती हो तो सॉरी बोल दो। रिश्ता बचाना जीत है, बहस जीतना कभी भी जीत नहीं हो सकती। याद रखो, हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं, पर इज्जत से बात करना बहुत जरूरी है। अगर छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखा जाए तो रिश्ते हमेशा बने रहते हैं और उनमें मिठास भी हमेशा बनी रहती है ना?

तो भाई अब म्यूजिकल दिलगी में तो वक्त हो चुका है मेरे आपसे विदा लेने का, लेकिन ये बता दूं कि इसके बाद आप वापस मिलेंगे मुझसे, लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार, और उसके बाद विश्व दर्पण, वर्ल्ड न्यूज, और फिर ठीक 10:30 बजे मैं मिलूंगी आपसे लेकर दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आप हमें अपने पसंद के गीत लिख सकते हैं और आपकी पसंद फरमाइश हम तक पहुँचा सकते हैं, और फिर हम आपकी पसंद के गीत आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल तो मुझे चलना होगा क्योंकि अब वक्त और ज्यादा बातें करने की इजाजत नहीं देता। आप सुनिएगा समाचार, जुड़े रहिएगा 100.1 MHz आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। फिलहाल के लिए विदा, आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस फिर मिलेगी 10:30 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिकों को दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय दूतावासों की डिजिटल उपस्थिति को मजबूत करने के महत्व पर भी बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का आधार बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा लिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय संबंध को मजबूत करना है। भाजपा के महासचिव BL संतोष ने पटियाला में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in their countries of posting and deepen India's connection with local communities. Interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service IFS at Seva Teerth, Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. Mr. Modi encouraged the officer trainees to combine India's civilizational strengths with technology, innovation and effective communication to further strengthen India's global engagement. The Prime Minister also called upon the officer trainees to serve as catalytic agents for countries' economic engagement with the world. The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments and has emerged as the backbone of India's digital payments ecosystem. The UPI, which was launched on 25th of August 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. We have a report from our correspondent.
2: The Finance Ministry said that the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore to nearly 314 lakh crore during the same period. The Ministry said that UPI has also emerged as a global platform for cross-border digital payments and is currently operational in 11 countries. These are United Arab Emirates, France, Bhutan, Sri Lanka, Nepal, Singapore, Mauritius, Qatar, Cambodia, Greece and Maldives. UPI has emerged as one of the most successful pillars of India's digital public infrastructure, providing an interoperable real-time payment platform. Vishal Kumar, Akashvani, New Delhi.
1: Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. National Security Advisor Ajit Doval will hold 25th round of special representatives talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. The two leaders will have an in-depth discussion on the boundary question as well as other bilateral, regional and international issues. Mr. Doval will also call on China's Vice President Han Zheng during his visit. The National Security Advisor arrived in Beijing yesterday on a two-day visit to China. The flood situation has worsened in Patna and several other districts of Bihar due to the rising levels of the Ganga and other major rivers. With the Ganga continuing to swell, breaches in ring embankments in Bhagalpur and Begusarai districts have affected hundreds of people. The rising waters of the Ganga and its tributaries have led to breach in the ring embankment at Raghupur in the Nogatria subdivision of Bhagalpur district, causing flood waters to spread into the village. The U.S. Department of Homeland Security, DHS, has proposed a new $1,03,265 U.S. dollar fee on top of existing costs for all H-1B cap subject petitions, including those for advanced degree holders. According to the press release issued by DHS, the proposed fee would be paid at the time of filing and imposed on top of all other applicable fees on payments. The United States has imposed sanctions under Operation Economic Outcast on nearly 60 entities, individuals and vessels over their alleged links to Iran's military activities, procurement networks and petroleum and petrochemical trade. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh today. The Met Department has forecast heavy rainfall over Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Madhya Maharashtra, Vidarbha, Sub-Himalayan West Bengal, Northeast India, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Coastal Karnataka, Kerala and Mahi. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर, और कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल ने शतक लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे, जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले दो महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने दो बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
0: एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली का आधार बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई का शुरू होना भारत के डिजिटल पेमेंट इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण था। श्री मोदी ने देशवासियों से कहा कि वे यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने कहें। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। श्री डोभाल कल दो दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं, जिसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत दोनों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय संबंध मजबूत करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। भारत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के शांति रक्षकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में इथियोपिया का एक सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया और कई अन्य घायल हो गए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने शहीद हुए इथियोपिया के शांति रक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल शांति रक्षकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मिशन ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र परिसर और कर्मियों की शुचिता और अखंडता का सम्मान करने के मूलभूत महत्व पर बल देता है और सभी पक्षों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आदेशों के अंतर्गत काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान करता है। अमेरिका के गृह मंत्रालय ने सभी H-1B वीजा आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,265 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इनमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन जमा करते समय लिया जाएगा। विभाग का अनुमान है कि अनुमानित 85,000 H-1B वीजा आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग $8.8 बिलियन का राजस्व मिलेगा। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान को धन प्रदान करने वाले सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। अमेरिका ने आर्थिक बहिष्कार अभियान के अंतर्गत ईरान की सैन्य गतिविधियों, खरीद नेटवर्क और पेट्रोलियम तथा पेट्रोकेमिकल व्यापार करने के आरोप में लगभग 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरैल और देवदत्त पड़िक्कल ने शतक लगाए और भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री के साथ वार्ता करेंगे। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आशी रेखा क्रिस्टल वॉइस। 10:31 हो चुके हैं और आपको तो पता ही है कि ये है दिल का मेल बॉक्स। व्हाट्सएप नंबर बता दूं, 9868868753, जिस पर आप हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं, यानी 9868868753, और ईमेल आईडी fmgoldairdelhi@gmail.com। जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। देखिए, बिना समय गंवाए मैं कितनी जल्दी जल्दी काम करती हूँ ना, और आपके बहुत सारे मैसेजेस भी हमारे पास जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, तो चलिए कुछ को शामिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल का हमें मैसेज मिला है, दिव्यांश बघेल और परिवार के साथ कहां से, ग्राम रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। और हमें किसने लिखा है ये मैसेज, हमें मिला है योगेश शर्मा का, फरीदाबाद से। साथ ही हमारे पास रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता का ओखला संगम विहार दिल्ली से मैसेज पहुंचा। उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव गरिमा ने हमें नई दिल्ली से लिखा है, और उषा बुरांडे, अनुश्री, धनश्री, अनिल बुरांडे ने हमें लिखा है जिला यवतमाल से। और जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन दीपांशु का हमें मैसेज पहुंचा है, कहां से, होली चौक उत्तम नगर से। और इसके अलावा गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका, वाणी थांदी का हमें मैसेज पहुंचा है नवा शहर पंजाब से। मुंबई से अनुवर जात्या, शमसुल खान, अनुराज बेनारा का हमें मैसेज पहुंचा, पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल का हमें मैसेज पहुंचा, नलेश्वर नगर, नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर महाराष्ट्र से, नारायण इंगले, सोपान ताइड़े और आशीष मोहरकर का मैसेज। और सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी ने हमें लिखा है पद्मा टोकीज, नेपा नगर से, कृष्णा पार्क दिल्ली से हमें लिखा है सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबरॉय का मैसेज, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा ने हमें लिखा है मजनू का टीला से, और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिका, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सर अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सदाम का हमें सहारनपुर, कुमार हेड़ा से मैसेज पहुंचा, संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे हमें शाहजी नगर, देगलूर, नांदेड़ से लिख रहे हैं। और सुधाकर, श्री सुधाकर, राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत, राजे जाधव, जगुताई, राजेश जाधव और कुमार संचित, प्रथमेश, सर्वत, हर्षिता, सानवी और प्रणाली देशमुख का हमें मैसेज पहुंचा है, पूरे परिवार के साथ हमें सुन रहे हैं। और हमें लिखा है कहां से, कालेगांव, जाफराबाद, मराठवाड़ा से। और ये मैसेज हमें मिला है बड़ा बम चौक, खंडवा, मध्य प्रदेश से, ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू का। श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ का हमें जगदीश धाकड़ के साथ मालवा से पहुंचा है ये आलोट, जिला रतलाम एमपी से मैसेज। और हमें लिखा है किसने, आर्य नगर कोका भिलाई से, उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल ने। और धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषी, ओशिका और अंजलि रंगील ने। और सलीम अख्तर, रेशमा बेगम का अलीगढ़ से मैसेज। और ये मैसेज, एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरीबा, हबीबा का पटियाला रोड, गंजरुनवाड़ा, उत्तर प्रदेश से मैसेज। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अपान और पूरे परिवार का मैसेज हमें मिला है अपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से। इससे पहले कि और मैसेजेस को शामिल करूं, एक गीत को शामिल कर लेते हैं। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है कहां से, सुषमा अनन्या, राजवीर गायकवाड़, सुनील पुणे से, महाराष्ट्र से हमें लिख रहे हैं। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत हिम्मत फिल्म से।

और अस्पताल के आसपास रहने वाले इच्छुक रक्तदाताओं से विनम्र अनुरोध है कि आगे आकर रक्तदान करके मरीज की मदद करें। तो अगर आप इस एरिया के आसपास हैं तो जरूर पहुंच जाइए। मैं आपको संपर्क नंबर भी दे दूं, कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 8800 4479 8800 4479। ये नंबर है जिस पर आपको कॉल करना है। एक बार फिर से बता दूं 8800 4479। आपका रक्तदान किसी के जीवन की उम्मीद बन सकता है, तो बिल्कुल मत चूकिए। अगर आप इस एरिया के आसपास हैं तो जरूर पहुंच जाइए और इस पेशेंट की मदद आप कर सकते हैं। धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, धर्मशिला मार्ग, वसुंधरा एन्क्लेव, दल्लूपुरा, नई दिल्ली में, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, एक बार फिर से बता दूं, न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास। तो ये तो हुई बात जो आपको मदद करनी चाहिए किसी की आगे बढ़कर। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर आगे आना चाहिए। फिलहाल मैं कुछ मैसेजेस को भी शामिल कर लूं। हमारे बहुत सारे श्रोता हमें सुन रहे हैं और हमें मैसेज भेजा है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश ने, और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार ने, और अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमार, निवेश कुमार, नियति कुमारी, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार से हमें लिख रहे हैं। साथ ही हमारे पास हरी प्रसाद विश्वकर्मा, कॉलेज रोड, गरोड जिला से हमें मैसेज पहुंचाया है और लिखा है कि आज नेत्रदान की जानकारी उन्हें मिली कार्यक्रम के जरिए हमारे पिछले प्रोग्राम में, और उन्होंने फैसला किया है कि वो भी नेत्रदान जरूर करेंगे। मंदसौर मध्य प्रदेश से इनका ये मैसेज है। तो बहुत बहुत अच्छी बात है अगर आप हमें सुनकर ऐसे कोई भी फैसले लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ओम प्रकाश तेगचंदानी का हमें ग्रेटर कैलाश से मैसेज पहुंचा है और हमें लिखा है उत्तम इनका मैसेज तो मैं शामिल कर चुकी हूँ। कोपर गांव से सुरेश मालोड, वर्षा मालोड, और शेव गांव से हमें लिखा है श्रीराम गोंदली, उषा गोंदली ने, अफरोज शेख पता नेमुआ सुपौल बिहार से हमें लिख रहे हैं, और मुंबई से भी ये मैसेज हम ले चुके हैं। मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, सादिया का हमें मैसेज मिला है गिरडी झारखंड से, और हमें लिखा है मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, सुरेश, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह ने, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना ने, जिला खरगोन सनावत से, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप का मैसेज, महेश संघई, रुपेश, प्रगेश, प्रीतेश संघई का महाराष्ट्र से पूरे परिवार के साथ हमें सुन रहे हैं, और इसके अलावा हमें पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर का नलेश्वर नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंग्ले, सोपान दाड़े, आशीष मुहिरकर, मुझे लग रहा है ये मैसेज मैं ले चुकी हूँ, दोबारा मत करिए, सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना ताई गुंडाने, हीरामणि शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गुंडाने का हमें मैसेज पहुंचा है अमरावती महाराष्ट्र से, और हमें लिखा है बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार ने खलीफों की बावड़ी से, खुदा बख्श खलीफा से, रामदेवरा से, दिनेश चौहान ने, डागरी बाबू डागरी से, बाबूराम जयपाल ने हमें लिखा है मैसेज, गांधी चौक बाड़मेर से भी इनके मैसेज हैं। भाई बहुत कंफ्यूजन है आपके मैसेजेस में, थोड़ा डिस्टेंस देके लिखिए ताकि हमें पता चल सके कि कहां से कौन लिख रहा है। सोनाली सुरेश नारंग सहारनपुर से हमें मैसेज भेज रहे हैं और आशा नारंग है इनके साथ हमें सुन रहे हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम सुरलकर का मैसेज, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान उस्मान और यासीन हाशमी का हमें मैसेज पहुंचा है गंजरुणवाड़ा कासगंज से, कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरान और फारिया ताहिरा का मैसेज हमें मिला, संदीप मक्कर, ज्योति, मन्नत, भरत का हमें मैसेज पहुंचा है, कमल सानी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से हमें लिख रहे हैं, और पंकज मोहड़ ने अमरावती महाराष्ट्र से लिखा है, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमिता आहुजा का मैसेज, निमित आहुजा का मैसेज, और नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ का हमें मैसेज मिला है दरवाजा एटा मारहरा से, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा जुबैर और अंजुमन खान का हमें मैसेज मिला। साथ ही हमें प्रकाश गोगिया ने लिखा है दिल्ली से, और अगर आप नाम पूरा लिखेंगे तो हम यकीनन आपका नाम पूरा ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन
अगर आपने आधा लिखा होगा तो जरूर

राधा पढ़ा होगा, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी का हमें गंज टुंडवाड़ा से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति भूमिका का मैसेज, पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता का ओखला संगम विहार से, ये शायद फिर से मैसेज भेज दिया है आपने, अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता और शिवम गुप्ता का राजनगर गांधी चौक मधुबनी से हमें मैसेज मिला, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का चंडीगढ़ मोहाली से और शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का हमें मैसेज पहुंचा है कालका से। बाकी के मैसेजेस को जरूर शामिल करने की कोशिश रहेगी, लेकिन फिलहाल आपका पसंदीदा गीत, तो अब ये गीत किसकी फरमाइश है, सलीम अख्तर, रेशमा बेगम ने अलीगढ़ से इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है, ये रहा आपकी पसंद का गीत अनवर साहब की आवाज़ में।

और अब कुछ और मैसेजेस को भी शामिल कर लेते हैं। हमें सतीश अनेजा, विमला अनेजा ने लिखा है चंडीगढ़ सिटी से। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा का मैसेज। धनोरा विटाली से तहसील नांदुरा, जिला बुल्डाना महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल का मैसेज। तुलसी मस्कीन, वीना आशीष, चैतन्य मस्कीन का हमें मैसेज। मेघा मस्कीन, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशवरिधान खुराना का मैसेज हमें मिला है। बिहारी कॉलोनी दिल्ली शाहदरा से और भवपुर बसना से चंपा देवांगन, राधे श्याम, नेहा राजू, जगदीश देवांगन का मैसेज। पारसमणि वर्मा, हीरामणि, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा, दत्तरिंगी भाटापारा से हमें लिख रहे हैं। और साथ ही हमें लिखा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। और ये मैसेज हमें मिला है रेखा चिक, रमेश चिक, नरेश चिक, रचना, पूजा ज्योति, संगम विहार हनुमान मंदिर से हमें लिख रहे हैं। और साथ ही हमें आपके जो मैसेजेस हैं वो लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलिए, एक नाम के नीचे दूसरा नाम, फिर ऐसे करके आप लाइन से नाम लिखें तो हमें पढ़ना आसान होगा, बहुत मुश्किल होती है पढ़ने में। राजेश वर्मा, राजेश राज वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा का हमें मैसेज पहुंचा है। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा, मुन्ना भाई स्वर्णकार का हमें, हकीकतपुरा मऊ से हमें शिव मंदिर से मैसेज पहुंचा है पीहू स्वर्णकार के साथ। अभिजीत गवाणकर और गवाणकर राही, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश और अर्जुन गवाणकर का हमें डुगू के साथ मैसेज पहुंचा है। उमर खेड़ महाराष्ट्र से, मोताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम सुरलकर का मैसेज। और ये मैसेज हमें मिला है दुर्गा कॉलोनी हांसी से, राजू मिगलानी, पविता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का। और इसके अलावा हमें लिखा है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी ने, सुमित रमेश साहू ने, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, डॉक्टर दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और अकबाल मस्तान का मैसेज, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक का पहाड़गंज, मुल्तानी ढांडा से मैसेज, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या और सुचा सिंह पाठक का हमें मैसेज मिला है। अनारकली बाजार चकराव पंजाब से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी का रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, गुलाम साबिर राही मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें ताज मोहम्मद के साथ लिख रहे हैं। और रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, बंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का हमें मैसेज मिला है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, वणिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का मैसेज, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का मैसेज, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार दूधी का मैसेज, शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि, दीपाली का मैसेज हमें पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से लिखा है। और रंजीत कारेगावकर, कांचन, सृष्टि और समरजीत कारेगावकर का परभणी महाराष्ट्र से मैसेज मिला। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी का मैसेज, ठाकुर साहब बिहारी बाबू के साथ। और प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा का जनकपुरी से मैसेज, विरम गाम गुजरात से अजीत भवसार, पमरला भवसार, भावेश सनी भवसार का मैसेज। और शंभू दयाल खटक, विमला देवी खटक, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक का मैसेज, जाखोद राजस्थान से। मैसेजेस तो बहुत सारे हैं लेकिन दोस्त अब वक्त नहीं बचा है कि मैं ज्यादा मैसेजेस को शामिल कर सकूं, तो चलिए एक गीत को हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया ने, दादा बाबू रोड, गिरडीह, झारखंड से। ये रहा आपकी पसंद का गीत।

और अब जल्दी से कुछ और मैसेज ले लूं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का मैसेज शांतिनगर से हमें मिला है। रामगंज खंडवा से विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, संजय मारकंडे का मैसेज, और हमें लिखा है जगदीश कुमार, राहुल ऋतिका ने कहां से नहीं पता। और इसके अलावा हमारे पास अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर मुजक्किर, जफीर अंसारी का मैसेज पहुंचा है दाऊद सराय सहारनपुर से। और हमें लिखा है सतप्रकाश गोयल, रेणु गोयल, विदित गोयल ने रोहिणी दिल्ली से। साथ ही हमारे पास मनोहर लाल गांधी का विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से मैसेज, और लिखा है मेरे पति फौज में है, 3 साल से घर नहीं आए, उनकी याद में आप ये गीत सुनना चाहती थी पर सॉरी आज वक्त नहीं बचा है, लेकिन फिर किसी रोज जरूर मैं आपको ये गीत सुनाऊंगी। शगुन त्रिपाठी ने दिल्ली कैंट से हमें ये मैसेज भेजा है। और साथ ही हमारे पास राजेंद्र कुमार सचदेवा भवानीगढ़ पंजाब से हमें मैसेज लिख रहे हैं, और भी ढेर सारे मैसेज हैं लेकिन वक्त नहीं बचा है अब दोस्त, तो मुझे अब आपसे इजाजत लेनी होगी फिलहाल के लिए, पर ये वादा रहा 11:10 पर फिर से मिलूंगी लेकर तस्वीर, जुड़िएगा जरूर, कोशिश तो रहती है सबको निराश ना कर पाऊं, करूं अच्छे से खुश रखूं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चूक जाता है, खैर आप समझते हैं मैं जानती हूं। तो दिल का मेल बॉक्स में इतना ही, फिलहाल वक्त है समाचारों का।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करे। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हांग झेंग से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेइचिंग पहुंचे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के वित्त मंत्री नतालियो डी व्हीटली से मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बदलाव, निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय संबंध मजबूत करना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

0: दोस्तों, जो लोग घूमते फिरते हैं, जो लोग अपने घरों से निकलकर बाहर दूसरे शहरों की सैर करते हैं या दूसरी जगहों पर जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, सच मानिए कि वो लोग वैसे नहीं होते जैसे वो लोग होते हैं जो घरों में बंद रहते हैं या ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते या ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं। उसके पीछे एक वजह है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो सचमुच अचानक से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। कभी मौसम बदल जाता है, तो कभी आपका टूर का टाइम बदल जाता है, तो कभी अचानक से कोई ऐसी तकलीफ सामने से आ जाती है कि आपको शायद समय पर नाश्ता ना मिले, शायद समय पर खाना ना मिले, या फिर वेदर कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि अचानक से बारिश हो जाए, अचानक से तेज धूप हो जाए, या फिर हो सकता है कि आप अचानक प्लेन्स में चलते चलते पहाड़ों की चढ़ाई आपको करनी पड़ जाए। तो ऐसे लोग जो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, वो ऐसी चीज़ों को जल्दी से अपना लेते हैं। और ऐसे लोगों को भी जो बहुत उतार चढ़ाव ज़िंदगी में लाने वाले होते हैं, या फिर जिन्हें ये समझ नहीं आता कि रिश्तों को प्यार से कैसे निभाना है, तो ऐसे लोग ये जानते हैं कि रिश्तों को कैसे निभाना है, क्योंकि अलग अलग जगह पर जाकर जब हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, तो हम ये सीखते हैं, हम ये जानते हैं कि लोगों का, हर एक का बात करने का तरीका अलग होता है, हर एक का मिलने का तरीका अलग होता है, हर एक का खान पान अलग होता है, पहनावा अलग होता है, संस्कृति अलग होती है। और इसीलिए घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है। जब आप बाहर निकलेंगे, जब आप अपने शहर से बाहर जाएंगे, तो आप नए नए लोगों को जानेंगे, नए लोगों के विचारों को जानेंगे, और फिर ये कहीं ना कहीं आपको भी एक अलग ही सुकून देगा, जानकारी देगा, आपके माइंड को थोड़ा और ब्रॉड करेगा। तो कभी भी अगर आपका मन अशांत हो, अगर आपको लगता हो कि मन में थोड़ा चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, तो कहीं भी घूमने का प्लान कर लीजिए। फिर देखिएगा कि हमेशा की तरह से जो आप बोरियत महसूस करते हैं, आपका हमेशा के लिए मन तरोताजा हो जाएगा। और थोड़े थोड़े दिन में ना घूमने की प्लानिंग करते रहना चाहिए। तो चलिए, अगर आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरे साथ चलिए। आज मैं आपको ले चल रही हूं बिहार के पटना। दोस्तों, बिहार का पटना यानी बिहार की जीवंत राजधानी पटना, इतिहास, सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत एक गंतव्य है। अपने दिलचस्प अतीत, पवित्र स्थलों और अद्भुत स्थापत्य कला के साथ पटना यात्रियों को एक मनोरम अनुभव देता है। पटना टूर पर जाना इस प्राचीन शहर के छिपे हुए रत्नों को खोजने और इनकी अनूठी विरासत में डूबने का एक बेहतरीन मौका है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हों, आध्यात्मिक साधक हों, या बिहार की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने के लिए उत्सुक हों, पटना में हर तरह के यात्रियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। तो आज हम आपको तस्वीर के इस सफर में ले चलेंगे पटना की सैर पर। जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस सफर में 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 11:14 हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आर्चरेखा, क्रिस्टल वॉइस। ये सफर है तस्वीर का।
1: ओखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

चलिए अब आपको ये बता दूं कि पटना पहुंचना कैसे है। आप हवाई जहाज, ट्रेन, सड़क या जलमार्ग से पटना पहुंच सकते हैं। सबसे आम तरीके हवाई जहाज और ट्रेन है। पटना का अपना हवाई अड्डा है और ये प्रमुख रेल हब भी है जो इस देश के ज्यादातर शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आप लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डे पर उतर सकते हैं जो शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद जैसे कई शहरों से सीधी उड़ाने यहां उपलब्ध हैं। और अगर बात करूं ट्रेन से यहां पहुंचने की तो पटना जंक्शन जो कि प्रमुख रेल हब है और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ और अमृतसर जैसे शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना सकते हैं और पटना में कई प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं जिनमें पटना

बांसवाड़ा जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। सड़क मार्ग से अगर आप यहां जाना चाहें तो पटना जिला सड़कों के एक नेटवर्क से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 दानापुर और पटना सिटी से होकर गुजरती है। आप कार, बस या अन्य सड़क परिवहन से यहां पहुंचने के लिए यात्रा कर सकते हैं। तो भाई बहुत से तरीके हैं जो आपको यहां पर पहुंचाते हैं। वेल, और भी बहुत सारी चीजें हैं इस जगह के बारे में जानने के लिए। आपको मैं ये बताऊंगी कि यहां पर घूमने के लिए क्या क्या है। तो भाई भारत के समृद्ध इतिहास को समेटे हुए पटना की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और तब इसका नाम पाटलिपुत्र था। अद्भुत खंडहरों से सजा ये आधुनिक शहर सिर्फ एक शहर से कहीं बढ़कर है। मठों, मंदिरों और संग्रहालयों के साथ ये शहर हर कोने को देखने और तलाशने के लिए हजारों कारण देता है। शहर आधुनिक और अतीत के गौरव का एक सुंदर समामेलन दर्शाता है। इस अद्भुत मिश्रण को देखने के लिए यहाँ पटना में बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। हालांकि पटना की पैदल यात्रा इस शहर के सभी आकर्षणों को देखने के लिए एक आकर्षक विकल्प है, लेकिन ऐतिहासिक स्थलों और संग्रहालयों से परे भी बहुत कुछ है जिसे देखा जा सकता है। यहाँ पटना में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की अगर मैं बात करूं तो उनमें से एक है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। पटना में घूमने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों में से एक माना जाने वाला ये शानदार और अच्छी तरह से सुसज्जित विज्ञान केंद्र 1978 में बनाया गया था और ये स्थान विज्ञान के सिद्धांतों के अद्भुत प्रदर्शनों के विशाल संग्रह को प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है। चाहे आप बच्चे हों या वयस्क, इस जगह पर अनुभव करने और एक अभिनव शैक्षिक भ्रमण करने के लिए बहुत सी चीजें हैं और ये पटना में प्रसिद्ध स्थलों में से एक है और सुबह 9:30 से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। तो 2-3 घंटे का अगर आपके पास समय है तो आप इस जगह को आसानी से देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, जरूर बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, आज हम निकले हैं बिहार के पटना की सैर पर, और मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर घूमने के लिए और कौन कौन सी प्लेसेस हैं, तो जरूर बताऊंगी। 11:28:39 हो चुके हैं और आप हैं आपकी दोस्त आर्जे रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ। तो भाई बता दूं आपको कि बिहार में यानी पटना में एक बिहार संग्रहालय भी है। इतिहास के शौकीनों के लिए बिहार संग्रहालय पटना में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, और ये जगह राज्य के इतिहास और प्राचीन संस्कृति के बारे में जानकारी देती है। संग्रहालय के अंदर ऐसी कलाकृतियां हैं जो सदियों पुराने पटना संग्रहालय से जुड़ी हैं। इसके साथ ही मानव इतिहास के बारे में जानकारी और कलाकृतियां भी स्थापित हैं। करीब 5.5 हेक्टेयर भूमि में फैले इस संग्रहालय में इमारतों की एक बिखरी हुई योजना है, जिसमें गैलरी, शैक्षिक और प्रशासनिक क्षेत्र शामिल हैं। सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये खुला रहता है, और छोटा सा शुल्क है जो आपको यहां जाने के लिए देना होता है, करीब 50 या 100 रुपए के आसपास। तो आपको इस जगह को जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा पटना तारामंडल आप देख सकते हैं। पटना शहर में स्थित पटना प्लेनेटेरियम को एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े प्लेनेटेरियम्स में से एक माना जाता है। ये आधुनिक प्रक्षेपण प्रणाली को दर्शाता है, और एक आकर्षक सभागार के साथ एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया परिसर भी है। यहाँ पर अंदर खगोल विज्ञान से संबंधित कई फिल्म शो प्रदर्शित किए जाते हैं। ये पटना के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। सुबह 11 से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है, और यहाँ पे भी आपको प्रवेश शुल्क देना होगा। 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे अगर हैं तो उनके लिए भी, और अगर उससे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आपको शुल्क नहीं देना है।

संग्रहालय स्थानीय रूप से जादू घर के नाम से मशहूर पटना संग्रहालय भी एक यहाँ पर जगह है जो आप देख सकते हैं। बिहार में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है ये, और ये जगह करीब 50,000 दुर्लभ कलाकृतियों के लिए जानी जाती है जो देखने लायक है। इसके अलावा यहाँ मध्ययुग, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल और प्राचीन काल की भारतीय कलाकृतियां भी हैं जो आप देख सकते हैं। 1917 में निर्मित इस जगह में एक समृद्ध संग्रह है जो भारतीय इतिहास और राज्य के गौरव को दर्शाता है। इमारत में मुगल और राजपूत वास्तुकला का प्रदर्शन भी किया गया है और इसके परिसर में कई गैलरीज हैं। ये पटना की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। सुबह 10:30 बजे खुल जाता है, शाम 4:30 बजे बंद हो जाता है और सोमवार का दिन यहाँ पर अवकाश रहता है। अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ भी आपको प्रवेश शुल्क के तौर पर करीब 15-20 रुपए आपको देना पड़ सकता है। तो अगर आप यहाँ भी जाने का प्लान करें तो ये भी एक आपके लिए यादगार अनुभव होगा। इसके अलावा जापानी शांति पैगोडा है जो कि 1969 में खुदाई में प्राप्त जापानी शांति पैगोडा 125 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसे बुद्ध विहार सोसाइटी ने बनाया था। ये सफेद सुंदर स्तूप हरियाली से घिरा हुआ है और एक तालाब से सजा है। साथ ही यहाँ बोटिंग का आनंद भी आप ले सकते हैं। स्तूप के आसपास उत्तरी तट पर एक संग्रहालय है जिसमें खुदाई के दौरान मिली कलाकृतियां शामिल है और ये पटना के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके अलावा आप चाहें तो छोटी दरगाह देखने के लिए भी जा सकते हैं। बताऊंगी जरूर इस जगह के बारे में भी, लेकिन इस गीत के बाद।

0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: तभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी एक और जगह जिसे छोटी दरगाह कहते हैं। यहाँ पर क्या है घूमने के लिए, अपने इतिहास को बरकरार रखते हुए छोटी दरगाह एक 3 मंजिला मकबरा है जो मनेर में स्थित है। पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर NH 30 पर स्थित है ये, और इसे वास्तुकला का चमत्कार माना जाता है। ये वो जगह है जहां 1616 में मखदूम शाह को दफनाया गया था और वर्तमान समय में ये मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए लोकप्रिय दरगाह है। इसके साथ ही एक बड़ा तालाब भी है जो मकबरे के ठीक सामने स्थित है। आप इस स्थान को पटना में दोस्तों के साथ एक दिन घूमने की जगहों की सूची में शामिल कर सकते हैं। यहां जाने के लिए आपको कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना है। और इसके अलावा आप चाहें तो संजय गांधी वनस्पति उद्यान है, स्थानीय रूप से जैविक उद्यान के नाम से ये मशहूर है, संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से। और इस वनस्पति उद्यान की स्थापना 1969 में हुई थी। ये पटना में कपल्स के लिए घूमने के लिए बहुत ही शांत प्लेस है जहां पर आप जा सकते हैं। वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल विविधता का घर है ये वनस्पति उद्यान को। पटना चिड़ियाघर भी कहा जाता है, जो लोग हाथी की सवारी और

रूप से सम्राट अशोक द्वारा लगभग 40 स्तंभ बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ एक स्तंभ मौजूद है जो देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और ये पटना के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। प्रवेश शुल्क नहीं है, यहाँ भी आप आसानी से यहाँ भी जा सकते हैं। गांधी घाट की बात करूं तो गंगा नदी के तट पर स्थित एक लोकप्रिय धार्मिक स्थल है ये, जो पटना के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, क्योंकि महात्मा गांधी की अस्थियां इस स्थान पर विसर्जित की गई थी और इस खूबसूरत स्थल का मुख्य आकर्षण गंगा आरती है, जिसमें भगवा वस्त्र पहने पुजारियों का एक समूह 51 द्वीपों से प्रार्थना करता है और इस जगह की सैर पटना में करने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है ये। अगर मैं कहूं तो पूरा दिन आप यहां पर जा सकते हैं, प्रवेश शुल्क तो यहां नहीं है, लेकिन आप यहां गंगा घाट का आनंद जरूर ले सकते हैं, यहां की आरती का आनंद जरूर ले सकते हैं। इसके अलावा गोलघर एक जगह है, पटना शहर के बीचों बीच स्थित गोलघर का निर्माण कैप्टन जॉन गास्टिन ने साल 1786 में गोदाम के रूप में करवाया था और पटना की प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित यह विशाल संरचना अन्न भंडार के शीर्ष से पूरे शहर का शानदार नजारा पेश करती है। शांति चाहने वालों के लिए ये यकीनन पटना में घूमने की सबसे अच्छी जगह है और सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ये भी खुला रहता है। पाटन देवी मंदिर है एक, पटना में पाटन देवी मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और इसे स्थानीय रूप से माँ पटनेश्वरी के नाम से जाना जाता है। पटना का सबसे पुराना मंदिर होने की वजह से ये अपने खास अनुभवों के लिए भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है और ये मंदिर शक्ति पीठों में से एक है और पूरे साल तीर्थयात्रियों का स्वागत करता है। ये पटना के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और यहां भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। कुम्हरार एक जगह है, पाटलिपुत्र के प्राचीन शहर के अवशेषों का अन्वेषण आप यहां पर कर सकते हैं, जिस पर कई उत्खनन कार्य हुए हैं और इस प्राचीन शहर के मुख्य आकर्षण आरोग्य बिहार, असेंबली हॉल, दुराखी देवी मंदिर और आनंद बिहार है। यहां पर आप जा सकते हैं, इतिहास प्रेमियों और उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो पिछले युग के तथ्यों को उजागर करना पसंद करते हैं। और इसके अलावा क्या है यहां देखने को जरूर बताऊंगी, लेकिन इसके

0: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: NCREPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: तो भाई पटना की सैर कर रहे हैं आप और हम। बिहार की खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग का घर राजधानी होने के नाते पटना में कई प्रमुख केंद्र हैं जो इस कला की बेहतरीन संग्रह प्रदर्शित करते हैं। इसलिए अगर आपको मधुबनी पेंटिंग से भी प्यार है, लगाव है, तो आप कुछ असली मास्टरपीस खरीदने के लिए जा सकते हैं फ्रेजर रोड पर स्थित अजंता में। यहां पर रविवार को छुट्टी रहती है, लेकिन बाकी दिन आपको यहां का संग्रह देखने का मौका मिल सकता है और आप यहां से कुछ खरीदना चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं। गांधी संग्रहालय है, गांधी संग्रहालय जो कि दिलचस्प संग्रहालय पटना में उन जगहों में से एक है जहां आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। जैसे इतिहास के शौकीन दोस्त अगर आपके साथ हैं तो आप उन्हें यहां लेकर जा सकते हैं। काफी लोकप्रिय है ये जगह। महात्मा गांधी के जीवन की दृश्य जीवनी को चित्रों के साथ यहां पर दिखाया गया है और यहां कई किताबें और ऑडियो लाइब्रेरी भी है जो उस युग की खास जानकारी देती है, तो आप यहां भी जा सकते हैं। महावीर मंदिर है एक यहां पर। इसके अलावा सीतामढ़ी है, जो सीतामढ़ी एक शांत शहर है, हिंदुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है, यहां भी आप जा सकते हैं। और महावीर मंदिर, जैसा कि मैंने कहा कि ये भी यहां का, अगर मैं कहूं महावीर मंदिर उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है यहां, और ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। यहां पर 20 साल भर हजारों तीर्थयात्री पहुंचते हैं, यहां आप जा सकते हैं। इसके अलावा जालान संग्रहालय है, गांधी मैदान है, इको पार्क है, इस्कॉन मंदिर है, कोलुआ कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पटना में आपको हर यात्रा को, मैं कहूं कि अगर हर बार आप यहां पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ देखने के लिए आपको जरूर मिलेगा अगर आप एक यात्रा में इसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो भी। और अगर मैं बात करूं यहां आपको खरीदना क्या चाहिए, तो भाई आपको बता दूं कि हाथ से बनी वस्तुएं, दीवार पर लटकने वाली वस्तुएं जैसे कि वॉल हैंगिंग्स, मधुबनी पेंटिंग, चमड़े की वस्तुएं, मोतियों से बने आभूषण और कई स्थानीय रूप से निर्मित चीजें आप यहां से खरीद सकते हैं। उपहार और स्मृति चिन्ह के रूप में आप अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए ला सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर भाषा की, तो भाई बिहार में हिंदी व्यापक रूप से बोली जाती है, हालांकि राज्य में 5 बोलियां इस्तेमाल की जाती हैं और ये हैं भोजपुरी, मैथिली, मगही, वज्जिका और अंगिका। लेकिन अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप यहां आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। पटना में खाने की बात करूं, क्योंकि घूमते घूमते भूख लगना तो लाजमी है, और जब आपको भूख लगे तो यहां आप क्या चख सकते हैं। स्ट्रीट फूड के तौर पर आपको आसानी से मिल जाएगा

लिट्टी चोखा पटना का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। सत्तू से भरे गेहूं के गोले को आग पर भूनकर और चोखी, जो कि भुनी हुई बैंगन और आलू की टमाटर की सब्जी होती है, इसके साथ परोसा जाता है, तो ये आप यहां पर चख सकते हैं। कचौरी और चने की घुगनी भी आप यहां टेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक स्ट्रीट फूड है यहां पर। और कचौरी के साथ चने की घुगनी एक लोकप्रिय पेट भरने वाला स्ट्रीट फूड है, तो ये भी आप चख सकते हैं। मालपुआ टेस्ट कर सकते हैं, मैदा दूध और नारियल से बनता है, एक तरह का पैनकेक है। बटाटा पूरी जो कुरकुरी सूजी से बनाई जाती है, मसालेदार आलू और दही भरकर ऊपर से चटनी के साथ अनार और सेब डालकर परोसा जाता है इसे। और मोमोज तो आपको हर जगह मिल ही जाते हैं, अगर आप इन्हें खाना पसंद करते हैं तो ये भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। टमाटर चाट आप चख सकते हैं, चंपारण मटर, मटन और बिहारी कबाब, कटहल की सब्जी, कड़ी बड़ी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको आपके जायके को बढ़ाने के लिए मिल जाएंगी। और अगर मैं बात करूं तो पटना बहुव्यंजन परोसने के लिए जाना जाता है, जिसमें मुगलई भोजन, थाई और चीनी भोजन और मुर्ग मलाई और ग्रिल्ड मछली भी शामिल है। पटना एक ऐसा शहर है जो सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक आकर्षणों से भरपूर है, और पटना में कई छिपी हुई जगहें हैं जो इस जगह की विरासत को दर्शाती हैं। बिहार की राजधानी पटना में छठ पूजा, दीपावली और प्रकाश पर्व जैसे त्योहार भी भव्य तौर पर मनाए जाते हैं, और यहाँ गांधी मैदान और बाकी स्थानों पर प्रसिद्ध बिहार सरस मेला, पुस्तक मेला और दुर्गा पूजा के बड़े आयोजन होते हैं। पास ही एशिया का प्रसिद्ध सोनपुर मेला भी लगता है। प्रमुख त्योहार छठ पूजा है और ये बिहार का सबसे बड़ा और मुख्य लोक पर्व है, जहां आप अगर इस मौके पर यहां पहुंचे तो इसका हिस्सा भी आप बन सकते हैं। पटना में गंगा घाटों पर लाखों लोग सूर्य देव की पूजा करते हुए आपको इस मौके पर मिल जाएंगे। प्रकाश पर्व की बात करूं तो 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थान होने की वजह से पटना साहिब भी उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाता है। और दुर्गा पूजा की बात करें तो शारदीय नवरात्र के दौरान पटना में शानदार पंडाल बनते हैं और शहर में भारी भीड़ होती है। मकर संक्रांति, दावते चूड़ा दही, यहां एक त्यौहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाता है ये। और प्रसिद्ध मेले बिहार सरस मेले की बात करूं तो गांधी मैदान में, जैसा कि मैंने कहा, ये लगता है ग्रामीण हस्तशिल्प और कला का प्रदर्शन यहाँ होता है। पटना पुस्तक मेला पुस्तक प्रेमियों के लिए गांधी मैदान और बाकी सांस्कृतिक केंद्रों पर आयोजित होने वाला बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है ये। सोनपुर मेला, जो कि पटना के पास सोनपुर में एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला के तौर पर जाना जाता है और परंपरा व्यापार का अनूठा केंद्र भी है, तो आपको इन सब का हिस्सा भी जरूर बनना चाहिए। तो भाई, पटना एक ऐसी जगह है जहां पर आप जाएंगे तो आपकी यादों में बहुत कुछ समेट कर लाएंगे, और बहुत कुछ ऐसा है जो फिर भी छूट जाएगा क्योंकि आपको पटना दोबारा जाने का मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि पटना की यात्रा में जितना भी देखें कम है। बहुत खूबसूरत जगह है, जब भी मौका मिले जरूर जाइएगा यहां पर। फिलहाल एक और गीत आप तक पहुंचाती हूं और उसके बाद बताऊंगी आगे क्या है सफर में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुई यूपीआई के लेन

0: की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने संसद में बार बार हंगामा करने को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संविधान विपक्ष को सवाल पूछने, विरोध करने और मतदान करने का अधिकार देता है, लेकिन संसद की कार्यवाही बाधित करने का नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापान की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के वित्त मंत्री नतालियो डी वीटली से मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बदलाव, निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। बिल ऑफ एंट्री वह घोषणा पत्र है जो आयातक विदेश से माल मंगाते समय सीमा शुल्क विभाग को देता है। इसमें माल की मात्रा, कीमत और उस पर लगने वाले कर की जानकारी होती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अगस्त की शुरुआत में जारी नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों के तहत टैरिफ रेट कोटा योजना के अंतर्गत 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई थी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 77,238 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi hailed the decade-long success of service of Unified Payment Interface. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling the countrymen to share their UPI experience, he stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. The United Payments Interface, UPI, has completed 10 years of transforming digital payments and has emerged as the backbone of India's digital payments ecosystem.

0: हर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू। तो कीजिए स्वीकार हमारा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 MHz पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 KHz पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातें मुलाकातें। झमझम झमझम मेघ बरसते सावन के, छमछम छम गिरती बूंदे तरुओं से छन के, चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के।

जी, मौसम की इस खुशनुमा मौसम को बयां करता हुआ, जिसमें कि तन मन हमारा प्रफुल्लित है, तो इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करता हुआ ये गीत आपने सुना। फिल्म थी बनारसी ठग और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और इसी के साथ बात करते हैं, जैसे कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे

सौ बार रहीमन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। इसमें रहीमदास कहते हैं कि यदि कोई आपका प्रिय सज्जन आपसे रूठ जाए तो चाहे वो आपसे कई बार रूठे, 100 बार रूठे, उसे बार बार मना लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे माला के कीमती मोती माला टूटने के बाद भी रख ली जाती है और फिर उसे किसी धागे में पिरोकर सुंदर माला बना ली जाती है, वैसे ही होते हैं रिश्ते, जिन्हें संजो कर रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा प्रश्न है रूठने मनाने पर, जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा, रिश्तों की ताजगी, रिश्तों की मजबूती और है रिश्तों की मिठास और अपनापन। तो आज आपको बताना है कि कहीं आप बात बात पर रूठते तो नहीं या फिर मनाते ही रह जाते हैं, कोई आपसे जाता है रूठ, यानी आपको बताना है कि आप मनाते ज्यादा है या रूठते ज्यादा है। लिख भेजिए हमें fmgoldga@gmail.com पर, हमें है आपके प्यारे प्यारे मेल्स का इंतजार।

जी थोड़े शिकवे भी हो, थोड़ी शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है। ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, फिल्म थी आस का पंछी। और देखिए हमारे पास सबसे पहले जो मेल लिखते हैं नवीन भाटिया जी, उनका उनकी मेल आ चुकी है और ये लिखते हैं कि मनाते ज्यादा हैं और कभी खुद रूठ जाएं तो जल्दी मान भी जाते हैं, बातचीत नहीं बंद करनी चाहिए। जी बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि कितना भी रूठे नाराज हों लेकिन बातचीत नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि बातचीत होती है तभी गलतफहमियां दूर होती हैं और तभी रिश्ते बनते हैं और अच्छे। और ये आपने लिखा है हमें और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हम बात करते हैं अब प्रोग्राम में आगे कि आज है उत्तरातम यानी पहला ओनम। पूरे केरल और दुनिया भर में रह रहे मलयाली भाई बहनों को सबसे पहले उत्तरादम की ढेरों शुभकामनाएं। यूं तो ओनम 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है लेकिन असली उत्सव की शुरुआत आज यानी 9वें दिन से होती है। इसे पहला ओनम भी कहते हैं। केरलम की हवाओं में केले के चिप्स की खुशबू, बाजारों में फूलों की बहार अपने आप ही बता देती है कि ओनम का खास दिन आ गया है। ओनम का ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे है एक खूबसूरत और पौराणिक कहानी भी। ये त्यौहार मुख्य रूप से दानवीर राजा महाबली के स्वागत और अच्छी फसल के उल्लास में मनाया जाता है। राजा महाबली आज ही के दिन अपनी प्रजा से मिलने के लिए केरलम की पावन धरती पर कदम रखते हैं और राजा के स्वागत की बात हो तो फिर उत्सव तो बन ही जाता है। आज अगर आप केरल के बाजारों में जाएं ना तो आपको एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। लोग अंतिम समय की खरीदारी के लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं। ताजी सब्जियां, पारंपरिक कसू साड़ियां और फल, इस मजेदार भाग दौड़ को भी स्थानीय भाषा में कहते हैं उत्तरा द पचल यानी त्योहार की वो मीठी हड़बड़ी जिसमें हर कोई डूबा हुआ है। इसके अलावा आज के दिन घरों के आंगन में बनाई जाती हैं फूलों की रंगोली यानी पुकलम, जो आज अपने सबसे भव्य रूप में दिखाई देती है और बनता है पायसम। फिर आज रात भर जाग कर कल के महाभोज यानी ओनम संध्या की तैयारी होती है। तो बस अपनी तैयारियों को दीजिए अंतिम रूप और अपनों के साथ मुस्कुराइए और इस त्योहार का आनंद लीजिए। तो फिर एक बार हमारी ओर से हैप्पी उत्तरादम।

लता और आशा की आवाज में आपने ये गीत सुना, फिल्म थी राजकुमार। और अब ये एक मेल हमारे पास और आ गई है उग्रसेन यादव की, और ये लिखते हैं कि मनाते ज्यादा हैं। और भाई मनाते ज्यादा हैं तो भाई ये तो बात अच्छी नहीं है। जो भी आपके मतलब जो भी रिश्ता है आपके भाई बहन का, दोस्त का, तो भाई वो भी ध्यान दे कि भाई आपको भी कभी मनाने के का एहसास आपको भी हो जाए। और देखिए इसी बात पे मुझे एक शेर याद आया कि रूठने और मनाने के एहसास में है एक कैफो सुरूर, मैंने हमेशा उसे मनाया है, वो भी तो कभी मनाए मुझे। खैर अब दूसरा एक मेल है मेरे पास, ये है चरणदास जी लिखते हैं कि नमस्कार, और ये लिख रहे हैं कि दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मैं किसी से एक बार भी नहीं रूठा और मनाने में जिंदगी गुजर गई, कई बार पता ही नहीं चलता कि दूसरा किस कारण से नाराज है, अब तक तो प्रार्थना है कि कभी ना रूठें। तो भाई देखिए जो क्यों नहीं पता चलता, भाई आगे बढ़ के आप भी पूछ लीजिए कि वो क्यों नाराज है आपसे या उसके मन में क्या है। देखिए अगर कोई नाराज है या कोई रिश्ता ऐसा घनिष्ठ है जिसमें कि अपने से ही नाराज हुआ जाता है, तो अगर आपसे कोई नाराज है तो आप ही आगे बढ़ के पूछ लीजिए कि भाई क्या बात है, और गलतफहमियां दूर कीजिए और फिर अपने रिश्ते को मतलब सामान्य कीजिए और संबंधों को मजबूत कीजिए। और इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बात कर रही हूं आज राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े की। आंखें ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है, सबसे अनमोल तोहफा, इन आंखों के बिना ये खूबसूरत दुनिया एक कोरे कागज के सिवा कुछ भी नहीं। अपनों की खूब मुस्कुराहट, सुबह की पहली किरण और ढलती शाम, ये सावन की हरियाली, ये सब हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास हैं हमारी दो अनमोल आंखें। लेकिन जिनके पास ये नेमत नहीं होती, जो विवश हैं अपनी अंधेरी दुनिया में रहने के लिए, उनके जीवन को भी रोशन कर सकती हैं हमारी ये आंखें। यानी हम भले ही दुनिया से चले जाएं, हमारी आंखें फिर भी जीवित रहेंगी। जी हां, ये नेत्रदान से संभव है। इसीलिए हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे भारत में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना, समाज से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करना और इस दुनिया से जाने के बाद लोगों को आंखें दान करने के लिए प्रेरित करना है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी पुतली की खराबी के कारण लाखों लोग इस खूबसूरत दुनिया को देखने से महरूम हैं। कॉर्निया से जुड़ी अंधता को दूर करने के लिए भी इस पखवाड़े को मनाया जाता है। और देखिए नेत्रदान के लिए किसी भी उम्र, लिंग या ब्लड ग्रुप की बाध्यता नहीं होती। आपके जाने के बाद आपकी ये दो आंखें दो अलग अलग लोगों के सूने आंगन में उजाला कर सकती हैं। इसकी प्रक्रिया भी बहुत आसान है। आप NOTTO यानी कि राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन या फिर अंग पुनर्प्राप्ति एवं बैंकिंग संगठन यानी ORBO की सरकारी वेबसाइट पर घर बैठे ऑनलाइन डोनर कार्ड पा सकते हैं। और अगर आप इंटरनेट का उपयोग नहीं करना चाहते तो शहर के किसी भी सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त आई बैंक में जाकर डोनर कार्ड बनवा लें और उसे

हमेशा अपने पास रखें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी काम है अपने परिवार से बात करना, उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। और आपके इस दुनिया से जाने के बाद 4 से 6 घंटे के भीतर आई बैंक को सूचित करना उनकी जिम्मेदारी। तो आइए इस राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े पर रोशनी का एक नया सिलसिला शुरू करें, किसी की जिंदगी को उजाला करके।

अभी आपने रफ़ी को सुना, फिल्म थी चिराग। और अब मेरे सामने ये मेल है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी की, जो शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं। ये हमारे नियमित श्रोता हैं और आज अपने प्रश्न का जवाब देते हुए इन्होंने लिखा है कि सबसे बड़ी सीख अपनों से हार जाना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अपनों से क्या रूठना, कोई रूठ रूठ

है तो उसे मना लेना। जी, बहुत अच्छी और गहरी बात आपने कही, रिश्तों को सजोने वाली और रिश्ता निभाने वाली यही बात है कि अगर अपनों से हार जाते हैं तो अपनों से हारना ही सबसे बड़ी जीत है, और कभी भी इसमें अहम नहीं आना चाहिए आड़े, क्योंकि अहम जो है वो रिश्तों में जो है खटास ला देता है, दूरियां पैदा कर देता है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है और कोई आपसे नाराज है, कोई रूठा है, तो उसे बिना देर किए, बिना वक्त गंवाए उसे जरूर मना लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी अना का सवाल है तो फिर हाथ बढ़ा के दोस्ती के लिए मैं ही बढ़ाता हूँ। ये बिल्कुल यही जो फलसफा है वो जीवन में उतारना चाहिए। और इसी तरह से आज बात करते हैं राखी, क्योंकि आने वाली है, देखिए भाई, और राखी में भी विशेष ध्यान रखिएगा कहीं आपके बहन भाई के रिश्तों में भी कोई नाराजगी ना आ जाए। तो गिफ्ट का इसमें बहुत अहम भूमिका होती है, तो आजकल हर तरफ मिठाइयों की दुकानें, रंग बिरंगी राखियां, यानी रक्षाबंधन बस आने ही वाला है। तो भाई बहन के इस पवित्र त्यौहार में यूं तो भावनाएं सर्वोपरि होती हैं, लेकिन फिर भी गिफ्ट की अपनी भूमिका है। जितनी अहमियत गिफ्ट की होती है, उतनी ही अहमियत होती है उसकी रैपिंग की। सुंदर रैपिंग उपहार पाने वाले के मन में उत्सुकता और खुशी को कई गुना बढ़ा देता है। ये दर्शाता है कि उपहार देने वाले के लिए आप कितने अहम हैं। गिफ्ट रैपिंग एक कला भी है। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो सामने वाले में वो जो उत्सुकता, मतलब जो एक्साइटमेंट होता है ना, उसको उत्सुकता होती है कि अरे इसके अंदर क्या होगा, तो असली आनंद उसी में है, इस सस्पेंस में है। तो चलिए आज इस रक्षाबंधन पर कुछ कमाल के और अनोखे आइडियाज के साथ अपनी राखी को बनाते हैं कुछ खास। पहला आइडिया है बचपन की यादों का रैप। इस बार चमकीले प्लास्टिक पेपर की बजाय सिंपल वाइट या क्राफ्ट पेपर लेकर उस पर अपने भाई बहन के साथ बचपन की जो पुरानी तस्वीरें हैं ना, उनका एक छोटा सा कोलाज बनाकर प्रिंट कर लीजिए और फिर उस पर चिपका दीजिए। यकीन मानिए कि गिफ्ट मिलने से पहले ही ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देंगी और भाई बहन के संबंधों को और मजबूत करेंगी, गाढ़ा करेंगी। फिर इसी तरह से दूसरा आइडिया है मॉक राखी स्टाइल। इसमें राखी को सिंपल टिश्यू पेपर या किसी अच्छे फैब्रिक से रैप करके खूबसूरत मोटी रेशमी डोरी या पारंपरिक कलावे से बांध दीजिए, और डोरी के बीच में एक सुंदर सा गोटा पट्टी या फिर छोटा सा मोरपंख लगा दीजिए। ऐसा लगेगा जैसे गिफ्ट को ही राखी बांधी गई हो, एकदम ट्रेडिशनल लुक। और फिर है फुरोशिकी स्टाइल। ये एक जापानी स्टाइल है जहां कागज की जगह सुंदर सूती कपड़े का या स्कार्फ का इस्तेमाल किया जाता है गिफ्ट को बांधने में, यानी रैपिंग भी एक गिफ्ट बन जाती है। इसके लिए आप सबसे पहले जो घर में सुंदर कपड़े हों कोई, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई आइडियाज हैं, जैसे सादे कागज पर खुद स्केच पेन, वाटर कलर या थंब प्रिंट यानी अंगूठे के निशान से पोलका डॉट्स या दिल के सितारे बनाकर गिफ्ट पैक करना भी एक अच्छा आइडिया है। ये सामने वाले को ये एहसास कराता है कि आपके दिल में उसकी कितनी अहमियत है। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसमें शामिल होती हैं आपकी दुआएं, भावनाएं। तो इस बार गिफ्ट देने में दिखाइए अपनी क्रिएटिविटी और अपनी कला भी।

ये थी लता मंगेशकर, फिल्म थी आई मिलन की बेला। और अब बात हमारे देश, हमारी संस्कृति की एक वैश्विक उपलब्धि की। जी हां, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित ऐतिहासिक और पवित्र स्थल सारनाथ को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। अब सारनाथ भारत का 45वां और उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यूनेस्को द्वारा दिया गया ये टैग मात्र टैग नहीं, ये सदियों पुरानी हमारी विरासत को पूरी दुनिया का सम्मान है। सारनाथ वो पवित्र भूमि है जहां ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। जब आप वहां कदम रखते हैं तो धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप और सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ को देखकर ऐसा लगता है मानो इतिहास साक्षात आपसे बातें कर रहा हो। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित होने के बाद अब पूरी दुनिया के पर्यटक और इतिहास प्रेमी सारनाथ की इस भूमि, पवित्र भूमि में जाएंगे और शांति महसूस करने के लिए ये जाएंगे यहाँ पर और बड़ी संख्या में जाएंगे। तो अब जब भी अवसर मिले आप भी बनारस और सारनाथ के इस ऐतिहासिक स्थल को देखिए और अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व कीजिए।

और अभी आपने ये गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की और फिल्म चित्रलेखा। और ये हमारे सामने है एक और मेल, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं, गौरी शंकर नागलोई से। और ये लिखते हैं कि किसकी ज़रूरत कब पड़ जाए, इसलिए कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए और बातचीत करके उस गलतफहमी को दूर करना चाहिए, समय कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि कभी भी जो है वो रिश्ते को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई नाराज़ है तो उसे बिना वक्त गंवाए बिल्कुल मना लेना चाहिए। और इसी के साथ ये लिख रही हैं, बुरारी से सिमरन बोल रही हूँ, ये कह रही हैं और लिख रही हैं कि रूठना भी उनसे होता है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो मनाने की भी ज़रूरत उसी को मनाना ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि, और एक शेर याद आ रहा है मुझे कि न जाने रूठ के बैठा है दिल का चैन कहाँ, मिले तो उसको कोई मेरा सलाम कहना। बिल्कुल सही बात है, जब कोई रूठ जाता है तो उससे बेचैनी खुद को भी होती है और खुद को भी लगता है कि कब ये रिश्ता फिर से सामान्य हो जाए। और क्योंकि रिश्तों में अगर भावनाएं हैं तो भावनाओं की यही बात है कि दूसरा अगर तकलीफ में है तो उससे फिर हमें भी तकलीफ होती है। और इसी के साथ मैं बात कर रही हूँ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए कि इको प्रिंटिंग की बात, तो एक ऐसी कला है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि हमारी धरती को मुस्कुराने की वजह देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इको प्रिंटिंग की, जिसे तकनीकी भाषा में कॉन्टेक्ट बॉन्ड टेक्निकल डाइंग कहा जाता है। इको प्रिंटिंग प्रकृति के रंगों और डिजाइनों को सीधे कपड़े या कागज पर उतारने का ऐसा अनोखा जादू है जिसमें किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल या सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधों की पत्तियां, फूल, छाल, बीज को कपड़े पर रखकर, लपेटकर और फिर भाप देकर उनका प्राकृतिक रंग और खूबसूरत आकार कपड़ों पर हूबहू छाप दिया जाता है। लेकिन इको प्रिंटिंग सिर्फ कपड़े पर पत्ती रख देना ही नहीं है, बल्कि ये है एक बेहद खूबसूरत रासायनिक प्रक्रिया। दरअसल पौधे की पत्ती, छाल और फूल में प्राकृतिक रूप से कुछ पिगमेंट और टैनिन पाए जाते हैं, और जब हम इन पत्तियों को कपड़े पर कसकर बांधते हैं और एक निश्चित तापमान पर भाप देते हैं तो वो टैनिन एक्टिवेट हो जाता है और कपड़े के रेशों के साथ एक स्थायी जैविक बंधन बना लेता है, जिससे वो रंग और पत्ती का आकार हमेशा के लिए कपड़े पर छप जाता है। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों की मांग जो है वो कर रही है। लोग केमिकल वाले कपड़ों को छोड़कर ऑर्गेनिक चीजों की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे में यदि आपको इको प्रिंटिंग आप सीखते हैं और तो घर बैठे एक बिजनेस शुरू करने का एक बेहतरीन मौका है। ये जरिया बन सकती हैं आपके कमाई का। तो इसमें बनती है ऑर्गेनिक साड़ियां, दुपट्टे, स्कार्फ, बेडशीट और कुशन कवर्स, ये भी बहुत कम लागत में। और इसके लिए आपको ना कोई महंगी मशीन की जरूरत नहीं होती। पत्तियां और फूल आपको प्रकृति से मुक्त मिल जाते हैं। बस आपको चाहिए सूती सिल्क या लेनिन जैसे प्राकृतिक कपड़े और थोड़ा सा हुनर। इको प्रिंटिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये छपा हुआ इसका कपड़ा पूरी दुनिया में इकलौता होता है, यानी ये होता है यूनिक प्रोडक्ट, क्योंकि दो पत्तियां कभी एक जैसा छाप नहीं छोड़ती हैं। आप अपने इन यूनिक और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अच्छे दामों पर बेच सकते हैं, यानी ग्लोबल मार्केट है आपका।

तो आप अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी क्रिएटिविटी से एक शानदार करियर बनाना चाहते हैं तो इको प्रिंटिंग है आपके लिए बेहतरीन मौका। तो प्रकृति से जुड़िए, आत्मनिर्भर बनिए और अपनी कला से दुनिया को और भी खूबसूरत बनाइए।

झुक गया आसमान, इस फिल्म से अभी आपने सुना लता मंगेशकर को। और अब बात कर ली जाए कुछ मौसम की और मौसम में रखी जाने वाली सावधानियों की, क्योंकि आजकल के मौसम में नमी बढ़ जाती है इसलिए संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है, विशेषकर भोजन या पानी के दूषित होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में हमारी छोटी सी लापरवाही पेट और पाचन से जुड़ी कई समस्याओं का कारण बन सकती है, इसीलिए इस मौसम में खान पान की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। बाहर खुले में रखे खाद्य पदार्थ, कटे हुए फल, लंबे समय से रखा हुआ खाना और अस्वच्छ स्थानों पर तैयार किए हुए भोजन से बचना चाहिए। इन दिनों सड़क पर किनारे मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी से भी थोड़ी दूरी बनाकर रखी जानी चाहिए। और घर में भी आजकल कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप घर में बने हुए खाने में भी ध्यान रखेंगे तभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सब्जियों को जो है वो अच्छी तरह से धोएं, पानी हमेशा सुरक्षित और साफ पानी पिएं। इस मौसम में इन्फेक्शन जो है वो पानी से ज़्यादा होने के खतरा बढ़ा रहता है, तो पानी उबालकर या अच्छे फिल्टर का ही पिएं। हमेशा ताज़ा बना हुआ खाएं, बासी खाने से परहेज करें। सुबह का बना हुआ रात में या रात का बना हुआ सुबह खाने से जो है वो सेहत खराब हो सकती है। और इस मौसम में बहुत अधिक तला भुना या गरिष्ठ भोजन भी नहीं खाना चाहिए, उससे भी बचना चाहिए। हल्का ताजा और संतुलित भोजन लेना ही बेहतर है। रात का खाना जितना हल्का और सुपाच्य होगा सुबह आप उतने ही फ्रेश और एनर्जेटिक उठेंगे। तो इन दिनों चाय या काढ़े में अदरक, तुलसी, काली मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, ये आपकी इम्यूनिटी को सुपर पावर कर

करेगा। साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए आजकल के मौसमी जो फल होते हैं उनको, सब्जियों को भी आहार में शामिल कीजिए पर्याप्त मात्रा में, लेकिन बहुत अच्छी तरह से धोकर साफ करके। और इन दिनों स्वाद के साथ साथ अपनी साफ सफाई और संतुलन को इसी तरह थाली का हिस्सा बनाइए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और कार्यक्रम हमारा सुनते रहिए और मौसम का आनंद भी लेते रहिए।

आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेनदेन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान,

0: और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में UPI की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और आयकर रिटर्न जैसे संवेदनशील आंकड़ों तक निजी कंपनियों की पहुंच चिंताजनक है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सुरक्षा उपाय बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे ऐसी जानकारी का दुरुपयोग न हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हांग चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 110 अंक गिरकर 77,259 पर और निफ्टी 68 अंक गिरकर 24,151 पर आ गया। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल बारिश के कारण रुका हुआ है। श्रीलंका ने भोजन अवकाश तक पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। वक्त हुआ है 1:11:05 और ये समय रहता है कलाकार बेमिसाल का। हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर राजीव कपूर का आज हम जिक्र करने वाले हैं कलाकार बेमिसाल के सफर पर। राजीव कपूर एक ऐसे एक्टर रहे जो अपनी जिस फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हुए और जिस बैनर तले वो फिल्म बनी थी वो शो

मैन, वो कोई और नहीं शोमैन राज कपूर प्रोडक्शन ही था, आर के बैनर। डायरेक्टर प्रोड्यूसर की कमान जब शोमैन राज साहब के हाथ में रही हो तो फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तो जायज सी बात रही, लेकिन फिल्म में राज कपूर ने भी एज अ न्यू कमर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। इन्हीं की बातें, इन्हीं की फिल्मों से गीत आज कलाकार बेमिसाल के इस सफर पर सुनते रहेंगे। आप भी सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

कपूर परिवार के एक सदस्य शानदार एक्टर राजीव कपूर जन्म इनका हुआ मुंबई में 25 अगस्त 1962 को। पिता इंडस्ट्री के जाने माने शोमैन राज कपूर, बड़े भाई रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और इनके चाचा रहे शमी कपूर और शशि कपूर। राज कपूर साहब के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर 1985 में पिता की अंतिम निर्देशित फिल्म राम तेरी गंगा मैली से इन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान बनाई। फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई। सटीक सदा निर्देशन, कहानी और न्यू कमर्स की अदाकारी भी काफी पसंद की गई। फिल्म का गीत संगीत तो सदाबहार रहा, आज भी लोगों की जुबान पर आ जाता है। तो चलिए इसी फिल्म से एक बहुत ही शानदार और कर्णप्रिय गीत आप तक पहुंचा दिया जाए।

आकाशवाणी गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 और बातें हो रही हैं हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजीव कपूर साहब की। हरफन मौला कलाकार राजीव कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली चली तो खूब, पर राजीव कपूर को ये ज्यादा फायदा नहीं दिला सकी। कारण कुछ भी हो, वैसे होता अक्सर ये भी है कि फैमिली के बाकी कलाकारों से भी कंपैरिजन शुरू हो जाता है। शायद यही कुछ रहा राजीव कपूर के साथ भी। कैसी तुलना रही, कितनी रही, इस पर भी बात करेंगे। एक और शानदार गीत पहुंचा देते हैं आप तक फिल्म लावा से।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राजीव कपूर, जिनकी इस वक्त हम बातें साझा कर रहे हैं, कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1। अंजलि है आपके साथ। कपूर परिवार में एक से एक दमदार, शानदार अभिनय के बादशाह रहे हैं। खुद उनके पिता राज कपूर साहब, फिर उनके पिता पृथ्वीराज कपूर जी, इनके अलावा चाचा शमी कपूर और शशि कपूर साहब, भाई रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, अपने समय के दिग्गज। आज भी लोग इनकी फिल्में देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। शायद शुरुआत में राजीव कपूर के साथ भी लोगों ने कुछ इसी तरह की उम्मीदें बांध ली थी, पर फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने में कई बार थोड़ा वक्त भी लग जाता है। असफलता और अनुभव काफी कुछ सिखाते हैं आपको और सफल भी बनाते हैं, लेकिन इसी कड़ी में कई कलाकार हताश भी हो चलते हैं। ऐसा ही कुछ रहा राजीव कपूर के साथ भी, और कह सकते हैं कि ऐसी ही कुछ रही राजीव कपूर की फिल्में दास्तां भी।

राजीव कपूर जिन्होंने 1983 में फिल्म एक जान है हम से डेब्यू किया था फिल्म इंडस्ट्री में, उनके को स्टार रहे दिव्या राणा, निर्देश रहे फिल्म के राजीव मेहरा और अनु मलिक थे फिल्म के संगीतकार। जी हां, राजीव मेहरा जो कि निर्देशक थे फिल्म के, उनके निर्देशन में फिल्म बड़ी ही अच्छी बनी थी और गीत संगीत तो बहुत ही लाजवाब था। अगर आपने फिल्म देखी हो या इसका संगीत आप सुना होगा आपने, तो इस बात से आप जरूर सहमत होंगे कि फिल्म के गीत बहुत ही अच्छे बन पड़े थे। रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म कही जा सकती है इस फिल्म एक जान है हमको। न्यू कमर्स के तौर पर अच्छी एक्टिंग दिखी दोनों ही कलाकारों की। इसके बाद 1985 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली रही। इसके बाद राजीव कपूर हमें नाग नागिन अंगारे में भी बतौर अभिनेता दिखे।

बाद में राजीव कपूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के तौर पर भी नजर आए और उन्होंने काफी बेहतरीन फिल्में बनाई। अक्षय खन्ना, ऐश्वर्य राय स्टारर आ अब लौट चले, इस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया। और ऐसे ही 1986 में रिलीज हुई ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित की प्रेम ग्रंथ को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो चलिए, प्रेम ग्रंथ का ये बहुत ही कर्णप्रिय सा गीत, आपके भी पैर थिरक उठेंगे इस गाने के साथ।

एक्टर राजीव कपूर ने आसमा, लवर बॉय, जबरदस्त, शुक्रिया, हम तो चले परदेस और अंगारे, जिम्मेदार, शुक्रिया, मेरा साथी, इस तरह से काफी सारी फिल्में की अपने 10 साल के करियर में, लेकिन एज एन एक्टर उनका करियर जो था ना वो ज्यादा नहीं चल पाया। एक सवाल के जवाब में राजीव कपूर ने अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन के बारे में क्या कुछ गलत हुआ इस बारे में खुलकर बात की थी। जहां तक उनके करियर की बात है, उन्होंने कहा कि राम तेरी गंगा मैली मेरी सबसे बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन दूसरी फिल्म्स नहीं चली, हालांकि वो बुरी नहीं थी। दुख बात इस बात का है कि हर कोई मुझे शम्मी कपूर की तरह प्रोजेक्ट करना चाहता था, क्योंकि मैं उन्हीं की तरह दिखता था। जो हिट है तो फिट है, अगर आपकी फिल्में हिट हो रही हैं तो चीजें अलग हो जाती हैं। मैंने कुछ फिल्म्स की जिनका संगीत बहुत अच्छा था लेकिन वो चली नहीं। ऋषि कपूर ने भी अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में राजीव कपूर की काफी तारीफें की हैं। उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर उन्हें सिनेमा का बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति और आर्टिस्ट मानते थे और टैलेंटेड लोगों में से एक मानते थे राजीव कपूर को, लेकिन राजीव कपूर अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास नहीं कर पाए, ऐसा उन्होंने लिखा था। हम में से सबसे टैलेंटेड इंसान रहे राजीव कपूर। राजीव कपूर पियानो को बिना सीखे ही शानदार तरीके से बजाता था। कई बार मेहनत और तकदीर वो मुकाम नहीं दिला पाती जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं। यही कुछ बयां किया ऋषि कपूर ने अपनी किताब में राजीव कपूर के लिए। यही कुछ कहानी भी रही राजीव कपूर साहब की। खैर, उन्होंने जितना भी काम किया वो प्रशंसनीय है। हम उन्हें ऐसे ही अपनी यादों में संजो कर रखेंगे, उनकी फिल्मों का, उनके काम का ऐसे ही आनंद लेते रहेंगे। चलते चलते आसमा फिल्म का ये गीत किशोर कुमार साहब की आवाज में, और अभिनय फिल्म में तो आपको दिखेंगे राजीव कपूर।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है फिलहाल इजाजत, लेकिन 2:30 पर एक बार फिर से रहूंगी आपके साथ। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड। कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू खबरें, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असदुल्ला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की कामयाबी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यूपीआई भारत की डिजिटल अदायगी के सफर का एक अहम मोड़ है। मरकज ने मुस्तहिक लोगों को शहरियत की सर्टिफिकेट जारी करने के लिए CAA के तहत सुनवाई शुरू करने की खातिर मगरबी बंगाल हुकूमत को इख्तियार दिया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन के दरमियान सरहदी मामले पर चीन के वजीर खारजा वांग ई के साथ खसूसी नुमाइंदा बातचीत करेंगे। अमेरिका ने आला डिग्री याफ्ता अफराद समेत सभी H-1B वीजा के लिए फीस में $1,03,000 का इजाफा किया है। और टेस्ट क्रिकेट में कोलंबो में पहली इनिंग्स में श्रीलंका 5 विकेट के नुकसान पर 365 रन से पीछे है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपीआई खिदमात की 10 साल की कामयाबी को सराहा है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में जनाब मोदी ने यूपीआई को भारत के डिजिटल अदायगी के सफर में एक अहम मोड़ करार दिया। हम वतनों से यूपीआई से मुतालिक अपने तजुर्बात को शेयर करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीआई की वसत और रसाई पर हर भारतीय शहरी को फख्र करना चाहिए। यूपीआई का आगाज 25 अगस्त 2016 को किया गया था, जिसके जरिए लेन देन में अब तकरीबन 13,000 गुना इजाफा हो गया है। वजारत खजाना ने कहा है कि सालाना लेन देन 2016-17 में महज 1,78,00,000 था, जो 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से ज्यादा हो गया। इस मुद्दत के दौरान लेन देन की कदर 7,000 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 314,00,000 करोड़ हो गई है। यूपीआई की आज ही के दिन 2016 में शुरुआत की गई थी। इसको

0: आज 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस इकदाम ने भारत में डिजिटल अदायगियों के मंजरनामे को बदल कर रख दिया। यूपीआई को हासिल हुए गैर मुतवक्क इजाफे और भरोसे की वजह से इसको पूरी दुनिया में भी पहचान मिली है। ये सिस्टम अब 11 मुल्कों में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी नामा निगार ने खबर दी है कि डिजिटल अदायगियों में इख्तिलाफ, इक्तिसादी शमूलियत में तरक्की और डिजिटल इक्तिसादी खिदमात तक बढ़ती हुई रसाई के दरमियान फासलों को कम करते हुए यूपीआई ने मुल्क के लोगों को बाइख्तियार बनाया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: यूपीआई निजाम भारत के डिजिटल अदायगी के इको निजाम की एक मजबूत बुनियाद बनकर उभरा है। सिर्फ एक दहाई में यूपीआई ने मुल्क में डिजिटल अदायगियों को यकसर बदल कर रख दिया है, जिसके जरिए अदायगियां बर वक्त और आसान हो गई हैं। यूपीआई को हासिल हुए गैर मुतवक्क इजाफे और भरोसे की वजह से इसको पूरी दुनिया में भी पहचान मिली। सरदस्त 11 मुल्कों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इनमें मुत्तहदा अरब अमारात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, सिंगापुर और मॉरिशस शामिल हैं। आज पूरी दुनिया में होने वाली हर दो डिजिटल अदायगियों में से एक भारत में होती है। 2025 तक पूरी दुनिया की बरवक्त होने वाली अदायगी का 49% यूपीआई के जरिए हुआ है। दिल्ली से दीपेंद्र और आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली।
0: वजीर दाखिला अमित शाह ने यूपीआई के 10 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब शाह ने इस बात को उजागर किया कि यूपीआई वजीर आजम मोदी के उस नजरिए की एक मिसाल है जो इख्तिरा के जरिए भारत की तरक्की की राह हमवार करता है। यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा बरवक्त अदायगी का निजाम बताते हुए उन्होंने अवाम को तेज और आसान निजाम देने का सेहरा डिजिटल इंडिया के सर बांधा। बीजेपी ने 15 अगस्त को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए ऐलान करदा सप्तधारा को मुल्क की तरक्की का एक रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान डॉ संबित पात्रा ने मैन्युफैक्चरिंग, जरात और डब्बाबंद गजाई अशिया की प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और इख्तरा, गति शक्ति, दिफा, ग्रीन और समुद्री मीशत और सकाफती ताकत समेत इन 7 अहम शोबों को उजागर किया। मरकज ने मगरबी बंगाल हुकूमत को शहरियत से मुतालिक तरमीमी कानून CEA के तहत समाप्त करने और अहल दरख्वास्त गुजारों को शहरियत के सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार दे दिया है। मरकजी वजारत दाखिले ने इस सिलसिले में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजीर आला सुविंदु अधिकारी ने नामा निगारों को बताया कि तकरीबन 2,30,000 दरख्वास्त गुजारों में से अब तक 23,000 अफराद को अहल करार देकर शहरियत के सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी दरख्वास्तों पर भी तेजी से कार्रवाई की जाएगी और सर्टिफिकेट मुतालिका जिला मजिस्ट्रेट्स के जरिए दिए जाएंगे। वजीर आला ने मजहब की बुनियाद पर हरासा किए जाने के बाइस बांग्लादेश से फरार होकर आने वाले लोगों से अपील की है कि वो CAA के तहत शहरियत के लिए दरख्वास्त दें। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामले पर चीन के वजीर खारजा वांग ई के साथ खसूसी नुमाइंदों की बातचीत में शिरकत करेंगे। ये इस तरह की 25वीं दौर की बातचीत होगी। जनाब डोभाल चीन के 2 दिन के दौरे पर कल बीजिंग पहुंचे हैं। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने मीडिया ब्रीफिंग में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत का ऐलान करते हुए कहा कि जनाब डोभाल और जनाब वांग ई सरहद के मामले पर तफसीली बातचीत के साथ साथ दीगर 2 तरफा इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर भी तबादले ख्याल करेंगे। कौमी सलामती के मुशीर और भारत चीन सरहदी मामले से मुतालिक खसूसी नुमाइंदे अजीत डोभाल ने आज चीन के नायब सदर हांग जिंग से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बीजिंग में भारतीय सिफारतखाने ने बताया कि आज खसूसी नुमाइंदों के मुजाकरात के 25वें दौर से कबल फरीकैन ने सरहदी इलाकों में अमन सुकून को मजबूत बनाने के तरीकों के बारे में तबादले ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। के वजीर पीयूष गोयल ने आज जापान के सरकर्दा माली इदारों के एग्जीक्यूटिव के साथ तबादले ख्याल किया ताकि तवील मुद्दती सरमायाकारी को फरोग और भारत जापान इक्तसादी रिश्तों को मुस्तहकम किया जा सके। जनाब गोयल ने भारतीय मईशत की ताकत को उजागर किया और इस बात का जिक्र किया कि आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद गुज़श्ता वर्ष भारत में 7.7% तरक्की रिकॉर्ड की गई। मुआसलात के मरकजी वजीर ज्योति आदित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत के डिजिटल कनेक्टिविटी के सफर का तयन महज लोगों को जोड़ने से नहीं बल्कि ऐसे नेटवर्क को यकीनी बनाए जाने से होगा जो काबिल एतमाद, महफूज और मजबूत हो। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट के 43वें योम तासीस के मौके पर खिताब करते हुए जनाब सिंधिया ने मुल्क की टेलीकॉम सनत में

0: that continue to financially support it. The Treasury Secretary also announced sanctions targeting five sectors, including oil-related shipping, aviation, technology, gold, and digital assets. The Intermeteorological Department, IMD, has issued an orange alert for isolated heavy to heavy rainfall over eastern Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh during the day. Talking to Akashvani News, senior IMD scientist Akhil Srivastav said subdued rainfall activity will continue over the peninsula part of the country during the next 3 days. The active monsoon continues to affect Jharkhand. Due to a low pressure area formed over the Bay of Bengal, the state is likely to witness continued rainfall over the next 4 days.
1: According to IMD Ranchi, a low pressure area lies over and around West Bengal, northern Odisha and the northwestern Bay of Bengal. Under its influence, moderate to heavy rainfall, thunderstorms and lightning are likely across Jharkhand. The Meteorological Department has issued a yellow alert till August 27th, forecasting heavy rainfall in 10 districts along with heavy rainfall, thunderstorms and lightning, gusty winds with speeds of 30 to 40 kilometers per hour are also likely in these districts. The department has advised people to remain alert in view of the weather conditions. During the past 24 hours, rainfall was recorded in almost all parts of the state, with Kumaradungi in West Singhbhum receiving the highest rainfall of 97 millimeters. Mavish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
0: In men's cricket, hosts Sri Lanka were 171 for 6 against India on the third day of the second test in Colombo when reports last came in. Sri Lanka is trailing by 332 runs. For India, Manav Sudhar took India's fifth wicket, dismissing captain Dhananjay De Silva for 8 runs. India looking for quick wickets to bowl out the hosts and enforce a follow-on. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi terms UPI as major turning point in India's digital payments journey, earns global recognition with operations across 11 countries. Centre empowers West Bengal government to conduct hearings under CAA to issue citizenship certificates to eligible applicants. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representatives talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. United States proposes additional $1.03 lakh fee for all H-1B cap subject petitions. And in Test cricket, Sri Lanka trailed by 332 runs, losing 6 wickets in the first innings at Colombo. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स

0: इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित

0: करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन में वृद्धि करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
2: स्पिरिट ऑफ इंडियाज जर्नी।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
4: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
5: मैं FedEx और दिल्ली GMR Airport को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
4: We want to create global एयर कार्गो फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री।
0: एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस

0: विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,00,00,000 अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
1: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप ट्यून इन है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़। 2:31:04 और ये वक्त अब हो गया है संगीत.com का। इस सफर पर गीत संगीत और उनसे जुड़े कुछ किस्से या फिर गीत और संगीत की रचयिता, उनसे जुड़ी कुछ बातें या फिर कलाकारों से जुड़ी वो बातें जो उन गीतों को फिल्माते हुए हो गई, घट गई। कुल मिलाकर गीत संगीत का साथ तो होगा ही, साथ ही कुछ रोचक बातें भी आप तक पहुंचेंगी फिल्मों और गीतों से जुड़ी। सुनते रहें 100.1 आकाशवाणी गोल्ड। अंजलि है आपके साथ।
1: लागा गोरी गुजरिया से

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर।

0: की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: फिल्म गंगा जमुना से आपने ये गीत सुना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। गीतकार थे इस गीत के शकील बदायनू और संगीत की धुनों से इस गीत को सजाया था नौशाद साहब ने। और अभिनय जो इस गीत पर पैर थरका रहे थे, नृत्य कर रहे थे, वो थे दिग्गज दिलीप कुमार साहब। जैसे इस गीत में आपने पाया कि हिंदी भोजपुरी का संगम रहा और सुपर डी डुपर इस गीत पर दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार साहब का क्षेत्रीय नृत्य जो कि एकदम नेचुरल दिखा पर्दे पर। और सचमुच ऐसे गीतों को फिल्माना भी जितना कठिन होता है, उन गीतों पर उन तालों पर अपने पैर थरकाना उससे ज़्यादा कहीं कठिन होता है। और ये बहुत आसानी से कर दिखाया अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब ने। फिल्म संगीत में हमें अपनी संस्कृति के कई रंग देखने को मिलते हैं। इन गीतों में क्षेत्रीय उत्सव भी होते हैं, सावन के झूले भी, उड़ती पतंगे भी, गरजती घटाएं, विरहन की आग तो बागों की बहार भी। प्यार के नगमों के साथ साथ ऐसी धुने बजी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसमें खो जाते हैं। गीतों के संगीत में हारमोनियम भी बजा तो स्पेनिश गिटार भी, मुजरे का संगीत भी सुना गया तो देश प्रेम के तराने भी, और भारतीय जीवन में रचा बसा भक्ति संगीत भी। एक और गीत सुनिए और इसका संगीत जरा गौर से सुनिएगा।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: एनसीआर ईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: साठ का दशक वो दशक रहा जिसमें आई फिल्मों के गीतों ने गीत संगीत को एक नई परिभाषा में बांध दिया। सौ सौ साजिंदों के साथ तो शंकर जयकिशन ने बरसात के लिए अविस्मरणीय धुनें बनाई। हर जुबा पर रही ये गीत, हवा में उड़ता जाए या बरसात में हमसे मिले तुम या फिर आवारा हूं, विदेशों तक पहुंचे ये गीत।

इसके बाद का समय भारतीय फिल्म संगीत का स्वर्णिम दौर कहा जा सकता है। शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, मदन मोहन, खयाम, कल्याण जी, आनंद जी, सलील चौधरी, बसंत देसाई जैसे और भी कई दिग्गज संगीतकारों ने संगीत की नई नई धुनें पेश की। इन धुनों पर शानदार गीत लिखे गए और इसी दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन का जादू भी छाया। मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, शकील, हसरत जयपुरी, भरत व्यास जैसे गीतकारों ने बहुत ही लाजवाब नगमे लिखे। तो चलिए सुनिए तीसरी मंजिल फिल्म से गीत रफी और आशा भोसले की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत की धुनों से सजाया है आर डी बर्मन साहब ने।

कभी कभी एक छोटा सा शब्द या छोटा सा वाक्य गाने की जान बन जाता है और फिल्म में भी जान डाल देता है। जैसे खाने में मसाले, वहीं ऐसे शब्द जिनका जादू सिर चढ़ बोलता है गीतों में। मेरे सपनों की रानी 1969 की फिल्म आराधना के इस गीत ने इन शब्दों के सहारे युवाओं के दिल में प्रवेश कर लिया। यूथ आइकन बन गया ये गीत और इसके टाइटल वर्ड्स। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया एसडी बर्मन साहब ने और हर दिल आवाज किशोरदास साहब की। आइए सुन लेते हैं इस शानदार गीत को।

0: दिल के।
1: इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कुछ ही देर में सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और उसके बाद अपराजिता रहेंगी आपके साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूपीआई की अभूतपूर्व क्षमता और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी यात्रा केवल लोगों को जोड़ने से ही परिभाषित नहीं होगी, बल्कि विश्वसनीय, सुरक्षित और लचीले नेटवर्क सुनिश्चित करने से भी परिभाषित होगी। उन्होंने आज नई दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स सी.डॉट के 43वें स्थापना दिवस पर देश के दूरसंचार परिवर्तन में सी.डॉट की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन में वृद्धि करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
2: गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हांग चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त 1,03,265 अमरीकी डॉलर का

नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इनमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग को फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के पुस्तक प्रकाशन उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 में 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। विभाग की हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रकाशित पत्रिकाओं, पुस्तकों और संदर्भ प्रकाशनों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। नमस्कार, स्वागत करती हूं मैं अपराजिता आप सभी का गाते मन भावन प्रोग्राम में। गाते गुनगुनाते में हम आपसे मिलेंगे 5:10 पर। तो मन भावन प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और जैसा कि आप जानते ही हैं, देखिए कि कैसी ये जल्दी है कि हम आपसे जल्दी जल्दी और प्रोग्राम्स में भी मिलना चाहते हैं, कि जबान भी कहती है कि हम गाते गुनगुनाते रहें, और बिल्कुल गाते गुनगुनाते भी रहेंगे इस प्रोग्राम में भी, अगले प्रोग्राम में भी। तो आपको करना है क्या, आपको हमें ईमेल या मैसेज लिखकर भेजना है अपने रिक्वेस्ट किए हुए गाने का। तो मनभावन जो प्रोग्राम है, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो मैं आपको बताती हूँ, या फिर आप हमारे अभी नए लिसनर हैं, कि ये जो प्रोग्राम है इसमें हम आपके रिक्वेस्ट के गाने आप तक पहुँचाते हैं, जो आप हमें या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9868868753, 9868868753, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com। तो ये दो रास्ते हैं जिनसे आपके दिल की बात हम तक पहुंचेगी और हम आपके पसंद के गाने यहाँ सुनवाएंगे। पूरी कोशिश रहेगी हमारी अब से लेकर 4 बजे तक। तो पहला गाना मैं अपनी पसंद का सुनवाऊँ, आपकी पसंद का भी हो सकता है ये।

तो ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको हमसे और हमको आपसे बहुत प्यार है, तभी तो आ जाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और आप लोग भी आ चुके हैं, आपकी जो है प्रेजेंस लग चुकी है इस प्रोग्राम में। आप कितने सारे मैसेजेस हमें मिल रहे हैं व्हाट्सएप पर और ईमेल पर। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो ये प्रोग्राम आपका रिक्वेस्ट का यानी कि आपके पसंदीदा गाने का प्रोग्राम है, जिसे आप लिखकर भेज सकते हैं हमें दो तरीकों से। या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9868868753, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmgoldaiardelhi@gmail.com। तो बहुत सारी ईमेल्स हमारे पास आ गई हैं, व्हाट्सएप भी आए हैं, तो इस बार शुरुआत व्हाट्सएप मैसेजेस के साथ करते हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा प्रोग्राम को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और मोटा का माफी जिला खंडवा से हमें मैसेज मिलता है पटेल, जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। साथ ही मैसेज आता है हमारे पास, एक अननोन मैसेज है, यानी कि हाँ आदित्य आपका नाम है, ये ऐसा हमें कंप्यूटर बता रहा है। आपने हमें एक गाने की रिक्वेस्ट लिख भेजी, हम तुम्हारे हैं सनम, इस फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज हमारे पास जो पहुंचता है वो आया है नीलोफर फातिमा, मोहम्मद अल्ताफ, आफरीन कौसर, मोहम्मद अशफाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद इसहाक। छत्तीसगढ़ से आप हमें संदेश भेज रहे हैं, मुंगेली से, रोटी कपड़ा और मकान से, यानी कि इस फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज हमें मिला है सीआईडी फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, भिवानी से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और कृष्ण, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा आपके साथ हैं। अगला मैसेज जो मिलता है वो आया है खरगोन से, और मैसेज भेजने वाले हैं कौन ये भी हम बता देते हैं, आपके ढेर सारे मैसेजेस आते जा रहे हैं लगातार, मास्टर अशोक वर्मा, और अभी भी आप कुछ टाइप कर रहे हैं, अर्चना, अनुज, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुटाना, सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप का मैसेज मिलता है, आप सुनना चाहते हैं रॉकी फिल्म से एक गाना। अगला मैसेज जो आया हमारे पास उसे भेजा है भाई अहमद फूलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद, कापासेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी राबिया, आशु अहमद फूलवाले, आप सब प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और इसी के साथ अगला मैसेज रुचिका रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्र रामेकर का आता है अमरावती से, प्यार का मौसम फिल्म से आपने एक गाना सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। होली चौक उत्तम नगर से देखते हैं कौन है हमारे साथ, तो जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु हैं। अंजना, अनजाना फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। और अगला मैसेज जो है कस्बा गन्नौर से आता है फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फाहिरा ताहिरा का, और आप जीने की राह फिल्म से या फिर लोफर फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। आपने बहुत सारी जो है ऑप्शन दे दिए हैं हमें, बढ़िया है, ऐसा भी बढ़िया है, इस तरीके से भी मैसेज भेजे जा सकते हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से कारवा फिल्म से एक गाना सुनने की रिक्वेस्ट आती है धर्मेंद्र, कपिल, ईशान और पूजा परिहार की। और अगला मैसेज जो पहुंचता है हमारे पास वो ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां है हमारे साथ हरिद्वार से, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि जो हम पहला रिक्वेस्ट बेस्ड गाना जो आज अपने प्रोग्राम में सुनवाने वाले हैं वो किसकी पसंद है, तो शमशूल कमर राही और शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी ये संदेश भेजते हैं। नीला आकाश फिल्म से आप सुनना चाहते हैं ये गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तो भाई अब ऐसा करते हैं कि व्हाट्सएप के बाद अब जो है इस कट में आपके ईमेल शामिल कर लेते हैं। मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा हमें मैसेज भेजते हैं श्रीगंगानगर राजस्थान से। कर्तव्य फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, किशन वंजनी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और आपके साथ हैं नीलम, स्वाति, केशव रेलवे और केशव रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, फ्लो में ऐसा लगता है कि आपका नाम, कॉलोनी का नाम सब एक साथ, तो थोड़ा अगर आप या तो लाइन बदल लें यानी कि एंटर कर दें टाइप करते समय तो वो अगली लाइन में आ जाएगा, या फिर आप कॉमा फुल स्टॉप कुछ लगाएं, कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार पढ़ा जाता है ठीक से। तो स्वरूप आनंद सर्जल का भी मैसेज हमें मिलता है और आप अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, बगावत फिल्म से गाना सुनने की रिक्वेस्ट आपने लिख भेजी है रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में। मुझे लगता है कि रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में अभी हमने एक गाना सुनाया तो आपको जो है आनंद तो आया होगा, है ना। जगन्नाथ पटेल का भी मैसेज हमें मिलता है और आपके साथ कमला अंतिम ज्योति पटेल भी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है आपने हमें व्हाट्सएप भी किया है। बिट्टू भाटिया मैसेज भेजते हैं हमें झज्जर हरियाणा से, आपके साथ है रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, जंजीर फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। बोधराज खोरवाल का संदेश मिलता है हमें और आप फना फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं। उत्तम नगर से प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश आपके साथ हैं। और इसी के साथ जाकिर साहब भी हमें संदेश लिखकर भेजते हैं, मसूरी से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपके साथ हैं कमरून, निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। साथ ही मैसेज आता है अफरोज शेख का, आपके साथ हैं कौन ये जान लेते हैं, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, ये गाना आप सुनना चाहते हैं और आपके

साथ जो है मैसेज. अच्छा, आपका किसी और का नाम नहीं है तो हम ये मानते हैं कि आप अकेले ही इस गाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ये अलग बात है कि गाना सुनेंगे बहुत सारे लोग जो भी इस समय FM गोल्ड सुन रहे हैं, है ना. मोहम्मद इरशाद का भी हमें मैसेज मिलता है और आप लिखते हैं, आदाब आदरणीय बहन, मनभावन प्रोग्राम. कामचोर फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं. कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम जैनब आपके साथ हैं. अगला मैसेज धर्मेंद्र चिंपा का हमें मिलता है. कपिल चिपा, ईशा चिंपा और पूजा परिहार आपके साथ हैं और प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं ऐसा आप बताते हैं. ताज मोहम्मद का भी मैसेज हमें मिलता है. गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी हमारे साथ हैं. और अभी मैंने नाम लिया था वो मैसेज देखिए पढ़ते पढ़ते आगे जो है चला गया. रुपेश सांगई का भी मैसेज हमें आया है. पराया धन फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं. महेश सांगई प्रज्ञेश प्रीतेश के साथ और सांगई परिवार के जो सदस्य रह गए हैं वो भी इस गाने की रिक्वेस्ट करते हैं आपके जरिए. प्रकाश गोगिया प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और आपके साथ हैं भगवती सोलंकी, अनीता वर्मा, मनोहर लाल गांधी. प्रकाश गोगिया का नाम हम ले चुके हैं. और आज मौसम है सुहावना, फिल्म लोफर से आप एक गाना सुनवा दें ऐसा आप बताते हैं. और दिलावर खान का भी मैसेज हमें मिला है. रघुवीर नगर से आपके साथ है हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू. प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं आप. और अगला जो गाना है मैं ये बता दूं कि ये किसकी पसंद का है. तो इस गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है ईमेल के जरिए और ये ईमेल हमें किसने लिखकर भेजी है. सुरेंद्र कुमार का मैसेज हमें मिलता है और आपके साथ हैं माधुरी सिंह, आराध्या सिंह, अनंत कायरा और अंबेडकर कॉलोनी मोहाली से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं. कभी कभी फिल्म से ये प्यारा सा गाना आप सबके लिए और हमारे तमाम सुनने वालों के लिए.

ढेर सारे मैसेजेस आपके हमें मिल रहे हैं और अगला मैसेज हमें मिलता है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी गंजडुंडवारा से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। इस समय मैं व्हाट्सएप मैसेजेस शामिल कर रही हूं। अगला मैसेज हमें जो मिलता है वो आता है सुनील असवाल पौड़ी उत्तराखंड से और इसके बाद मोहम्मद सईद अबासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आपका परिवार प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। साजन बिहना सुहागन, इस फिल्म से आप जो है गाना सुनना चाहते हैं। और इसके बाद जो हमें नेक्स्ट मैसेज मिलता है वो ब्रह्म सिंह और सरोज जी का है। आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपने मेरा नाम लिखा है अपराजिता, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है अपराजिता, ठीक है। तो इसके बाद किसी ने कुछ और समझकर भी लिख भेजा है, जैसे सीमा दीदी, तो आज सीमा नहीं है आपके साथ, आज अपराजिता है आपके साथ, है ना। छत्तीसगढ़ पलारी से, हो सकता है आवाज़ें हमारी जो हैं सिमिलर साउंड कर रही हूँ। प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल, यशस्वी वर्मा भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, हमराज फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज हमें मिलता है, देखते हैं किसका मैसेज आया है हमारे पास। रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, चित्चोर फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं जिसकी रिक्वेस्ट आपने हमें लिख भेजी है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, आज से पहले, आज से ज़्यादा इतनी खुशी नहीं मिली, ये गाना आप सुनना चाहते हैं। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और आप हमें रिक्वेस्ट लिखकर भेजते हैं सुहाग फिल्म से गाना सुनने की। इसके बाद हमारे पास जो मैसेज आया है उसे लिख भेजा है, मुझे लग रहा है कि एक ही मैसेज दोबारा आ गया है। शगुन त्रिपाठी दिल्ली कैंट से प्रोग्राम सुन रही हैं।

और आप बताते हैं कि आपके पिता फौज में हैं और 3 साल से घर नहीं आए हैं, उनकी याद आती है, ऐसा आप लिखकर भेजते हैं। और भाई देखिए, जो हमारे घरों के लोग फौज में काम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया आपके पिता हैं, तो पहले तो उनके लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट, और क्योंकि वो घर से दूर रहते हैं, घर वाले इतने स्ट्रांग हो जाते हैं उनके, और वो तो खुद स्ट्रांग हैं ही, और वो बॉर्डर पर रहकर या तमाम पोस्टिंग्स पर रहकर जो है वो देश की रक्षा के लिए काम करते हैं। हम सब चैन से सो पाते हैं क्योंकि वो सब वहाँ जागते हैं और शिफ्ट्स में काम करते हैं, अलग-अलग माहौल में, मौसम में, सब तरीकों से जो है वो काबिल-ए-तारीफ काम है। अमिताभ बच्चन की फिल्म से आप गाना सुनना चाहते हैं, लावारिस मूवी से, और इसे रिक्वेस्ट किया है मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। इसके बाद मैसेज मिलता है गोविंदपुरा सीकर से, संगीता कवर दातर सिंह शेखावत, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, आओ प्यार करें, इस फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। और क्रांति फिल्म का गाना सुनने की रिक्वेस्ट हमारे पास लिख भेजी है किसी ने। और इसके बाद मैसेज हमें मिलता है बिट्टू भाटिया, रीटा रजत मयंक भाटिया का, और मैसेज आता है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, तमन्ना भाटिया का, जमशेदपुर से, बातों बातों में फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है वो सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने, अमरावती से हम रिक्वेस्ट लिखकर भेजते हैं, रिफ्यूजी फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। ये गाना बिल्कुल आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और इसी के साथ मैं कुछ नाम और शामिल कर देती हूँ। आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी गंजडुंडवारा से प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, और मैसेज हमें व्हाट्सएप पर लिख भेजा है चौटाला से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा ने, और आप सुनना चाहते हैं आंधी फिल्म से एक बहुत ही फेमस गाना इस मोड़ से जाते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आता है सरगम फिल्म से गाना सुनने के लिए, लखनऊ से, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम, इमराना नाज, राधा नामदेव का, और साहिल विश्वकर्मा, रामशरण विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा भी प्रोग्राम सुन रहे हैं।

जन की सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

स्वागत एक बार फिर आप सभी का मन भावन में। मैं हूं आपके साथ अपराजिता और मेरे पास है आपके ढेर सारे मैसेजेस, ईमेल्स। तो अब बारी है ईमेल की। अगली ईमेल जो हमारे पास आई है वो अनूप कौर की आई है और आप ब्लैकमेल फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं सरोज बंसल के साथ। गुरुग्राम से प्रोग्राम सुन रहे हैं आप और बहुत पुराने हमारे लिसनर हैं। बाबू शिवा का मैसेज हमें मिलता है। शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली आपके साथ हैं। आपने हमें चाई बासा झारखंड से मैसेज भेजा है। मल्होत्रा, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप हमें मैसेज भेजते हैं और चंडीगढ़ से। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज आपके साथ है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। उग्रसेन यादव हैं प्रोग्राम सुनने वालों में आपके साथ। शकुंतला यादव, गरिमा मैसेज हमें लिखकर भेजते हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। उत्तम कुमार भगत का भी मैसेज हमें मिलता है झारखंड से। डॉन फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद आपके साथ है। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत हैं आपके साथ। मोहसिन हाशमी का मैसेज हमें मिलता है और गंज डुंडवारा से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद कलीम के साथ। साई गायकवाड़ का मैसेज आया है और ये गाना जो अभी आपने सुना ये आपको पसंद है ऐसा आपने बताया। आपके साथ हैं ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और नारायण। आपने हमें मैसेज भेजा है और रेफ्यूजी फिल्म का ये जो गाना अभी हमने सुना इसकी तारीफ आपने लिख भेजी है। संदीप मक्कड़ प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। गौरैया जालंधर से आपके साथ हैं। ज्योति, मन्नत, भरत मक्कड़ और धर्मवीर भी हैं आपके साथ। अगली ईमेल हमारे पास दिनेश वर्मा की पहुंचती है रिंगिनी से और आपके साथ करुणा वर्मा भी हैं। उदित नारायण की आवाज में आप और प्यार हो गया फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। सतीश अनेजा का भी मैसेज हमें मिलता है और आपके साथ है बिमला अनेजा, आंधी फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। जॉन पर्ल विलिस और रोजी डिकोस्ट्रो जो हैं वो सहारनपुर जनकपुरी से मैसेज हमें लिखकर भेजते हैं और संगम फिल्म से एक गाना सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेज रहे हैं आप। नवी हसन अब्बासी का मैसेज मिलता है। शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ, किदवई नगर से आपके साथ है। जुबैर अली खान, सबीहा और अंजुमन खान भी। बहुत सारे ब्यूटीफुल कलरफुल इमोजीज आपने भेजे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला मैसेज जो आया है वो हमारे पास आया है कमलेश, मुकुल, सचिन, दीपांशु का और आप अनोखी अदा फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सी फिल्म से आपको गाना सुनवा रही हूं और किसकी पसंद का है। वादा न तोड़ ये गाना है और दिल तुझको दिया। इसे सुनने वालों ने जिसे हमें इस गाने की रिक्वेस्ट जिसने हमें लिख भेजी है वो है नरेश मल्होत्रा। जल्दबाजी करने से देखिए ये होता है। अब मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके नाम शामिल करूं लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है इसमें। नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद हैं इस गाने को सुनने वालों में और भी हैं। आपने इनका नाम भी लिखा है, पीयूष सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का। तो आप सबके साथ हमारे सभी लिसनर्स के लिए भी ये गाना है।

0: ये बात तो सच है कि किसी से किया गया वादा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हमने वादा किया आपसे कि आपकी पसंद के गाने चलाएंगे, बिल्कुल आप तक पहुंचाए, और भाई जितना इस इतने टाइम में कर सकते हैं उनको ज़रूर प्ले किया यहाँ पर। और जाने से पहले कुछ और नाम पढ़ना चाहूँगी जल्दी जल्दी ही सही। अशोक डाले, सुनील पाठक, नसीर शेख, अब्दुल गफ्फार, अनिल जैन, गोविंद वैष्णव, परमजीत कौर, बबलेश पवार, परमजीत कौर का एक और मैसेज, मोहम्मद फरमान और अब्दुल गफ्फार, सतीश अनेजा, इदरिस सैफी, सुधाकर जाधव, कमलकांत गुप्ता, चारू जटौलिया, ताज मोहम्मद, नवी हसन अब्बासी, मस्कीन दादा और संदीप मक्कड़, जॉन डिकोस्ट्रो, दिनेश वर्मा, रामकुमार रिवार, सुनील पाठक, बबलेश पवार, आप सब हमारा प्रोग्राम सुन रहे थे, इसे पसंद कर रहे थे। साई गायकवाड़, उत्तम कुमार भगत, बाबू शिवा, उग्रसेन यादव, मोहम्मद सादिक खत्री, सतीश अनेजा, मल्होत्रा साहब, सरिता, अभिजीत ग्वांकर और नासिर शेख, आप सब हमारे साथ रहे इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपसे कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेनदेन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी यात्रा केवल लोगों को जोड़ने से ही परिभाषित नहीं होगी, बल्कि विश्वसनीय, सुरक्षित और लचीले नेटवर्क सुनिश्चित करने से भी परिभाषित होगी। उन्होंने आज नई दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी.डॉट के 43वें स्थापना दिवस पर देश के दूरसंचार परिवर्तन में सी.डॉट की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त 1,03,265 अमरीकी डॉलर का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इनमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 8 विकेट पर 231 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 272 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 3 दिन के दौरान देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में भी हल्की बारिश जारी रहेगी। इधर राजधानी दिल्ली में आज कई स्थानों पर मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. National Security Advisor Ajit Doval held the 25th round of special representatives talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing today on the India-China boundary issue and improvement of relations between the two countries. Ahead of the talks, the National Security Advisor called on Chinese Vice President Yan Xiang. In a social media post, the Indian Embassy in Beijing said the two leaders discussed ways to strengthen peace and tranquility in the border areas and further improve bilateral ties across economic, political and multilateral fora in accordance with the consensus reached between the leaders of the two countries. Ahead of the Doval-Wang talks, External Affairs Minister S. Jaishankar had reiterated that peace and tranquility along the border areas are a prerequisite for good relations with China. The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments and has emerged as the backbone of India's digital payments ecosystem. UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi hailed the decade-long success of service of UPI. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. The Finance Ministry said the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore rupees to nearly 314 lakh crore rupees during the same time period. We have a report.
4: UPI has emerged as the backbone of India's digital payments ecosystem and a critical driver of financial inclusion. In just a decade, UPI has transformed the scale of digital payments in the country, making transactions faster, simpler and more accessible. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have also received global recognition. UPI is now operational across the 11 countries, including France, Singapore, UAE, Sri Lanka, Bhutan and Mauritius. Today, one out of every two real-time digital payment transactions globally happens in India. As of 2025, UPI accounts for nearly 49% of the world's real-time payment transaction volume. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
3: Defence Minister Rajnath Singh has approved the transfer of DRDO-developed technologies of all conventional missile systems to the Indian defence industry for production within the country. The initiative aims to enhance operational capability, reduce import dependence, and increase domestic value addition. The central government has empowered the West Bengal government to conduct hearings under the Citizenship Amendment Act or CAA and issue citizenship certificates to eligible applicants. Showing a Gazette notification issued by the Union Home Ministry, Chief Minister Shubhendu Adhikari told reporters at state headquarters yesterday that 23,000 people have so far been recognized as eligible and issued citizenship certificates out of around 2,30,000 applicants.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता और हमारे साथ है एक बहुत ही प्यारा सा गाना थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से।

जल्दी से एक नज़र आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों पर डाल सकते हैं जो आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर सुन सकते हैं। तो 5:10 पर मैं रहूंगी आपके साथ लेकर गाते गुनगुनाते, और 7:25 पर आप सुन सकेंगे प्रोग्राम साज ढले।

0: certificates and supporting documents at the time of the interview. For details, kindly look up the website at www.iari.res.in. Central Bureau of Investigation, CBI, invites applications from eligible officers of central, state governments or union territories for Deputy Advisor Engineering, Civil, pay level 10 as per the 7 CPC on deputation basis. Applicants should forward their applications with all required documents through proper channel to the Joint Director, Personnel, CBI 5B, 7th floor, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi, 11003. For detailed eligibility instructions and biodata performer, kindly visit the CBI website, that is at www.cbi.gov.in. I repeat, kindly visit www.cbi.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान वडोदरा में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के पद को भरा जाना है। अनुसूचित जाति के लिए 7, जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 और EWS वर्ग के लिए 4 पद उपलब्ध हैं। इच्छुक उम्मीदवार योग्यता, अनुभव, सामान्य विवरण, आवेदन पत्र और विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पता है www.iitvadodara.ac.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में आवश्यकता है इन पदों को भरने की। सहायक प्रशासन अधिकारी पदों की संख्या 2, निजी सचिव 5, सतर्कता प्रकोष्ठ सिविल हेतु सहायक अभियंता 1, प्रबंधक पर्यवेक्षक गैस अधिकारी 1, वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी 1 पद, परिवहन पर्यवेक्षक 1 पद, सहायक लेखा अधिकारी 2 पद, सहायक भंडार अधिकारी 3 पद, तकनीकी सहायक 16 पद, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 14 पद, व्यक्तिगत सहायक 7 पद, फार्मासिस्ट ग्रेड 1 11 पद, चिकित्सा अभिलेख अधिकारी 4 पद, स्वच्छता अधिकारी 3 पद, वरिष्ठ फार्मासिस्ट 3 पद, सहायक सुरक्षा अधिकारी 1 पद और धुलाई प्रबंधक 1 पद। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार देख सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल की वेबसाइट, जिसका पता है www.aimsbhopal.edu.in। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। वरिष्ठ नाविक सह रसोईया, कारपेंटर, मशीनिस्ट और वेल्डर, इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को श्री विजयपुरम बेस में नियुक्त किया जाएगा। योग्यता, वेतन, आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 22 अगस्त 2026 से 28 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। कंपनी सचिव सह मुख्य प्रबंधक कॉरपोरेट सेवाएं और वरिष्ठ सलाहकार विधि, विस्तृत पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा, नियम एवं शर्तें, आवेदन प्रक्रिया तथा अन्य विवरण के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.nmdfc.org। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली रोड लखनऊ आमंत्रित कर रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए आवेदन। विभाग और विशेषज्ञता इस प्रकार है: सामान्य बाल रोग, बाल फेफड़ा रोग, बाल न्यूरोलॉजी, बाल ऑन्कोलॉजी, बाल हृदय रोग, बाल गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, बाल शल्य चिकित्सा सुपर स्पेशलिटीज, बाल एवं नवजात एनेस्थीसिया, बाल क्रिटिकल केयर।

0: बाल आपात चिकित्सा और बाल रेडियो डायग्नोसिस। कुल मिलाकर 70 पद उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 22 अगस्त से 28 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र, जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यता, वेतन और अन्य आवश्यक नियमों और शर्तों की पूरी जानकारी मिलेगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में भरे जाने हैं ये पद, चिकित्सा अधीक्षक, रजिस्ट्रार, कार्यकारी अभियंता सिविल, कार्यकारी अभियंता इलेक्ट्रिकल, वरिष्ठ लेखाधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय अधीक्षक और उच्च श्रेणी लिपिक। आवेदन पत्र, पात्रता मानदंड, वांछनीय योग्यता, अनुभव और संबंधित विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.aimsgorakhpur.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार। शाम का ये सुहाना वक्त एक बार फिर लेकर आया है देश दुनिया की खबरों, रोचक जानकारियों और दिन भर की प्रमुख हलचलों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। हेलो सायरा।
4: हेलो वैष्णवी। नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड वैष्णवी, यू आर सेइंग शाम का सुहाना वक्त परिक्रमा तो लाया है, बट दिल्ली वालों ने बहुत अरसे बाद बारिश भी लाया।
3: जी बिल्कुल।
4: एंड यस, सम ब्यूटीफुल शावर्स दैट द नेशनल कैपिटल रिसीव्ड that were continuing from the afternoon into the first, you know, the first, you can say, part of the evening. And in this moment, we of course bring you a very, very fresh episode of Parikrama, because the name of the show is Parikrama, so we'll do the Parikrama of the country. We'll go to different parts and see what interesting stories our correspondents have from there. So without much ado, Vaishnavi, let's start with the headlines.
3: Ji, bilkul.
4: Prime Minister Narendra Modi terms UPI as major turning point in India's digital payments journey, earns global recognition with operations across 11 countries.
3: सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया।
4: National Security Advisor Ajit Doval to hold special representative's talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today.
3: अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया।
4: And now, of course, we always start our show with our special segment, Dateline India. And today, Vaishnavi, since UPI was launched on this day in 2016, that means पूरे 10 साल हो गए।
3: जी।
4: So we are going to discuss this topic in Dateline India.
3: श्रोता, महान क्रांतियां वही होती हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बदल देती है। जैसा सायरा कह ही रही थी कि यूपीआई की 10 साल की कहानी भी एक ऐसी ही क्रांति की कहानी है। एक समय था जब जेब में नोट रखने पड़ते थे, खुले पैसों की चिंता रहती थी और छोटे से छोटे भुगतान के लिए भी वॉलेट निकालना पड़ता था। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। हाथ में एक टच स्क्रीन मोबाइल हो और कुछ ही सेकंड में भुगतान पूरा। और यूपीआई की सबसे खूबसूरती यही है कि सिर्फ बड़े बड़े लेन देन में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों में भी दिखाई देती है। सारा जैसे हम हमेशा देखते आए हैं कि पहले बड़े बुजुर्ग हमारे जब घर में आते थे और कुछ ऐसे देते हुए जाते थे तो हमेशा एक वो रहता था कि अरे नहीं नहीं नहीं नहीं चाहिए, और या तो मम्मी ले लेती थी। आजकल बच्चों का वो रवैया बदल गया है। अब सीधा वो कहते हैं, अगर बुआ आई है और पैसा दे रही है तो सीधा कहते नहीं बुआ पैसे नहीं, कैश नहीं, यूपीआई करो, क्योंकि उनको पता है कि वो सीधा उनके अकाउंट में जाएगा और मम्मी पापा के वॉलेट्स में नहीं जाएगा।
4: दैट्स ट्रू। वरना हम लोग अब बड़े शराफत से हम लोग

0: अपने पेरेंट्स को दे देते थे. आजकल के बच्चे तो दे डोंट गिव थ्रू देयर पेरेंट्स एंड एज यू सेड दे जस्ट आस्क द पर्सन दैट यू नो दिस इज माय यूपीआई नंबर एंड वेल That's very true. That UPI, in fact, dekhiye na, even fruit sellers, sabzi wallas, everybody has a QR code on their cart. So that means even the smallest of transactions these days, people prefer making it, you know, via UPI through digital means because obviously it saves a lot of hassle. Ab dekhiye, aajkal barish ka mahine chal rahe hain. To barish ke dinon mein kitna bura lagta tha jab note bheeg jaate the. Ab koi tension hi nahi hai because obviously everything is on your phone and with just the one click. You make a transaction.
1: बिल्कुल. और श्रोताओं, इसी के साथ 10 साल में यूपीआई ने सिर्फ भुगतान करने का तरीका नहीं बदला है, इसने पैसे को लेकर हमारी रोजमर्रा की सोच और आदतें भी बदल दी हैं. आज भुगतान सिर्फ एक लेन देन नहीं है बल्कि हमारी डिजिटल जिंदगी का सहज हिस्सा बन चुका है.
0: That's so right, Vaishnavi. Although foodies like me, who need to control on their cravings, उनके लिए UPI है तो बहुत अच्छी चीज़. लेकिन कई बार आधी रात में भी ना पहले ये होता था कि like यार कैसे cash नहीं है, ATM नहीं है, जाना पड़ेगा. वो अब तो बस everything is there at the click, whether it's the stroke of the midnight hour. So things have become so easy with UPI, isn't it? And as Arthur C. Clarke famously said that. Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. And perhaps UPI's biggest achievement is that it has made this magic an ordinary part of everyday Indian life.
1: तो सारा हमने ये तो यूपीआई के बारे में बात कर ली. अब यूपीआई एक्चुअली है क्या वो श्रोताओं को बताते हैं. यूपीआई कोई ऐप नहीं है, ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो अलग अलग बैंकों और पेमेंट ऐप्स को एक ही नेटवर्क से जोड़ता है. फोन पे, गूगल पे या भीम जैसे ऐप इसी यूपीआई नेटवर्क के जरिए आपके बैंक खाते से किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में तुरंत पैसे भेजते हैं. और यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी आसानी और आपसे जुड़ाव, यानी आप किसी भी यूपीआई ऐप से किसी भी दूसरे यूपीआई ऐप इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को आसानी से भुगतान कर सकते हैं. इसने बैंकों, पेमेंट ऐप्स और क्यूआर कोड साथ ही करोड़ों लोगों को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ दिया है. यही वजह है कि आज दूसरे देश भी अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूपीआई से जोड़ने में रुचि दिखा रहे हैं. सारा हम कह सकते हैं कि भारत ने सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं बनाया है बल्कि ऐसा डिजिटल ढांचा तैयार किया है जिसने तेज, आसान और आपस में जुड़े डिजिटल भुगतान को बड़े पैमाने पर संभव बनाया है.
2: ये जो मैं डिजिटल पेमेंट की बात करता हूँ वो कैसा रिवॉल्यूशन लाएगा. और जब ये भीम सामान्य नहीं है, आपके परिवार की वो आर्थिक महासत्ता बनने वाला है. अगर आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, कम से कम 5 लेन देन तो करिए. हर हिंदुस्तानी एक बार 5 लेन देन करना देखे तो फिर उसको आदत हो जाएगी और देश डिजिटल मूवमेंट को लीड कर जाएगा.
3: भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम. ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है.
0: Well, that's indeed very enlightening. And let's just ask a question that how did we actually go from a new digital payment idea to a system processing more than 24,162 crore transactions annually? We need to rewind. Well, UPI began its journey in April 2016 when it was launched on a pilot basis with 21 member banks. By August, it was open to the public as banks began making their UPI-enabled apps available.
1: और फिर दिसंबर 2016 में आया भीम ऐप. इसने डिजिटल भुगतान को और आसान बना दिया. अब लोग अपने मोबाइल फोन से सीधे एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेज सकते हैं. इसके बाद 2017 में आया डायनेमिक क्यूआर. इसमें भुगतान की रकम और पाने वाले की जानकारी पहले से ही शामिल रहती है. इससे दुकानदारों और ग्राहकों के लिए भुगतान करना और भी आसान और तेज हो गया है.
0: That's very right, Vaishnavi. And then in 2018, UPI 2.0 brought a whole new set of features. Invoice viewing, UPI mandates, signed QR and intent-based payments along with overdraft account linking.
1: और सारा UPI अब सिर्फ रोजमर्रा की खरीदारी तक सीमित नहीं रहा है. साल 2019 में सेबी ने रिटेल निवेशकों को

0: आईपीओ के लिए आवेदन करने समय यूपीआई के जरिए भुगतान करने की अनुमति दी थी। इससे शेयर बाजार में निवेश करना और भी आसान हुआ और यूपीआई का इस्तेमाल रोजमर्रा के भुगतान से आगे बढ़कर निवेश जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच गया।
1: That same year, UPI crossed a landmark milestone. 1 billion transactions in a single month. Yes, 1 billion. That number was more than a mere statistic. It was a signal that India had embraced a completely new way of transacting.
0: इसके बाद 2020-22 के दौरान UPI में लगातार सुधार होते रहे। UPI ऑटो पे ने सब्सक्रिप्शन और इंश्योरेंस प्रीमियम से लेकर SIP और EMI तक बार बार होने वाले पेमेंट को आसान बना दिया। UPI लाइट के साथ छोटे भुगतान और भी तेज और आसान हो गए। कम राशि के ट्रांजैक्शन के लिए हर बार UPI पिन डालने की जरूरत नहीं रही। इसके बाद क्रेडिट कार्ड को भी UPI से जोड़ा गया, जिससे भुगतान के विकल्प और बढ़ गए।
1: By March 2022, UPI had crossed 5 billion monthly transactions, while during fiscal year 2021-22, it processed transactions worth more than $1 trillion.
0: और भारत की डिजिटल पेमेंट की कहानी देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंचने लगी। भूटान में यूपीआई का पहला अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल हुआ और इसके साथ यूपीआई ने वैश्विक सफर की शुरुआत की।
1: That's right. In 2023, credit line on UPI allowed pre-sanctioned bank credit lines to be linked as a funding source. By fiscal year 2023-24, UPI accounted for around 70% of India's digital payment transactions.
0: सिर्फ इतना नहीं था सायरा, इसके बाद 2024 में एक और दिलचस्प सुविधा आई थी, UPI सर्कल। इसके जरिए प्राइमरी यूजर तय लिमिट के साथ किसी दूसरे यूजर को अपने अकाउंट से भुगतान करने की अनुमति दे सकता है। मसलन माता पिता अपने परिवार के किसी सदस्य को एक तय सीमा के तक अपने खाते से भुगतान करने की सुविधा दे सकते हैं।
1: That same year in 2024, RBI raised the UPI transaction limit for tax payments from 1 lakh rupees to 5 lakh rupees per transaction, with higher limits also introduced for selected categories such as capital markets, IPO subscriptions, insurance, healthcare and education. And UPI 123 Pay and UPI Lite also received higher transaction limits.
0: पिछले साल ही यूपीआई ने ऑन डिवाइस ऑथेंटिकेशन के साथ एक और कदम आगे बढ़ाया। अब स्मार्टफोन की फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक से भी पेमेंट करना संभव हुआ। वहीं आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन ने यूपीआई पिन सेट करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया, खासकर पहली बार यूपीआई इस्तेमाल करने वालों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए।
1: But here's the bigger story, Vaishnavi. How much has this tiny looking QR code actually changed the scale of India's economy? The answer is staggering. From financial year 2016-17 to financial year 2025-26, annual UPI transactions rose from around 2 crore to more than 24,162 crore, an increase of roughly 12,000 times.
0: यूपीआई का सफर कितना तेज रहा है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। सालाना ट्रांजैक्शन वैल्यू सिर्फ 0.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 314 लाख करोड़ रुपए हो गई, यानी 4000 गुना से भी ज्यादा। और सिर्फ इस साल जुलाई में ही यूपीआई से 741 बैंक जुड़े थे। इस दौरान 2365.8 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू 29.87 लाख करोड़ रुपए रही।
1: Well, that's not merely growth, that is a transformation in the way an entire country moves money. And India didn't stop at its borders. What began as an Indian innovation has now become a global digital payment story. As of 2024, UPI accounted for around 49% of global real-time payment transaction volume, a milestone highlighted by the International Monetary Fund in its last year's report on digital payments.
0: सारा यूपीआई की वैश्विक पहुंच भी कई देशों तक आगे बढ़ी ही है। भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस और कतर समेत कई देशों ने यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। यानी यूपीआई अब सिर्फ भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बना रहा एक वैश्विक भुगतान नेटवर्क है।
1: बिल्कुल सही कहा वैष्णवी, और ये मुस्तकिल बढ़ रहा है। द मैप कंटिन्यूज टू ग्रो। इन जून दिस ईयर यूपीआई एक्सेप्टेंस वॉज लॉन्च इन कैम्बोडिया थ्रू अ पार्टनरशिप बिटवीन एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एंड अक्लेडा बैंक।
0: उसी महीने ग्रीस में सीमा पार पैसे भेजने के लिए यूपीआई की शुरुआत हुई। इसके जरिए पात्र ग्राहक यूरो बैंक के माध्यम से ग्रीस और भारत के बीच आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: And on 30th July this year, cross-border remittances between the Maldives instant payment system Fawara and India's UPI went live. With Greece and Maldives joining the journey, UPI is now live in 11 foreign countries for acceptance and or cross-border remittances.

0: को यूज करते हुए यूपीआई को, जैसे कोई पैसे मांगता है खुले पैसे है इस तरह की बात नहीं होती है। बंदे अपना पेटीएम कर देते हैं, चेंज की कोई दिक्कत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है बंदे के पास अगर वॉलेट में पैसे होना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने आप यूपीआई मोबाइल से कर देते हैं, ये बेनिफिट मिला है।
1: अनदर रेजिडेंट फ्रॉम बिहार सानू भारती सेड दैट यूपीआई इम्प्लीमेंटेड इन 2016 हैज मेड पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस इजी फॉर इंडिविजुअल्स।
2: मेरा नाम सानू भारती है, मैं कटिहार बिहार से बिलोंग करता हूँ। एनपीसीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसके मदद से एक आम व्यक्ति हो या फिर सब्जी वाले ठेला वाले उनके द्वारा भी जो है पेमेंट आसानी से लिया या दिया जा सकता है।
1: टुडे वन आउट ऑफ एवरी टू रियल टाइम डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस ग्लोबली हैपेंस इन इंडिया। एज ऑफ 2025 यूपीआई अकाउंट्स फॉर नियरली 49% ऑफ द वर्ल्ड्स रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। विद दीपेंद्र एंड आनंद, दिशु जायसवाल फॉर परिक्रमा।
3: तो सायरा, इससे हमें पता तो चलता है कि यूपीआई काफी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे ढल चुका है। इस कहानी में बहुत ही कुछ भारतीय है। अत्याधुनिक तकनीक से बने इस सिस्टम का इस्तेमाल हम रोजमर्रा के बेहद छोटे छोटे कामों के लिए करते हैं। शायद यही वजह है कि यूपीआई हमें सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा लगता है।
4: That's right. In fact, a very funny incident happened with me. ज्यादातर हिंदुस्तान में जैसे रेड लाइट्स पे लोग आते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं, तो हम लोग का एक तकिया कलाम ऊपर होता है, भैया छुट्टे नहीं है। सो वंस आई सेड दैट एंड ही जस्ट शोड मी अ क्यूआर कोड एंड आई वाज लाइक ओह यू नो क्यूआर कोड इन यूपीआई, इमेजिन एवरीबॉडी इज नाउ टेकिंग इंटरेस्ट, इवन दोज पीपल जिनको हम लोग बार बार कहते थे छुट्टे नहीं है। एंड वेल एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वंस सेड दैट ड्रीम ड्रीम ड्रीम ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स result in action. 10 years ago, UPI was a bold idea, a simple, secure and interoperable payment system built for every Indian. Today, it's part of everyday life.

0: पत्ते में बैठ के खाना
1: उसका
0: अलग
1: अलग ही
0: ही
1: मजा
0: मस्त
1: होता
0: है।
1: है ना, वेरी
0: बिल्कुल
1: इलैबोरेट मील। सो आई एम श्योर ही इज विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी ओणम।
0: और आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश की ओर रुख करते हैं। राज्य के नाहरलागुन जिले के जी सेक्टर स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका तामी याकू का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए किया गया है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: Headmistress Tami has been selected for the prestigious National Teachers Award 2026 for her 42 years of dedicated service in education, school development, and promoting the Nishi language. Ms. Yaku is also a recipient of the Chief Minister's Excellence Award and District Teachers Award. Congratulating Tami Yaku, the Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu expressed delight that the state has once again produced a National Teachers Award recipient this year. President Draupadi Murmu will confer the National Teachers Award 2026 on 5th September 2026 on Teachers Day at Vigyan Bhavan, New Delhi. This year, 48 outstanding school educators, 26 male and 22 females, have been selected for the honor. For Parikrama, Kenyum Ango, Akashwani, Itanagar.
1: And we remain in the northeast, in Agartala now. Revered as the architect of modern Tripura, Maharaja Bir Bikram Kishore Manike Bahadur played a transformative role in shaping Tripura's future. We have a report.
3: Born on August 19, 1908, Maharaja Bir Bikram ascended the throne at a young age. Despite his short reign, he introduced several visionary reforms that laid the foundation for Tripura's modern development. Pradyot Kishore Deburman, a member of the royal family of Tripura, said,
4: "वो सिर्फ महाराजा नहीं थे, सिर्फ जनजाति के लिए या बंगालीज के लिए या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस के लिए वो एक देश प्रेमी थे. आज हम लोग हिंदुस्तान में है क्योंकि कंचन प्रभा देवी जानते थे कि महाराजा का सपना है कि हम एक हिंदुस्तान में रहे, ना कि पाकिस्तान में. महाराजा तो जिंदा नहीं रहे, लेकिन उनका एक डिसीजन आज हमें हिंदुस्तानी बोलने का अवसर देता है.
3: Under his leadership, Maharaja Bir Bikram College was established, which remains one of the state's premier institutions of higher education. He also promoted the expansion of schools and encouraged modern education across Tripura. Maharaja Bir Bikram introduced administrative reform, promoted planned urban development, improved road connectivity, and strengthened public infrastructure. Even before India's independence, Maharaja Bir Bikram envisioned a modern and progressive Tripura as forward-looking policies and development oriented approach were well ahead of their time. His vision continues to inspire generations, securing his place in history as the architect of modern Tripura. For Parikrama, Shuman Bhattacharji, Akashbani, Agartala.
0: अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की ताजा हलचल। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 8 विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी। भारत श्रीलंका में 1-0 से आगे है।
1: And if we talk about some business news, well, benchmark domestic equity indices entered in positive zone today. The Sensex surged 287 points or 0.37% to close at 77,656. Nifty advanced 115 points or 0.48% to settle at 24,334. For more updates about market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
0: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
5: प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणपति अग्रहारम अन्नादुरई अय्यर नटेसन की जयंती है। उनका जन्म 1873 में तंजावुर में हुआ था। वर्ष 1900 में उन्होंने अंग्रेजी में मासिक प्रकाशन द इंडियन रिव्यू शुरू किया। इसमें ज्यादातर राष्ट्रवादी विषयों को शामिल किया गया था। 1915 में भारत आने के बाद जब महात्मा गांधी पहली बार मद्रास गए तो वे लगभग एक महीने तक नटेसन के घर पर ही रहे। जी.ए. नटेसन एक अद्वितीय लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने 1897 में स्वयं की प्रकाशन कंपनी की स्थापना की। वे बापू के भाषणों और लेखन सहित गांधीवादी साहित्य के प्रसिद्ध प्रकाशक थे।
6: 1943 में आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी INA यानी आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर बने थे। INA का गठन

0: भारत की स्वतंत्रता के लिए सितंबर 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा सशस्त्र युद्ध के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन जल्द ही इसे भंग कर दिया गया। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने आगमन के बाद इसे पुनर्जीवित किया। 1943 के प्रारंभ में बोस ने ये महसूस किया कि दक्षिण पूर्व एशिया अंग्रेजों से लड़ने और उपनिवेशवाद विरोधी सेना की स्थापना के लिए उपयुक्त था, जहां बड़ी संख्या में भारतीय विदेश में रह रहे थे।
1: मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ और खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें।
0: जनवरी 1943 में जापानियों ने बोस को पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया।
2: सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे, जिनका ये मानना था कि भारत को मुक्त कराने का एकमात्र तरीका सशस्त्र संघर्ष है।
3: आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ अस हू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कमिंग बैटल विल सर्वाइव टू सी इंडिया फ्री, बट वेदर वी सर्वाइव और नॉट, वेदर वी इंडिविजुअली लिव टू सी इंडिया फ्री और नॉट, वी आर कॉन्फिडेंट दैट इंडिया शैल बी फ्री।
0: नेताजी के नेतृत्व में आईएनए ने दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों में से पूर्व कैदियों और हजारों नागरिक स्वयं सेवकों को आकर्षित किया। आईएनए का सशस्त्र प्रतिरोध और उनका बलिदान हमेशा के लिए जनमानस की स्मृति में अंकित है।
4: आज हरिभाव उपाध्याय की पुण्यतिथि है। हरिभाव जी साहित्यकार होने के साथ साथ प्रतिबद्ध राष्ट्रसेवी और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने त्यागभूमि और हिंदी नवजीवन जैसी पत्रिकाओं का सफल संपादन किया। स्वतंत्रता की ओर बापू के आश्रम में साधना के पथ पर दुर्वादल और सर्वोदय की बुनियाद उनकी प्रमुख रचनाओं में शुमार है। और आगे बढ़ते हैं, पंडित रघुनाथ पाणिग्रही की भी आज पुण्यतिथि है। रघुनाथ जी ओडिसी संगीत की परंपरा से जुड़े परिवार से थे। वे जयदेव रचित गीत गोविंद के सबसे बड़े प्रस्तोता माने जाते हैं, जिसके चलते उन्हें गीत गोविंद पाणिग्रही के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें सुरमणि की उपाधि मिली, बाद में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1993 में राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साथ ही 2010 में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। आइए अब आपको सुनाते हैं उनकी एक मधुर रचना।

And today is also the birthday of Vijayta Pandit. We all know that she created waves from her first film Love Story. And apart from that, उनकी बाद की फिल्में इतनी नहीं चली, लेकिन कई बार आपकी एक ही फिल्म या एक ही किताब आपको इतना फेमस कर देती है.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुणा वृद्धि हुई है।
1: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी यात्रा केवल लोगों को जोड़ने से परिभाषित नहीं होगी, बल्कि विश्वसनीय, सुरक्षित और लचीले नेटवर्क सुनिश्चित करने से भी परिभाषित होगी। उन्होंने आज नई दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट के 43वें स्थापना दिवस पर देश के दूरसंचार परिवर्तन में सी डॉट की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश के में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ-05, NJ-50 और NJ-100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। इनका इस्तेमाल सामरिक मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन इंटरसेप्टर और छोटे मिसाइल सिस्टम में किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने बताया कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि

नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का गाते गुनगुनाते में, जिसे आप सुन रहे हैं अपराजिता के साथ आपके अपने एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गाते गुनगुनाते में लेकर आती हूं आपके लिए कुछ सवाल, जिनके जवाब आप हमें लिखकर भेजते हैं। और सही जवाब सबसे जल्दी देने वालों का पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर तो नाम लिया ही जाता है, उसके बाद भी आपके नाम शामिल किए जाते हैं। तो इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, हमारा गाना शुरू हो गया है, ये गाना सुन लेते हैं और इसके बाद हम बातचीत अपनी जारी रखते हैं। यानी कि मैं पूछूंगी आपसे सवाल, आप लिखकर भेजेंगे उसके जवाब। वैसे ये गाना तो पहचान लिया होगा आपने, जो जीता वही सिकंदर। जी हाँ, वही है फिल्म।

तो भाई पहले सवाल का इंतजार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा होगा। 90 के दशक की यानी कि 90s की ये एक ऐसी सुपरहिट फिल्म है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 5 फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 6 स्क्रीन अवार्ड अपने नाम किए। राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म को सूरज बड़जात्या ने लिखा और डायरेक्ट भी किया। रिलीज के समय ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। अगर फिल्म के गीतों की बात करें तो इस मल्टी स्टारर फिल्म के सभी गीत एक से बढ़कर एक थे। अब आप कहेंगे कि अपराजिता तो ये कहानी सुना रही है। भाई देखिए, हर लाइन में या कहानी के हर भाग में जो है हिंट छिपा है। हमने क्या कहा? मल्टी स्टारर फिल्म। तो ये बातें आपको जहन में रखनी है और तभी अपने आंसर तक पहुंचना है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये क्लूज हैं, आपको ये आपके सही जवाब तक पहुंचाएंगे। लता मंगेशकर जी को इस फिल्म में एक गीत गाने के लिए फिल्म फेयर में विशेष पुरस्कार भी दिया गया। अब वो गाना कौन सा है, अब वो बता दिया तो भाई राजी फाश हो जाएगा। साथ ही संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। बहुत सारे हिंट्स मैं दे चुकी हूं और आप फिल्म के नाम तक पहुंच ही गए होंगे ऐसा मैं मानती हूं। तो जल्दी से टाइप कीजिए अपना आंसर यानी कि फिल्म का नाम और इसे भेज दीजिए fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। जी हाँ, यही है वो आईडी, ईमेल आईडी जो आपके जवाब हम तक बहुत जल्द पहुंचाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप पहले, दूसरे, तीसरे लिसनर के नंबर में आए सही जवाब देने वालों में, तो मैं ये नुस्खा कई बार बताती हूँ, आज फिर बता रही हूँ कि आप जब हमें ईमेल टाइप करते हैं तो आप सब्जेक्ट जो होता है ईमेल का उसी में फिल्म का नाम लिख दें। बॉडी ऑफ द कॉपी यानी कि जो ईमेल में जहाँ आप पूरा टेक्स्ट लिखते हैं वहाँ ना लिखकर सब्जेक्ट में लिख दें, तो जल्दी से आपका आंसर हम तक पहुँच जाएगा। आपको ज़्यादा ऊपर नीचे अलग अलग चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो fmgoldaiadelhi@gmail.com पर भेज दें। तब तक सुनते हैं ये गाना।

जी, तो फिल्म का नाम हम तक पहुंच चुका है। आप में से बहुत से हमारे लिसनर्स ने सही जवाब लिखा है, तो पहला सही जवाब देने वाली हैं मुक्ता बरगोटा, और दूसरे नंबर पर आते हैं नवीन भाटिया मोतीनगर दिल्ली से, और तीसरे नंबर पर है नागेंद्र ठक्कर। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई, आपने सबसे पहले हमें जवाब लिखकर भेजा, इसके बाद भी सही जवाब आए हैं। तो पवन के कसेरा ने हमें बिल्कुल सही बताया है। प्रणव शिंदे हैं हमारे साथ मुंबई से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, रजान, आपने भी बिल्कुल सही पहचाना है, और प्रफुल्ल महोद का भी बिल्कुल सही जवाब हमें मिलता है। निरंजन भालेराव हैं, आपने बिल्कुल सही बताया। इदरिस सैफी, डी बी राणा साहब हैं नेहरू विहार दिल्ली से। इसके बाद कुछ जवाब आए जो सही नहीं है, जैसे किसी ने साथ साथ लिखा, किसी ने कभी खुशी कभी गम, और हम साथ साथ हैं ऐसा भी लिखा कुछ लोगों ने, लेकिन फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। बिल्कुल, और इस फिल्म में अब आपको याद आ गया होगा, अगर जिसने सही जवाब नहीं लिखा है, कि ये सब जो क्लूज हैं ये हमें यहीं इसी फिल्म के नाम तक पहुंचाते हैं। माधुरी दीक्षित इसमें जो हैं निशा चौधरी के किरदार में नजर आई, सलमान खान ने प्रेम का किरदार निभाया, और आप लोग अगर वाकिफ हैं इस बात से तो सलमान ने बहुत सी फिल्मों में जो रोल प्ले किया वो प्रेम का किरदार प्ले किया है। मोनीश बहल रहे उनके बड़े भाई के रोल में, रेणुका शाहणे जो हैं वो इनके बड़े भाई की पत्नी यानी कि इनकी भाभी के किरदार पूजा चौधरी के किरदार में नजर आई, और साथ ही बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जिन्होंने, या मैं ये कहना सही समझूंगी कि हर किसी ने इस फिल्म को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां ये पहुंच पाई, यानी कि इतनी फेवरेट बन पाई, ब्लॉकबस्टर बनी और तमाम अवार्ड्स इसने जीते। और आज भी अगर ये फिल्म टीवी पर आ रही हो तो घरों में लोग इस फिल्म को देखना ज़रूर पसंद करेंगे। हिमानी शिवपुरी रही इसमें, और अनुपम खेर, आलोक नाथ, रीमा लागू, ये सब लोग बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करते हैं, और मल्टी स्टारर फिल्म में इनसे शोभा बढ़ती है। इस फिल्म की बात हुई, इस फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे, लेकिन अगला सवाल आपसे पूछूंगी मैं। तो अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो गाते गुनगुनाते में मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूं जिसमें आपको जिन क्लूज के सहारे, जिन हिंट्स के सहारे आपको फिल्म का नाम पहचानना होता है, उसे लिख भेजना होता है हमारे ईमेल आईडी पर। तो ईमेल आईडी बताऊंगी सवाल पूछने के बाद। 1991 में लॉरेंस डिसूजा द्वारा निर्देशित एक फिल्म आई, यानी कि इन्होंने डायरेक्ट किया इस फिल्म को, जिसमें नदीम श्रवण का म्यूजिक रहा और गीतों के बोल लिखे समीर साहब ने। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत प्यार दिया। ये दो भाइयों की कहानी है जिन्हें एक ही लड़की से प्यार हो जाता है। उनमें से एक भाई जो है वो शायर है, बहुत अच्छी शायरी करता है, लेकिन अपने नाम से नहीं लिखता, किसी और के नाम से लिखता है, यानी कि जो है पेन नेम उनका अलग है। जो हीरोइन है वो शायर साहब की शायरी और कविताओं से मंत्रमुग्ध हैं, उन्हें पसंद करती हैं और उनकी बहुत बड़ी फैन भी हैं। अगर आप पहचान चुके हैं ये कौन सी फिल्म है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरी कहानी आपको सुना दूं, है ना? तो फिर तो फिल्म का नाम गेस करने का कोई मायने नहीं रह जाते हैं। तो आपको फिल्म का नाम पहचान कर लिख भेजना है fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। तब तक मैं आपको सुनवा रही हूं हम आपके हैं कौन से, एक बहुत ही प्यारा गाना। भेजेंगे ना जवाब, जल्दी से जल्दी भेजिए सब्जेक्ट कॉलम में लिखकर, ताकि मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपका नाम शामिल कर सकूं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: स्वागत एक बार फिर आप सभी का गाते गुनगुनाते में, और सुनवा रही हूं आपको शोला और शबनम फिल्म से ये बहुत ही खूबसूरत गाना।

इस बार। तो पहला सही जवाब हमें जो लिखकर भेजा है वो लिखकर भेजा है नवीन भाटिया साहब ने मोतीनगर दिल्ली से। नागेंद्र ठक्कर दूसरे नंबर पर आते हैं और मुक्ता बरगोटा तीसरे नंबर पर आती हैं इस बार। पिछली बार इन्होंने पहले नंबर पर सही जवाब दिया था। तो भारती ने भी सही जवाब दिया है। इसके बाद पंकज कुमार, प्रफुल्ल मोहद, राजेश मानक लाल शाह, निरंजन भालेराव, इद्रिस सैफी, अनिल सरोड़ और मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजानाबान, शिवाजी एम का भी सही जवाब आया। जगदीश बजाज विकासपुरी से सही बताते हैं। पवन के कसेरा हैं, बबलेश पवार हैं हमारे साथ गांधी चौक बाड़मेर से, प्रणव शिंडे, मिलिंद खड़के, मोहम्मद सईद अब्बासी की एक और ईमेल आ गई है, विरमगाम गुजरात से अजीत भावसर, प्रबिला भावसर, डीबी राणा नेहरू विहार से बताते हैं, मोहम्मद इम्तियाज है हमारे साथ, देवेंद्र लोडिया हैं और प्रकाश गोगिया, मनोहर लाल गांधी ने भी बिल्कुल सही बताया है, दिल्ली से लावान्या गुप्ता, और साथ ही जैविन जैन ने राजकोट से सही सही जवाब लिखकर भेजा है। फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फारिया ताहिरा ने भी बिल्कुल सही बताया और सही जवाब देते हैं रंजीत कुमार। तो साजन जो फिल्म है, ये फिल्म का नाम है, इसमें एक्टिंग की संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान। तो भाई माधुरी दीक्षित और सलमान खान जो है वो इससे पहली वाली फिल्म जो हमने ली थी हम आपके हैं कौन इसमें भी थे। अगर ये हिंट भी दिया होता, मैं सोच रही हूँ कि काश मैंने ये भी बता दिया होता, लेकिन उससे पहले ही आपने पहचान लिया है। देखिए आप कितने मतलब स्मार्ट है ना, बस बताते के साथ ही पहचान लेते हैं। तो मैं अगला सवाल आपसे जरूर पूछ लेती हूँ। 90 के दशक में जेपी दत्ता द्वारा निर्मित और निर्देशित एक ऐसी फिल्म आई जिसमें एक से बढ़कर एक अभिनेता ने काम किया। फिल्म के ज्यादातर शूटिंग जो है वो बीकानेर राजस्थान में हुई और कुछ सीन्स जो हैं इसके जोधपुर में भी शूट किए गए। इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते जिनमें 4 फिल्म फेयर अवार्ड और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं। ऐसी वैसी फिल्म नहीं लाते हम आपके लिए, ढूंढ कर एकदम तराश कर ऐसे नाम लाते हैं फिल्मों के जो आपने जरूर देखी होगी या फिर जिसके बारे में जिक्र करते ही आपको याद आ जाएगी वो फिल्म। फिल्म के सभी जो गाने हैं वो जावेद अख्तर ने लिखे और संगीत बनाया अनु मलिक ने। अगर आप पहचान गए हैं फिल्म, अब ये कहना तो गलत है क्योंकि आप पहचान ही जाते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। आपने फिल्म पहचान ली है, इसे जल्दी से टाइप करें, भेज दें fmgoal@delhi.gmail.com पर। तब तक मैं आपको साजन फिल्म से सुनवा रही हूँ ये गाना। पहचान तो गए होंगे आप किसकी आवाज है, कौन सा गाना है। कुमार सानू की आवाज है और किसने गाया है ये गाना, ये आप गेस कीजिए।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जी, पहचान लिया होगा आपने कि जो हमने आखिरी सवाल आपसे पूछा उसका सही जवाब है बॉर्डर। तो बिल्कुल सही सही बहुत सारे लोगों ने लिखकर भेजा है, मैं नाम शामिल करती हूँ और फिर गाना तो हम सुनेंगे ही। पहला सही जवाब लिखा नवीन भाटिया साहब ने, सरोज यादव हैं दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर इस बार आ गए हैं जुगेश रावत। तो नए नए लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक और स्वागत आपका हमारे शो में। इसके बाद सही जवाब लिखा नागेंद्र ठक्कर ने, अनिल सरोड़े, प्रणव शिंदे, राजेश मानकलाल शाह, सुदर्शन, अनीता सिमरन मुखी, सतप्रकाश सनौटिया, ललित कुमार, जगदीश बजाज, नवीन चौहान, पवन के कसेरा, मोहम्मद इम्तियाज, निरंजन भालेराव, अक्षत कुमार, राज, बबलेश पवार, सोहन, नागेंद्र ठक्कर, आप सबने सही सही जवाब दिए।

और बहुत सारे लोगों के नाम रह भी गए हैं, प्रकाश गोगिया, अजय नारायण सिंह, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान, रंजीत कुमार और राजकोट से जैमिन और हेतल जैन, जयंती नाशिकार, विप्लव का भी सही जवाब आया, दरवेश मोड़ हैं, जेएम खुंगर, मनोहर लाल गांधी और फारूक अली।

इसी के साथ अपराजिता को दीजिए यही विदा। इस गाने के बाद आप सुन सकेंगे समाचार। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ-05, NJ-50 और NJ-100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9

0: are currently leading the two-match series 1-0. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। आज के कार्यक्रम का विषय है यूपीआई के 10 वर्ष, भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति। भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने पिछले एक दशक में बड़ा बदलाव किया है। आज यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ और वित्तीय समावेशन का एक अहम माध्यम बन चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक निगरानी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया यूपीआई अब अपने संचालन के 10 वर्ष पूरे कर रहा है। इन 10 वर्षों में यूपीआई के इस्तेमाल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां यूपीआई के जरिए वार्षिक लेनदेन की मात्रा 1,78,00,000 थी, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में ये बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है, यानी लेनदेन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री बताते हैं कि यूपीआई सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि ये नीति, प्रक्रिया और वितरण का एक शक्तिशाली संगम है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: साथियों, बीते दशक में भारत के जिस रिफॉर्म ने दुनिया में हलचल मचा दी है वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है। जो लोग कभी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े बेनिफिट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, यूपीआई देश के ऐसे नागरिकों को सर्व कर रहा है। ये जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी है, ये रिफॉर्म किसी कंपल्शन से नहीं हुआ है, ये हमारा कन्विक्शन था।
2: तो सवाल है, यूपीआई ने भारत के भुगतान तंत्र को किस तरह बदला? छोटे से छोटे दैनिक भुगतान से लेकर बड़े धन हस्तांतरण तक इसकी भूमिका कैसे बढ़ी और भारत का ये डिजिटल भुगतान मॉडल किस तरह वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है? इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
4: भारत में डिजिटल भुगतान को आसान, तेज और व्यापक बनाने में यूपीआई की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यूपीआई का ऐसा अंतर संचालनीय भुगतान माध्यम है जिसके जरिए लाभार्थी को राशि रियल टाइम में उपलब्ध हो जाती है। एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से पीयर टू पीयर यानी दो व्यक्तियों के बीच सीधे पैसे भेजने और पीयर टू मर्चेंट यानी किसी दुकानदार या व्यापारी को भुगतान करने की सुविधा मिलती है। इस अवधि में यूपीआई लेनदेन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR 188% रही। वहीं वार्षिक लेनदेन मूल्य वित्त वर्ष 2016-17 में 0.07 लाख करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 155% रही। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई लेनदेन की मात्रा में वर्ष दर वर्ष 30% और मूल्य में 21% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। यूपीआई की पहुंच का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के डिजिटल भुगतान में इसकी हिस्सेदारी 84% रही और वर्ष 2025 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 49% रही। यूपीआई का इस्तेमाल केवल बड़े शहरों या बड़े कारोबारों तक सीमित नहीं है, छोटे दुकानदारों, स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों के रोजमर्रा के भुगतान में भी इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। यूपीआई के शुरुआती महीने अगस्त 2016 में 90,000 लेनदेन हुए थे। आज वही प्रणाली एक दिन में औसतन 66 करोड़ लेनदेन संसाधित कर रही है। ये बदलाव केवल तकनीकी विकास का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये बताता है कि डिजिटल भुगतान किस तरह आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन यूपीआई की सफलता को समझने के लिए ये देखना भी जरूरी है कि इसका इस्तेमाल किस तरह के भुगतान में हो रहा है।
2: यूपीआई यूपीआई ने भुगतान को केवल तेज और आसान ही नहीं बनाया बल्कि छोटे छोटे दैनिक भुगतानों को भी डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुकान पर भुगतान हो, किसी व्यक्ति को पैसे

0: बेचने हो या किसी व्यापारी को डिजिटल भुगतान करना हो, यूपीआई ने इन सभी को एक ही डिजिटल ढांचे से जोड़ दिया है। लेकिन यूपीआई के लेनदेन की प्रकृति क्या है, पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट लेनदेन में क्या अंतर है और छोटे भुगतानों में यूपीआई की भूमिका कितनी बड़ी है, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
1: यूपीआई की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है इसका व्यापक और विविध इस्तेमाल। यूपीआई के लेन देन के विश्लेषण से पता चला है कि व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन कुल लेन देन की मात्रा का 63% है। इससे पता चलता है कि छोटे और बार बार होने वाले खुदरा भुगतानों में यूपीआई का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी ओर व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P लेन देन मूल्य के मामले में सबसे अधिक है। कुल लेन देन मूल्य में P2P की हिस्सेदारी 71% है। यानी यूपीआई एक तरफ रोजमर्रा के छोटे खुदरा भुगतानों का माध्यम है तो दूसरी तरफ लोगों के बीच बड़े धन हस्तांतरण का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। वहीं P2P लेन देन में 59% भुगतान 500 रुपए से कम के थे। इसके साथ ही 500 रुपए से अधिक लेन देन की हिस्सेदारी 41% रही। यूपीआई ने डिजिटल विभाजन को कम करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने में भी भूमिका निभाई है। लेकिन यूपीआई की कहानी केवल भारत तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। आज यह कई देशों में संचालित हो रहा है और सीमा पार डिजिटल भुगतान के वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है।
0: भारत में शुरू हुई यूपीआई की डिजिटल भुगतान प्रणाली आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूपीआई को लेन देन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली माना है। वर्ष 2025 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 49% रही। तो किन देशों तक पहुंच चुका है ये यूपीआई और आने वाले वर्षों में भारत के डिजिटल भुगतान के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है, आइए सुनते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट।
2: वैश्विक मंच पर यूपीआई और डिजिटल भुगतान का अगला दशक। भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में शुरू हुआ यूपीआई आज वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुका है। यूपीआई की अभूतपूर्व वृद्धि, विश्वसनीयता और अंतर संचालनीयता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे लेन देन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली माना है। वर्ष 2025 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 49% रही। भारत में यूपीआई के जरिए हर दिन औसतन 66 करोड़ से अधिक लेन देन संसाधित किए जा रहे हैं। इससे भारत त्वरित, सुरक्षित और समावेशी डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक प्रमुख देश के रूप में उभरा है। यूपीआई अब सीमा पार डिजिटल भुगतान के वैश्विक मंच के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में यूपीआई 11 देशों में संचालित है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल है। इसका अर्थ है कि यूपीआई का प्रभाव अब केवल घरेलू डिजिटल भुगतान तक सीमित नहीं है, ये भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल की वैश्विक पहुंच को भी दर्शाता है। यूपीआई की सफलता को केवल लेन देन की संख्या से नहीं मापा जा सकता, इसकी बड़ी उपलब्धि ये भी है कि इसने डिजिटल भुगतान को आम लोगों और व्यापारियों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ा है। आने वाले समय में नए उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को यूपीआई पारितंत्र में शामिल करना महत्वपूर्ण होगा।
0: भारत में यूपीआई के 10 वर्ष डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की कहानी बताते हैं। यूपीआई से जुड़े सक्रिय बैंकों की संख्या वित्त वर्ष 2016-17 के 44 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 703 हो गई। आने वाले समय में नए उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों को जोड़ना, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और वित्तीय समावेशन को और व्यापक बनाना यूपीआई के अगले दशक की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं होंगी। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है अलका सिंह ने। नमस्कार।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एसपी शर्मा जी। एसपी, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: Benchmark domestic indices rise, Sensex jumps nearly 300 points, Nifty settles above 24,300. Prime Minister Narendra Modi hails UPI as a major turning point in India's digital payments journey, says it is a source of pride for every Indian. And global crude oil prices decline around 3%.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त का रुख, सेंसेक्स में लगभग 300 अंकों का उछाल और निफ्टी 24,300 से ऊपर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में यूपीआई के बढ़ते उपयोग की प्रशंसा की, कहा यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात, और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 3% की गिरावट।

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक यानी 0.37% बढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक यानी 0.48% चढ़कर 24,335 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.5% की तेजी आई, जबकि स्मॉल कैप में मामूली बदलाव से 0.1% की सुस्ती देखी गई। इससे पहले भू राजनीतिक तनाव के बीच बाजार गिरावट के साथ खुले और दोनों सूचकांक ज्यादातर समय दबाव में रहे। हालांकि कारोबार के आखिरी आधे घंटे में बाजार में जबरदस्त रिकवरी हुई और बढ़त के साथ बंद हुए। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बाद सूचकांक अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा रहा, जिसका मुख्य कारण क्लोजिंग ऑक्शन सेशन लागू होने के बाद निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शन की पहली मंथली एक्सपायरी रही।
0: Benchmark domestic equity indices ended in positive zone today. The Sensex gained 287 points or 0.37% to close at 77,656. The Nifty advanced 116 points or 0.48% to settle at 24,335. In the broader market of the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.5%, while the small-cap 100 index dipped 0.1%. Earlier, the markets opened lower amid ongoing geopolitical tensions, with both benchmark indices remaining under pressure for most of the session. However, in the final half an hour of trade, the market staged a sharp recovery and turned into positive territory. Following the closing auction session, CAS, the indices ended the day with healthy gains. Volatility remained elevated, largely due to the first Nifty futures and options monthly expiry since the implementation of the CAS.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंडिगो 2%, अडानी पोर्ट्स 1.2% और इन्फोसिस तथा ट्रेंड 1.1% ऊपर आ गए। इसके उलट एटर्नल 0.8%, एचसीएल टेक 0.7% और पावर ग्रिड 0.5%

0: लुढ़क गए।
1: In the sectoral indices on the BSE, 25 out of 28 sector edged upward. Among the top gainers, telecommunications rose 1.4%, hospitals increased 1.3%, and PSU Bank added 0.8%. In contrast, mid-small private banks lost 0.25%, private banks index dropped 0.1%, and insurance dipped marginally. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,330 companies declined, 2,007 advanced and 188 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ। एसपी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
0: एसपी, आज के कारोबार में शेयर बाजार ने शुरुआती कमजोरी दिखाई लेकिन इसके बाद शानदार रिकवरी हुई और सकारात्मक रुख के साथ क्लोजिंग हुई मार्केट की, तो आपके आकलन में इस रिकवरी के पीछे सबसे बड़े घरेलू और वैश्विक कारण क्या रहे और इससे बाजार में मजबूत खरीदारी की वापसी हम मान सकते हैं या अभी लग रहा है कि कुछ स्थितियां हैं?
2: देखिए, मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में है और सेकंड जो आज की एक खरीदारी की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे पॉजिटिव्स हैं। एक तो क्रूड के प्राइसेस थोड़े से स्टेबल हुए हैं, बहुत ही एस्केलेशन जो हम देख रहे थे तो शायद उसमें कुछ ऐसा पॉज यहां पे आए तो जिससे एक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो थी वो भी थोड़ा कम हो जाती हैं जब क्रूड के प्राइसेस में थोड़ी गिरावट आती है। और दूसरा जो हमने देखा, जो हमारी कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया है। पीछे के कुछ सेशन जो है हमारे काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं, बीच में भले ही कुछ वॉलेटिलिटी तो जरूर रही है लेकिन ओवरऑल जो सपोर्ट है फंडामेंटल सपोर्ट के अलावा जो रिसेंट जो डिवेलपमेंट्स हैं कॉरपोरेट अर्निंग को लेकर और दूसरा जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर जो हमने काफ़ी फोकस किया और हमारे एक्सपोर्ट के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, 13% से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है
0: जी।
2: तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र जो मार्केट की मजबूती है वो काफ़ी अच्छी है पिछले कुछ महीनों से। भले ही वॉलेटिलिटी रहती है, जब भी कोई ग्लोबल डेवलपमेंट होती है तो उसका इम्पैक्ट तो मार्केट के ऊपर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है। अब कल कोई और कुछ नेगेटिव का कोई न्यूज़ आ जाए तो मार्केट में फिर एक गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल जब भी मार्केट में कुछ भी ग्लोबली कुछ पॉजिटिव होता है तो मार्केट स्ट्रांगली रिबाउंड करती है। ये एक इंडिया की मार्केट की एक स्ट्रेंथ है जो जहां से हमें पता चलता है कि डोमेस्टिकली वी आर वेरी स्ट्रांग बट चैलेंजेस आर फ्रॉम दी ग्लोबल साइड।
0: इसमें आपको ये लगता है कि निवेशकों का एक ट्रेंड बदल रहा है, उनके सेंटिमेंट्स भी काफी तेजी से बदलते हैं इसके साथ में?
2: बिल्कुल, उसमें क्या है कि मार्केट का अगर हम बिहेवियर देखें पीछे के 4-5 महीनों का, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है ईरान में और यूएस में, तो मार्केट में कोई ऐसी करेक्शन जो डीप करेक्शन जाके जहां पे मार्केट वहीं पे सेटल हो जाए ऐसा नहीं देखा गया। मार्केट ने रिकवर किया है। मार्केट जब भी उसको मौका मिला तो मार्केट ने स्ट्रांगली रिकवर किया, तो कुल मिला के जो गिरावट है वो उतनी ज्यादा नहीं है कि हम देखिए
0: ओवरऑल
2: जो ओवरऑल निफ्टी था वो 25,000 से ऊपर था, तो अभी हम देखते हैं कि निफ्टी 24,000 के आसपास ऑन एन एवरेज रहता है, प्लस माइनस 23,500 से 25 तक भी चला जाता है। तो ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट में कोई ऐसी डेसिलरेशन आई हो और मार्केट जाके 22,000 पे सेटल हो जाए और वहां से फिर रिकवरी का नाम ही ना ले, तो वहां पे हम देखते कि बहुत ही कुछ नेगेटिव है हमारी अर्थव्यवस्था में, कुछ नेगेटिव है, हमें हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अभी मार्केट भले ही कोई करेक्शन आती है तो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली रीबाउंड भी करती है, तो जो इसका एक दायरा है जो जैसे मैंने बताया 23,500 से लेके 25,000 के बीच में ये पिछले 5-6 महीने से उधर ही अपना एक रीच बाउंड।
1: सो डॉक्टर शर्मा, विच डोमेस्टिक ट्रिगर्स मैटर द मोस्ट टुडे, द एफआईआई और डीआईआई फ्लोज और द रुपी स्टेबिलिटी और सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज?
2: देखिए, इसमें लेक साहब मैनी डेवलपमेंट्स लाइक अवर फर्स्टली द इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस लाइक द क्रूड इज नाउ डिसेलरेटिंग, नॉट गोइंग सिग्निफिकेंटली अप, एंड सेकंड इज द फंडामेंटल फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स एंड फ्रॉम द आईआईपी नंबर्स, सो रिसेंट मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग, एंड थर्डली एज आई सेड द कॉरपोरेट अर्निंग्स आर वेरी सपोर्टिव, एंड फोर्थली सम स्टेबिलिटी In the FII inflows also, they are the net buyers, and DII is also investing strongly, and their investment is higher than the FIIs. So all these factors are supporting the market, because market strength is showing a great resilience despite many headwinds at the global level, like various negative news from Iran and US side regarding their ongoing war. But markets remains strongly resilient and behaves in a very positive way when there is some positive news at the global level.
1: Okay, I have two sector related questions to you. How exposed are Indian IT and pharma to any US slowdown or policy shifts? Also, the PSU banks and financial, will they remain the index drivers, and is that sustainable?
2: Yes, Lekhsa, because last year 25-26 was very challenging for the India's economy and India's external sector, but our economy proved very resilient despite many headwinds from the tariff front. Firstly, from the months of April, May, June, July, thereafter tussle in West Asia, our external sector was very, very strong, and we were in a positive trajectory in our export numbers. Rather, we were higher in with US also in our export figure. So that has proved that India is not dependent on any one economy or single economy. We are diversified, and our resilience is very strong. Our products are demanded at the global level. That is the strength of our products in the global market. Like during the recent 4 months, starting from April, May, June, July, our exports are showing 13.5% growth, and merchandise exports are increasing significantly, more than 17-18%. So that is the strength of India's external sector, which is now becoming more and more resilient and competitive in the global market. So this has proven that we are, our global marketplace is very strong. We are a great support in the global ecosystem, and the growth front, we are already proven that.
1: So how should the markets interpret the latest US sanctions on Iran? More political pressure than supply shock?
2: I believe this is more in noise, actually, the actual happenings, because there are so many developments. Sometimes they announce the positive developments that they are going to talk and talk peace. And sometimes they are announcing some sanctions. And I don't see that such sanctions are going to impact a single country, Iran or US. These sanctions will have a repercussion for the whole global economy, but we believe there will be some peace talk, and there will be some peace process, and sanctions will not come into force.
0: एसपी, आज जो मार्केट में हमने हलचल देखी है, नेगेटिव से पॉजिटिव जोन में आना, इसमें मासिक डेरिवेटिव्स एक्सपायरी और क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम की भूमिका रही, तो क्या आपको लगता है कि इस नई व्यवस्था के आने से मार्केट पर किसी तरह का असर पड़ा है, या एक नई राह हमें देखने को मिलेगी?
2: ठीक है, मैंने इसमें एक स्टेबिलिटी देखी है. जो डेरिवेटिव मार्केट है, खास करके जो ऑप्शंस का एक्सपायरी होता है, पहले काफी वॉलेटिलिटी रहती थी और ऑप्शंस के प्राइसेस काफी वॉलेटाइल होते थे सुबह से शाम तक, तो नाउ एक स्टेबिलिटी है प्राइसेस में. जो एक अनयूजुअल कई बार ऐसा प्रीमियम रहता था, जो अभी एक नॉर्मल लेवल पे देखा गया है, विच इज प्रोवाइडिंग अ ग्रेट स्टेबिलिटी टू द इन्वेस्टर्स ऑल्सो.
0: ओके, आगे बढ़ते हैं. सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर में 3% हिस्सेदारी की बिक्री का ऐलान किया है. मांग अधिक रहने पर अतिरिक्त 3% हिस्सेदारी बेचने का विकल्प भी रखा गया है, जिसे ग्रीन शो ऑप्शंस भी कहा जाता है. इस तरह से कुल संभावित बिक्री 6% तक हो सकती है. इसके लिए न्यूनतम भाव ₹514 प्रति शेयर तय किया गया है. बिक्री पेशकश आज संस्थागत निवेशकों के लिए खुल गई, जबकि खुदरा निवेशक इसमें कल भाग ले सकेंगे.
1: The Indian equity markets will operate as usual tomorrow. However, the day will be observed as a settlement holiday on account of Eid-e-Milad. A settlement holiday occurs when trading exchanges remain open, but banks and depository are closed. As depositories will remain non-operational, the transfer of shares and the pay-in and payouts of funds will be rolled over to the next working settlement day. Tomorrow, trading in the cash equity derivatives and commodity derivatives segments on the BSE and NSE will remain fully functional during regular market hours. However, trades executed today and tomorrow will be settled on August 27, that is Thursday.

0: It has emerged as one of the most successful pillars of India's digital public infrastructure, providing an interoperable real-time payments platform. The UPI has surged almost 13,000-fold in transaction volume. Finance Ministry said that the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore to nearly 314 lakh crore during the same time period. Dr. Sharma, this is interoperable and it is a real-time payment platform, which is a great success, and other countries too have kind of expressed interest in it.
1: Yes, Lake Saab, this is a great development, and we are global leader in the digital transaction supported by the UPI. And as you rightly said, there is a 13,000-fold surge in the UPI transaction. That is a great number. We are now globally recognized. UPI has emerged as a global platform for cross-border digital payments also, and is currently operational in 11 countries, namely United Arab Emirates, France, Bhutan, Sri Lanka, Nepal, Singapore, Mauritius, Qatar, Cambodia, Greece, and Maldives. So this is becoming now a robust system for our global transactions and supporting our economy significantly. So digital contribution in our economy is now becoming significantly strong on the back of these developments in the recent years.
2: आगे बढ़ते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना है. इसके अलावा निवेश संबंधों को गहरा करने और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा. वित्त मंत्री मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ एक निवेश गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगे. एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज 0.7% बढ़ा और जापान का निक्केई 225 आधा प्रतिशत ऊपर आकर बंद हुआ. यूरोपीय बाजारों में ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 0.8% की तेजी और लंदन का फुटसी 100 सूचकांक 0.2% बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. एशियन मार्केट में आज बहुत ज्यादा हमने उथल पुथल नहीं देखी, क्या कारण इसके रहे होंगे?
1: वही जो मैंने बताया कि एक तो क्रूड में थोड़ी स्टेबिलिटी देखी गई है, और दूसरा जो एक पीस प्रोसेस की बात होती है कई बार, जो उसको देख के भी, क्योंकि मार्केट्स अभी एक पीछे काफ़ी महीनों से हमने देखा कि बहुत ही कंफ्यूज्ड मोड में है. मार्केट को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है. तो दैट्स व्हाई जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट है, जैसे काफ़ी एशियन मार्केट्स में, वो बहुत कम हो गया है. जैसे हमारा इंडिया के उसमें हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है जब भी कोई पीस प्रोसेस आती है, लेकिन काफ़ी मार्केट्स ऐसी हैं कि उसमें कोई ऐसा प्रोसेस भी होता है तब भी वो स्टिकी जोन में ही रहती हैं, उनमें कोई मेजर प्रभाव देखने को नहीं मिलता. तो ये भी एक कारण है.
0: मेजर यूएस स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंडेड ऑन अ मिक्स्ड नोट यस्टरडे. द नैस्डैक कंपोजिट डिक्लाइन 0.8% एंड द S&P 500 डिप्ड 0.3%. मीनवाइल द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एडेड 0.3%. Market participants will keep an eye on countries' inflation print, GDP estimates, quarterly earnings from major chip giant, and the Federal Reserve's Jackson Hole symposium due this week. So, Dr. Sharma, what are your expectations from the Jackson Hole symposium that's happening this week? And also, how much should Indian markets care about the U.S. tech weakness and the rate expectations right now?
1: I don't see India's market is more concerned with the such kind of developments in US tech market or AI, because our strength is significantly strong as compared with the many advanced economies, and we are growing at great fundamentals actually. We started late, but we are becoming more and more resilient in such kind of technological developments like the AI. So going forward, I believe as U.S. economy is showing some fragile movement, like the GDP is also decelerating from the quarter one to quarter two, and inflation remains sticky.

0: the higher zone. So such positive developments like can support for the shorter period, but the long-term fundamentals
1: So what
0: has
1: are
0: to
1: your
0: be.
1: expectations from the Federal Reserve's Jackson Hole symposium?
0: I believe that will be in a stable zone, and I don't see any much movement in the system.
1: So, and which global data points, the US jobs, CPI, Fed guidance, should Indian investors watch most closely?
0: The most important is the Fed rate, again, the inflation is also very important to watch, because if the inflation goes up, then that impact the movement of the Fed rate, and thereafter some impact is there in the global markets. So these are the three, four major fundamentals which are impacting the global economic environment.
1: So, would you like to comment on the what kind of commentary of Kevin Warsh are you expecting from the Jackson Hole?
0: No, I don't see any much movement and comments on the
1: Okay.
0: same. I remain stable for this development.
1: Okay. Moving on, the United States has imposed sanctions under Operation Economic Outcast on nearly 60 entities, individuals, and vessels over their alleged links to Iran's military activities, procurement networks, and petroleum and petrochemical trade. In a fact sheet released by the U.S. State Department, the measures aim to further expose individuals and entities that enabled strikes against U.S. forces and allies and to restrict the revenue that the Iranian regime uses to attack its neighbors, support terrorism abroad, brutally oppress its own people, and hold the global economy hostage. Very briefly, how do you think India should react to such an Operation Economic Outcast, or how will the world at large react to the Operation Economic Outcast, and what repercussions could it have on the world economy?
0: Yes, repercussions can be in the financial markets, and because financial markets are already very volatile since the last many months or quarters. So going forward, we have to watch carefully the developments in the financial markets and stability about the exchange rate movements particularly, so that the fundamentals of the economy are not impacted or face such kind of repercussions.
2: जी, आगे बढ़ते हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए उसके पास 2 साल की योजना है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की घोषणा करते हुए इसे आर्थिक डी डे बताया है। वहीं ईरान के वित्त मंत्री अली मदनी जादे ने कहा कि उनका देश इन कदमों के लिए तैयार है और उसके पास जवाब देने के अपने साधन हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो क्षेत्र से तेल का निर्यात रोक सकता है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्ग होर्मुज जल डमरों मध्य से जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकता है। एसपी, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनका कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट पर, और खासतौर पर ऐसे समय में जब भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं और ऑयल्स के जो प्राइसेस और तेल की जो कीमतें हैं उनमें भी उतार चढ़ाव देख रहे हैं, कभी बढ़ रहे कभी गिर रहे, भारतीय बाजारों को कैसा असर इस पर देखने को मिल सकता है?
0: देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनसे वॉलेटिलिटी बहुत क्रिएट होती है, मार्केट्स वॉलेटाइल हो जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो अभी तक हमने नतीजा देखा है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि हमारी मार्केट है स्टेबल है, मार्केट में मतलब ऑन एन एवरेज जो है स्टेबिलिटी दिखाई है, एक कोई ऐसी डीप डिसलरेशन नहीं आई जहां पे मार्केट जाके सेटल हो गई हो, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा नुकसान हुआ हो, मार्केट ने रिकवरी ना किया हो, तो मार्केट हमारी रिकवर करती है। ये जो वॉलेटिलिटी है, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं, कभी नेगेटिव आती हैं, तो इनकी वजह से मार्केट में उतराव चढ़ाव जरूर है, लेकिन एक जो प्रोलॉन्ग्ड जो जिसकी हम बात करें कि करेक्शन आ जाए, वैसा मार्केट में रुख नहीं देखा गया।
2: लेकिन इसका असर अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उस पर भी काफी क्षेत्रों में नजर आने लगा है, ऐसा आपको लगता है?
0: ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारा जो जीडीपी नंबर है अभी भी बहुत अच्छे से एंटिसिपेटेड है. वी विल ग्रो मोर देन 7% इन द करंट ईयर ऑल्सो, दैट इज द एस्टिमेट. दो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव प्रोवाइडेड 6.5-7%, 6.5-7%, 6.5-7% के बीच में तो बहुत सारे अनुमान है.

0: और इसके अलावा जो जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, एक्सपोर्ट्स बहुत स्ट्रांग है, आईपी नंबर स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन एक स्टेबल ट्रेजेक्टरी में है। तो ऐसी जो वॉलेटाइल न्यूज़ है वो एक दिन दो दिन के लिए मोमेंटली कुछ ऐसी वॉलेटाइलिटी भय पैदा करती हैं, लेकिन जो जो अगर हम बात करें कि शॉर्ट टर्म में एक महीने में दो महीने के अंतराल में मार्केट्स एक स्टेबल लेवल पे ही बिहेव कर रही
1: तो यानी निवेशकों को इस पॉइंट पर आकर के घबराने की जरूरत नहीं है।
0: हैं। जी बिल्कुल नहीं, मैं ये कहूंगा कि खास करके जो रिटेलर है उसको ऐसे मूवमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए। अगर वो इन्वेस्टेड है तो रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ना कि ऐसे पैनिक में आके अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको विड्रॉ करें, क्योंकि मार्केट्स देखा गया है जो ट्रेंड है, मार्केट्स अगर गिरावट आती है तो बहुत शार्पली रिकवर करती है।
1: सो हाउ शुड इंडियन पॉलिसी मेकर्स एंड इन्वेस्टर्स हेज अगेंस्ट अ जियोपॉलिटिकल ऑयल स्पाइक?
0: आई बिलीव दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज वी हैव ऑब्जर्व सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी इन दी क्रूड ऑयल प्राइसेस। द प्राइसेस आर प्रिवेलिंग इन दी ट्रैजेक्टरी ऑफ 50 मोर देन 50-60%, लाइक $55 पर बैरल टू मोर देन $100 पर बैरल। सो देर आर मेजर करेक्शंस ऑल्सो, क्रूड डिसलीरेट्स समटाइम्स टू द लेवल ऑफ 70, समवेयर 70-75। सो वी हैव अपॉर्चुनिटी, व्हेन देयर इज अ ग्रेट करेक्शन इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस देन वी शुड बिल्ड अवर इन्वेंट्रीज, बिल्ड अवर स्टॉक्स, सो दैट द फ्यूचर ट्रैजेक्टरी रिमेन्स स्ट्रांग एंड वी आर नॉट वरीड अबाउट दी डेज दैट वी हैव नाउ, 50 डेज और 60 डेज। वी शुड बी ऑपरेटिंग ऑन मोर देन 100 डेज एज लाइक मैनी अदर कंट्री।
1: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइंड ओवर 3% टुडे। ब्रेंट क्रूड वॉज ट्रेडिंग 3.4% डाउन एट $89.01 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड। वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट क्रूड वॉज ट्रेडिंग 3.6% लोअर एट $81.94 पर बैरल व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन। एसपी, व्हाई हैज द ऑयल फॉलन डिस्पाइट फ्रेश यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान?
0: Because when there are sanctions, the demand trajectory or the business activity will be impacted. So, anticipating the lesser demand for the fuel. So that's why when there is some negativity at the global level, then the speculation or spikes also not work that much strongly. So that is the, I believe,
1: so
0: reason
1: if the
0: for
1: price
0: this.
1: Remains at this level that we are talking about, how does that change your outlook for India's inflation?
0: My
1: account and
0: my
1: GDP
0: outlook
1: growth.
0: For India's inflation will remain stable. Inflation will remain within the RBI band. Though crude prices may prevail somewhere between $90 to $100, but still we have our supply chain very strong, and there will not be any impact on the inflation trajectory. And growth is already resilient, and our fundamentals are very strong to support the growth trajectory.
1: Okay. श्रोताओं, सराफा बाजार में सोना आज मामूली गिरावट के साथ 1,62,041 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 1.4% गिरकर 2,41,848 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। एसपी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू
1: फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर शर्मा। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices rise, Sensex jumps nearly 300 points, Nifty settles above 24,300. Prime Minister Narendra Modi hails UPI as a major turning point in India's digital payments journey, says it is a source of pride for every Indian. And global crude oil prices decline around 3%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
2: Namaste. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई

0: अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NG5, NG50 और NG100 शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के बिधाननगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 268 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Unified Payments Interface UPI, which was launched on this day in 2016, has completed 10 years of transforming digital payments in India. The unprecedented scale and reliability

सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत रूस द्विपक्षीय संबंध, रणनीतिक साझेदारी और बहुक्षेत्रीय सहयोग पर।

0: चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार मानस प्रतिम भूयान।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस की दो दिन की यात्रा की। रूस दशकों से भारत का एक अहम साझेदार रहा है। इस यात्रा के नतीजे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर स्कंद रंजन तायल। एम्बेसडर तायल, विदेश मंत्री जयशंकर की राष्ट्रपति पुतिन और अन्य रूसी नेताओं के साथ हुई बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है?
2: हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की ये दो दिवसीय यात्रा रशिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें न केवल बायलैटरल पर मल्टीलैटरल और इंटरनेशनल तब जो मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श हुआ। इस समय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगली समिट है बिश्केक में 31 अगस्त और 1 सितंबर को, उसमें राष्ट्रपति पुतिन भी आएंगे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे। उसके बाद ब्रिक्स की समिट मीटिंग भारत की मेजबानी में हो रही है और ये भारत की अपेक्षा है और बहुत विश्वास है कि राष्ट्रपति पुतिन उस समिट में भारत आएंगे। तो उनमें क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या क्या बातचीत होगी, क्या क्या एजेंडा होगा, मैं समझता हूँ हमारे विदेश मंत्री की दो दिवसीय यात्रा में उस पर काफी बातचीत हुई होगी। और दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग वहां हुई कि 27वीं मीटिंग, एक अंतर सरकारी आयोग है भारत और रशिया के बीच में जो वाणिज्य, आर्थिक मुद्दे, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग हर साल या दो साल में एक बार उसके बारे में बातचीत करते हैं। और रशिया की तरफ से प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोम ने उसका अध्यक्षता की और भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री ने उसकी अध्यक्षता की। और इस मीटिंग में न केवल रशिया के बहुत ही अनुभवी विदेश मंत्री श्री सर्गेई लावरोव शामिल हुए पर राष्ट्रपति पुतिन के एक बहुत खास सलाहकार श्री यूरी उशाको भी शामिल हुए। ये दिखाता है कि कितना महत्व रशिया की टॉप लीडरशिप ने इस मीटिंग को दिया, क्योंकि इस ज्वाइंट कमीशन मीटिंग में पिछले एक वर्ष में पूरे भारत और रशिया के सहयोग में क्या क्या हम लोगों ने अचीव किया, कहाँ कहाँ कुछ कमी रही और अगले एक वर्ष दो वर्ष आगे क्या करना है, इन सब चीजों पर बातचीत होती है। और बाकी जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे वो रशिया के हों या भारत के हों, वो यहाँ से जो गाइडलाइंस आती हैं उनके अनुसार भारत और रशिया के सहयोग को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विजिट हमारे विदेश मंत्री की रशिया के लिए है। और जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बहुत अच्छी बातें होंगी, ऊर्जा के ऊपर होगी, उर्वरक भारत में कुछ कमी हो रही है उनके सप्लाईज पर होगी, आणविक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, तो हमेशा ही भारत और रशिया के बीच के सहयोग की एक बहुत ही अच्छी कड़ी है। और हाई टेक्नोलॉजी की आजकल बहुत ही बात हो रही है कि जिस तरह दुनिया बदल रही है उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीजें, उसमें भी भारत और रशिया आगे बहुत सहयोग करेंगे।
1: एम्बेसडर तायल, विदेश मंत्री जयशंकर ने रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन उनसे भी मुलाकात की। आप भारत को राष्ट्रपति पुतिन के उस आश्वासन को कैसे देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस भारत को ऊर्जा और फर्टिलाइजर्स की निर्यात में हमेशा प्राधान्य देगा और इसका आपूर्ति सुनिश्चित करेगा?
2: बहुत ये एक अच्छा राष्ट्रपति पुतिन ने आश्वासन भारत के विदेश मंत्री को दिया कि वहां से रशिया से ऊर्जा और उर्वरक का सप्लाई भारत को हमेशा जारी रहेगी। पर उसमें दिक्कत जो आ रही है, जो चुनौती है कि उसका पेमेंट कैसे किया जाए। इस समय जो भारत और रशिया के बीच में जो व्यापार है वो दो साल पहले करीब 68 बिलियन डॉलर था और इस साल भी शायद उसी उतना ही करीब होगा, पर इसमें करीब 50 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है भारत के खिलाफ। मतलब भारत करीब करीब 7 बिलियन डॉलर का आयात करता है पर केवल 8-9 बिलियन डॉलर का निर्यात रशिया को करता है। अब कैसे उसका पेमेंट किया जाए, क्योंकि जो अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाई हुई है रशिया के ऊपर वो बैंकिंग सिस्टम पर भी है, डॉलर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बहुत ही नए नए तरीकों से उसका पेमेंट करने का प्रयत्न होता है किसी तीसरे देशों के द्वारा। पर इस समय जो एक नई चुनौती शायद अमेरिका की तरफ से आ सकती है कि उनकी जो सेनेट है उसने एक लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 पास किया है, और उसमें कहा है कि

0: अमेरिका 100% टैरिफ तक लगा सकता है उन देशों पर जो रशिया का क्रूड ऑयल खरीदते हैं, और जो दुनिया के 5 सबसे अधिक रशियन ऑयल खरीदने वाले देश हैं, उसमें प्रथम स्थान चीन का है, फिर भारत, स्लोवेकिया, हंगरी और अजरबैजान। अब ये एक्ट अमेरिका की सेनेट ने तो पास कर दिया है, पर अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास होना है, और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप को देखना है कि वो इस पर हस्ताक्षर करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर ये लॉ बन जाता है अमेरिका में, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होगी। अब उसमें रशिया का कुछ लेना देना नहीं है, पर वो चुनौती भारत की होगी। पर इसमें एक चीज और समझने की आवश्यकता है हमारे सुनने वालों को, कि अगर ईरान का कच्चा तेल और रूस का कच्चा तेल दुनिया के बाजार से हट जाता है, तो दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा, और चीन तो है ही, भारत और चीन मिलके बहुत बड़े आयात करते हैं, और अगर दुनिया में तेल का प्राइस बढ़ा तो अमेरिका में भी जो पेट्रोल गाड़ी में डाला जाता है उसका भी दाम बढ़ेगा। अमेरिका के ईरान पे हमले से पहले वो करीब $3 प्रति गैलन था, जो आज $4 प्रति गैलन है। अगर वो 4.5 गैलन उससे अधिक हो गया, तो अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन होने हैं नवंबर में, उसमें बहुत दुष्प्रभाव प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ उसमें पड़ सकता है, क्योंकि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिकन पार्टी हार सकती है। तो अब क्या वहां निर्णय लेते हैं, अब राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में ये कहना बड़ा मुश्किल है क्या वो निर्णय लेंगे, पर भारत के लिए और रशिया के लिए ये एक चुनौती है, और वो भविष्य बताएगा कि इसका क्या रूप निकलता है।
1: एम्बेसडर टायल, रूस के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मंतुरोव के साथ बातचीत में जयशंकर ने दोनों देशों के बीच व्यापार में रूस के पक्ष में बढ़ते व्यापार घाटे पर चिंता जताई। क्या ये वाकई चिंता की बात है? इस मुद्दे को कैसे हल किया जा सकता है?
0: ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि कई वर्षों से भारत का जो निर्यात है रशिया को, वो 8-10 बिलियन डॉलर के आसपास ही रहा है, उसमें कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और क्योंकि हम बहुत ऊर्जा अब आयात कर रहे हैं रशिया से, तो करीब 50 बिलियन 60 बिलियन डॉलर का हम कच्चा तेल वहां से और फर्टिलाइजर ये सब आयात कर रहे हैं। अब उसको कैसे भारत का निर्यात बढ़ाया जाए, ये एक बहुत बड़ा एक चुनौती है। उसमें भारत कुछ प्रयत्न कर रहा है, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भारत के वहां से भेजे जाएं, भारत की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दवाइयां पूरे रशिया में बहुत ही अधिक बिकती हैं, उनकी बिक्री और बढ़ाई जाए। कुछ एक ये प्रयत्न है कि रशिया का जो फार ईस्ट है, साइबेरिया है, वहां बहुत ही कम आबादी है और वहां बहुत संसाधन है कि खनिज पदार्थ बहुत है, एग्रीकल्चर लैंड बहुत हो सकती है वहां पर, कि एक मोबिलिटी एग्रीमेंट इस तरह का रशिया के साथ हो कि भारत से अधिक संख्या में स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स, लेबर, प्रोफेशनल्स वो रशिया जाएं और वहां जाके काम करें, क्योंकि रशिया में जो उनकी जनसंख्या है वो भी कुछ कम हो रही है, वो एजिंग सोसाइटी है। तो एक इस तरह से जो भारत के वर्कर्स वहां जाएंगे वो वहां कमाएंगे, भारत पैसा भेजेंगे, जैसा कि हम देखते हैं कि गल्फ कंट्रीज से भेजते हैं, अमेरिका से भेजते हैं, तो उससे भी कुछ ये जो गैप है वो कुछ कम हो सकता है। और उसके बाद एक प्रयत्न है कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, जिससे कि भारत का जो निर्यात है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को, वो दूसरे देशों की अपेक्षा में थोड़ा कम हो जाए। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के 5 देश सदस्य हैं, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक और रशिया, पर उसका ज्यादातर रशिया ही उसका बहुत कोर है। पिछले वर्ष जब भारत भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में एनुअल समिट हुई थी, तब ये बातचीत हुई थी कि इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, पर ये बहुत इसमें समय लगता है कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में, क्योंकि सब देश अपने अपने हित को बचाने का प्रयत्न करते हैं, और जैसा कि हमने देखा कि हमारा यूरोपियन यूनियन, और बहुत साल लगते हैं, कोई एक आसियान के साथ भी रिव्यू चल रहा है, उसमें समय लग रहा है, पर ये दिशा बहुत अच्छी है और इसमें कुछ वर्ष में कुछ नतीजे जरूर सामने आएंगे।
1: एम्बेसडर टायल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आगामी एससीओ समिट और ब्रिक्स समिट के दौरान द्विपक्षीय बातचीत होने की उम्मीद है। इन बातचीत का मुख्य विषय क्या हो सकता है?
0: मैं समझता हूं कि ये द्विपक्षीय बातचीत में जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, उन पर बातचीत अधिक होगी, क्योंकि जहां तक आर्थिक, व्यापारिक, साइंटिफिक ये सब चीजें हैं, वो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की मीटिंग में उन पर विचार हो जाएगा। और किस तरह दुनिया बदल रही है, किस तरह यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म हो, वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, क्या और देश कुछ कर सकते हैं जिससे कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध समाप्त हो, इंडो पैसिफिक में क्या स्थिति है, किस तरह चीन की क्या नीति है वहां पे, किस तरह उसको देखा जाए, समझा जाए, और रशिया जो भारत का सोच है चीन के प्रति, इंडो पैसिफिक के प्रति, उसको समझे कि भारत चाइना से दोस्त करने के लिए तैयार है, पर चीन का रुख हमारे बॉर्डर पर ठीक नहीं है। बार बार हमारी तरफ से कहा गया है कि सबसे पहले बॉर्डर पे, भारत चाइना के बॉर्डर पर शांति हो और कोई वहां पे टेंशन ना हो, तभी हमारे द्विपक्षीय संबंध चीन के साथ अच्छे होंगे। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री डोभाल जी इस समय चाइना में हैं और ये सब बातचीत चल रही है वहां, बॉर्डर टॉक्स। तो भारत का प्रयत्न है कि इंडो पैसिफिक एक शांत एरिया रहे, वहां कोई तनाव ना हो, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री अवश्य राष्ट्रपति पुतिन का सहयोग भी चाहेंगे और उनका समर्थन भी चाहेंगे।
1: मिस्टर टायल, ये मेरा अंतिम क्वेश्चन होगा। रूस भारत का एक पुराना और भरोसेमंद दोस्त और सहयोगी रहा है। ऐसे समय जब दुनिया भू राजनीतिक का उथल पुथल का सामना कर रही है, आप भविष्य में भारत रशिया का जो रिश्ता है, इसे कैसे देखते हैं और किस तरह देखते हैं?
0: देखिए, भारत और रूस के संबंध तो एक लेगेसी है, एक विरासत है, जो भारत और सोवियत यूनियन के जो बहुत ही घने मित्रता थी उसकी एक कड़ी है। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि दुनिया में जितने भी संबंध हैं, सामरिक हैं, स्ट्रेटेजिक हैं, वो कुछ तनाव में है। अमेरिका और नेटो के बीच में तनाव है, अमेरिका कनाडा के बीच में तनाव है, बताइए, जो कि बिल्कुल बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, अमेरिका और कोरिया के बीच में तनाव है। इन सब संदर्भ में अगर देखें तो भारत और रूस के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, बहुत डिपेंडेबल हैं, और उन पर बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है कि भारत कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो रशिया के हित में ना हो, और इसी तरह रूस कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा, कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा जो भारत के हित में ना हो। तो इसमें विश्व में भारत और रूस की ये मजबूत समझ और मित्रता पूरे विश्व में शांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर है, कड़ी है, और इसको दुनिया में बहुत अच्छी तरह समझा जाता है, देखा जाता है।
1: एम्बेसडर टायल, भारत रूस संबंधों पर विस्तृत दृष्टिकोण के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत रूस द्विपक्षीय संबंध, रणनीतिक साझेदारी और बहुक्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार मानस प्रतिम भूयान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz और ये वक्त है सांस झाली का। सांस झाली में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

जी हाँ, कितना अच्छा लगता है ना कि जब प्यार से जिंदगी चलती है तो जीना जो है गवारा हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी बहुत खुशनुमा हो जाती है जब कोई अच्छा साथी आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। लेकिन अगर कभी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो उसमें हमें घबराना नहीं होता है, समझने की ज़रूरत होती है एक दूसरे को, क्योंकि इंसान कभी बुरा नहीं होता है, बस हालात थोड़े से कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। फिलहाल हालात चाहे ज़िंदगी के कैसे भी रहे, लेकिन FM गोल्ड हमेशा बेहतरीन नगमों और बहुत सारे प्यार के साथ हमेशा आपके साथ रहता है। फिलहाल आपने जो गीत सुना वो फिल्म अपराध से था, और अब एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं। आवाज़ें आप सुनकर महसूस कर लेंगे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जी हाँ, आखिरी सलाम। जी हाँ, हमारा तो फिलहाल आखिरी सलाम नहीं है, लेकिन अब बस एक बेहतरीन से नगमे के साथ आपको छोड़े जाती हूँ और फिर मधुरिमा में फिर से एक बार ढेर सारी बातें आपके साथ।
1: लाओ दीप चरागा करो जमाने में, अरे बहार आई है मेरे गरीब खाने में, समझे मेरे ला।

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने कहा, राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने एच

0: कॉरिडोर पर एक दिन में 47 अतिरिक्त नमो भारत ट्रेन ट्रिप्स बढ़ाने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज प्याज और चीनी की उपलब्धता और इनके दामों को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कीमतों में आगे बढ़ोतरी की स्थिति में दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की संस्था नेफेड से प्याज व चीनी की खरीद कर उसे राजधानी के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। इन वस्तुओं की बिक्री नेफेड से प्राप्त कीमत के आधार पर की जाएगी, जबकि परिवहन आदि का खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही श्रीमती गुप्ता ने प्याज व चीनी की कीमतों में और वृद्धि की आशंका को देखते हुए विभाग को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत राजधानी के विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने आज H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों और वेक्टर जनित बीमारियों से निपटने के लिए दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में डॉ सिंह ने राजधानी में बीमारियों की स्थिति, सर्विलांस, अस्पतालों की तैयारियों, दवाइयों, टेस्टिंग सुविधाओं की उपलब्धता और जागरूकता तथा रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी दिल्ली में अब तक H1N1 के 2,308 मामले सामने आए हैं, जबकि वर्ष 2026 में इन्फ्लुएंजा A+B के अब तक लगभग 3,000 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी संबंधित विभागों को सार्वजनिक स्थलों और अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियों को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली कैंटोनमेंट और दिल्ली मेट्रो रेल निगम समेत सभी संबंधित एजेंसियों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने पर भी विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य एडवाइजरी को पूरी दिल्ली में भी लागू किया जा रहा है, जिससे जरूरी अनुपालन और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस बैठक में दिल्ली में डेंगू और मलेरिया की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वे श्वसन संबंधी सावधानियों और स्वच्छता के उपायों का कड़ाई से पालन करें, अस्वस्थ होने पर बेवजह दूसरों के संपर्क से बचें और बीमारी के लक्षण बने रहने या फिर गंभीर होने की स्थिति में तुरंत समय पर डॉक्टरों से सलाह और इलाज कराएं। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा की प्रमुख युवा संपर्क पहल के अंतर्गत आयोजित संवादात्मक सत्र के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण तब होता है जब इसके युवा नागरिक उसकी संस्थाओं, उसके विचारों और प्रक्रियाओं से सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा संचालित ये सुव्यवस्थित पहल विधायी प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाने तथा जेन जी के बीच गहरी नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का प्रयास है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज मॉडल टाउन स्थित नैनी झील में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक छिड़काव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री वाही ने कहा कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव एक आधुनिक और कारगर उपाय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली को मच्छर जनित बीमारियों से मुक्त रखने के लिए फील्ड स्तर पर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के विद्युत मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि बैठक के दौरान राजधानी के पावर ट्रांसमिशन ग्रिड को मजबूत करने तथा प्रत्येक घर में बिना रुकावट बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बताया कि दिल्ली जल बोर्ड को एशियाई विकास बैंक से 2,500 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी गई है। एक प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्वीकृत राशि का उपयोग करते हुए जल बोर्ड ने वजीराबाद जल शोधन संयंत्र में जल आपूर्ति सुधार परियोजना के पैकेज 1 के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये और पैकेज 2 के लिए 900 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों को मंजूरी दी गई। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के लिए लगभग 11,400 करोड़ रुपए के निवेश को आगे बढ़ाया गया है, जिससे 36 लाख से ज्यादा

0: दिल्ली वासियों को बेहतर जल आपूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा।
1: अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से दिल्ली शहर में यूजीआरस को बनाना, वाटर लाइन नेटवर्क को खड़ा करना और डीएमए मीटरिंग की पूरी प्रक्रिया दिल्ली में शुरू करना, इन कामों को किया जाएगा। और इसके लिए दो जोन विशेष रूप से आइडेंटिफाइड किए गए हैं, वेस्ट जोन और साउथ वेस्ट जोन, जिसमें वेस्ट जोन में ट्रांसफॉर्मिंग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ आर्ट वाटर मैनेजमेंट, इसके लिए 4,330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
0: इसके साथ ही अनधिकृत पानी कनेक्शनों को नियमित करने की योजना भी 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज निर्माण उद्योग बचाव मोर्चा के सदस्यों और निर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान श्रीमती गुप्ता ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के निर्माण गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं और सुझावों को सुना। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास दोनों ही दिल्ली की आवश्यकताएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योग जगत मिलकर ऐसे व्यावहारिक समाधान पर कार्य करेंगे जिससे प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास प्रभावी हो और रोजगार तथा विकास की गति भी बनी रहे। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक डेटा को व्यवस्थित, भरोसेमंद और एआई के इस्तेमाल के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरुआत की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डेटा के बेहतर इस्तेमाल के जरिए दिल्ली में तथ्यों के आधार पर फैसले लेने, लोगों की जरूरत के अनुसार पहले से सेवाएं उपलब्ध कराने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने वाली सरकारी व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि एआई का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है।
2: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
0: कृषि शिक्षा के बारे में श्री चौहान ने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में अन्य किसानों के बीच दी जानी चाहिए। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत के डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.K के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.K की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
3: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
4: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.K प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
3: स्पिरिट ऑफ इंडियाज जर्नी।
0: श्री सिंधिया ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रतिरोधी संचार नेटवर्क में C.K के नवाचारों पर भी प्रकाश डाला। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज दिल्ली विद्यालयों के लिए 58वें युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 के पुरस्कार वितरित किए। इस प्रतियोगिता में बाल भारती स्कूल प्रीतमपुरा ने पहला स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में कुल 40 स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। हमारे संवाददाता ने कुछ पुरस्कार विजेताओं से बात की जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए।
5: मेरा नाम ऋषि त्रिखी है और मैंने प्रधानमंत्री की जो भूमिका है तो मैं बस ये चाहता था कि जितनी कॉन्फिडेंस से और जितनी एक लीडरशिप क्वालिटी जो हमारे प्रधानमंत्री में है वो मेरे में भी आए और वो स्टेज पर भी दिखे।
6: नमस्कार, तो मेरा नाम यशी यादव है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल ने पहली बार यूथ पार्लियामेंट के इस अवसर पर पार्टिसिपेट किया है एंड हम रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड एंड द ट्रॉफी फॉर न्यू एंट्रेंस स्कूल जीता है।
7: मैंने यूथ पार्लियामेंट में

0: एज अ सांसद की भूमिका निभाई थी और मैंने क्वेश्चन आवर में एक सवाल पूछा था। इस भूमिका से मुझे पार्लियामेंट के वर्किंग के बारे में तो पता चला ही है और प्लस जो ऑपोजिशन का जो भूमिका है पार्लियामेंट में वो कितनी अहम है इसका भी पता चला है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बताया है कि कल दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 1 सितंबर से प्रति माह 2500 रूपये सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में अब तक लगभग 9,13,000 महिलाओं ने अपना पंजीकरण करवाया है और 6,50,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनाना है। रक्षाबंधन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC 27 और 28 अगस्त को दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में 47 अतिरिक्त नमो भारत ट्रेन ट्रिप्स बढ़ाएगी। ये अतिरिक्त ट्रिप्स त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए चलाई जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: यह निर्णय रक्षाबंधन के दौरान लोगों की यात्रा को और सुगम तथा आरामदायक बनाने के लिए लिया गया है। NCRTC ने बताया कि इन अतिरिक्त ट्रिप्स के साथ दोनों दिन नमो भारत ट्रेनें हर 8 मिनट में उपलब्ध होंगी। इन्हें पूरे नमो भारत कॉरिडोर यानी सराय काले खां से मोदीपुरम स्टेशन के बीच परिचालित किया जाएगा, जिससे त्योहार के समय लोगों के लिए यात्रा के अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही महिलाओं को इन अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स से विशेषकर लाभ होगा। इससे उनका प्रतीक्षा समय कम होगा, सीट की उपलब्धता बढ़ेगी और उनका समग्र अनुभव बेहतर होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का आरंभ किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने इस निर्माण कार्य की नींव रखी। ये निर्माण फेज 5A के अंतर्गत जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम मार्ग तक मौजूदा मेजेंटा लाइन के विस्तार के एक भाग के रूप में किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि ये मेट्रो स्टेशन एक भूमिगत स्टेशन होगा और महत्वपूर्ण इंटरचेंज सुविधा प्रदान करेगा। इस स्टेशन को भूमिगत सबवे के माध्यम से मौजूदा शिवाजी स्टेडियम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन स्टेशन और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के साथ निर्बाध रूप से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद ए मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद ए मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राजधानी दिल्ली में आज तेज बारिश हुई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया है कि कल बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने कहा राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया दिल्ली जल बोर्ड को एशिया विकास बैंक से 2,500 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी मिली। दिल्ली सरकार कल दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान करेगी और रक्षाबंधन के दौरान राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में 47 अतिरिक्त नमो भारत ट्रेन ट्रिप्स बढ़ाने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना की वृद्धि हुई है।
1: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को

0: 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों से उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है, ताकि भारत में निवेश करने वाली उच्च तकनीक कंपनियों को उपकरण और कलपुर्जे समय पर मिल सकें। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक संबंधों पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग OBC क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार के लिए सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बूथ स्तरीय अधिकारियों से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने की अपील की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने ईद ए मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद ए मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. National Security Advisor Ajit Doval today held special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing on the India-China boundary issue and improvement of relations between the two countries. Prior to the talks, Doval called on Chinese Vice President Han Zhang. In a social media post, the Indian embassy said the two leaders discussed ways to strengthen peace and tranquility in the border areas and further improve bilateral ties across economic, political and multilateral fora. The Unified Payments Interface, UPI, which was launched on this day in 2016, has completed 10 years of transforming digital payments in India. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition, with the system now operational across 11 countries. The UPI has surged almost 13,000-fold in transaction volume. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of Unified Payments Interface. In a social media post, the Prime Minister described UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore rupees to nearly 314 lakh crore rupees during the same time period. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held wide-ranging talks with his Russian counterpart Sergei Lavrov in Moscow last night. In a social media post, Dr. Jaishankar said they discussed bilateral cooperation and multilateral issues. The state-run TASS news agency said the current situation surrounding Ukraine, Iran and Afghanistan was also discussed by the two foreign ministers. Earlier, Dr. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin as the two sides discussed economic ties, focusing on key areas such as trade, energy, fertilizers, and nuclear cooperation. India and New Zealand have reaffirmed their commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific region in the second edition of Defence Strategic Dialogue, which took place in Wellington yesterday. The high-level talks focused on advancing maritime security, joint military training and overall defence cooperation. Defence Ministry said in a statement that both delegations engaged in comprehensive discussions to advance the newly elevated strategic partnership. The Supreme Court today agreed to consider setting up a special bench to hear the centre's plea on OBC creamy layer criteria. The centre is seeking clarification on the applicability of the March 11th judgment of the Apex Court for candidates of the Civil Services Examination 2025. The Department of Personnel and Training, DOPT, has sought directions allowing the government to proceed with service allocation for the 958 candidates recommended by the Union Public Service Commission. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar has said booth-level officers are the foundations of India's democracy. The Chief Election Commissioner, who is on a two-day visit to Uttar Pradesh, attended an interaction program with around 500 booth level officers in Lucknow today. Defence Minister Rajnath Singh has approved the transfer of DRDO developed technologies of all conventional missile systems to the Indian defence industry for production within the country. The initiative aims to enhance operational capability, reduce import dependence and increase domestic value addition. President Draupadi Murmu has greeted people on the eve of Eid-e-Milad-un-Nabi. In her message, the president said that the Eid-e-Milad-un-Nabi is an occasion to recall the preachings of Prophet Muhammad. In men's cricket, host Sri Lanka were 265 for 8 against India in their first innings as rain forced early stumps on day 3 of the Colombo test. Sri Lanka are trailing by 238 runs. Sonal Dinusha on 85 and Lahiru Kumara on 8 were at the crease. For India, Prasidh Krishna and Manu Sodar have bagged 3 wickets each. Earlier, visitors declared their first innings at 503. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का फिल्म गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और ये वक्त है मधुरिमा का। मधुरिमा में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज जिस राग का जिक्र होगा इस प्रोग्राम में वो राग है राग देश। आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित ये गीत जो खमाज थाट से उत्पन्न हुआ है।

जी हाँ, रात देश की जो जाति है वो औरव संपूर्ण है। इसका वादी स्वर रे और संवादी स्वर प है, और जो गाने का समय है रात्रि का दूसरा पहर है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके

0: अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले आपने जो गीत सुना वो फिल्म नीला आकाश से था, और मधुरिमा में आज आप राग देश के बारे में जान रहे हैं, और राग देश से जुड़े हुए या उन राग पर आधारित गीतों को आप सुन रहे हैं। अगर हम राग देश के आरोह की बात करें तो सारे ग म प नी सा और अवरोह स नी ध प म ग रे सा पकड़ रे म प ध प ध प म ग रे ग सा है। आइए एक और बेहतरीन सा गीत इस राग पर आधारित।

जी हाँ, धीरे धीरे वक्त कैसे सिमटता चला जाता है पता ही नहीं चलता। फिलहाल जो आप गीत सुनेंगे वो इस प्रोग्राम का अंतिम गीत होगा। जाने से पहले बस एक छोटी सी जानकारी इस राग के बारे में। इस राग की प्रकृति बहुत चंचल है और देशभक्ति और प्रेम रस से बहुत ज़्यादा परिपूर्ण है। इसमें निषाद, शुद्ध और कोमल का प्रयोग किया जाता है। अवरों में शुद्ध निषाद और अवरों में कोमल निषाद लगता है। आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम का ये अंतिम गीत। मैं विमलेश फिलहाल के लिए आपसे अनुमति चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शक्ति के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना। शक्ति, आज किन खबरों के साथ अपने इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रखे हैं?
1: नवीन, आज डाली जाएगी नजर सबसे पहले क्रिकेट के मैदान पर, जहां कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की स्थिति काफी मजबूत हो गई है और श्रीलंका पे फॉलो ऑन का खतरा बना हुआ है।
0: शक्ति, वहीं ईस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और नॉर्थ ईस्ट जोन को पारी से 210 रन से हरा दिया है। वहीं त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की स्टार भारतीय जोड़ी बैडमिंटन के विश्व रैंकिंग में 27वें स्थान पर पहुंच चुकी है। और

0: नवीनगर चेस की बात कर ली जाए तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में पहुंच गए हैं।
1: तो आज के इस अंक में इन चारों खबरों पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा खेल जगत की दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है इस पर भी हम आपको बताते चलेंगे। शक्ति कोलंबो में भारत की स्थिति जो है अब आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में मजबूत होती हुई नजर आ रही है। श्रीलंका ने तीसरे दिन का आज खेल समाप्त होने पर पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। दिन के खेल के समापन के समय दिनुषा पचासी और लाहिरी कुमारा 8 रन बनाकर क्रीज पर थे।
0: वहीं पर नवीन श्रीलंका को अभी भी फॉलो ऑन टालने के लिए 39 रन की दरकार है। हालांकि आज के खेल में सबसे बड़ी चीज उनके लिए यही रही कि पसिंदु सूर्या बंदारा ने 80 रन की शानदार पारी खेली और काफी हद तक पारी को आगे बढ़ाया। भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इस तरह से श्रीलंका अभी भी भारत से 238 रन पीछे है। आइए पहले सुनते हैं आज के दिन के खेल पर ये रिपोर्ट।
2: भारतीय गेंदबाज सोनल दिनुषा की अगुवाई में श्रीलंका के पुछल्ले बल्लेबाजों के संघर्ष को खत्म करने में नाकाम रहे। इससे बारिश और खराब रोशनी के कारण आज तीसरे दिन का खेल जल्दी समाप्त होने तक मेजबान श्रीलंका ने 8 विकेट खोकर 265 रन स्कोर बोर्ड पर लगा लिए थे। श्रीलंका ने आज 2 विकेट पर 8 रन से आगे खेलना शुरू किया और पहले सत्र में 122 रन जोड़े। बारिश के कारण देर से शुरू हुए दूसरे सत्र में मेजबान टीम ने 3 विकेट गंवाते हुए 86 रन और जोड़े। चायकाल तक 7 विकेट पर 216 रन के स्कोर से आगे खेलते हुए श्रीलंका के जल्दी सिमटने के आसार दिख रहे थे। दिनुषा ने हालांकि लगातार तीसरी पारी में 50 से अधिक रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया। उन्होंने केशारा नुवांता के साथ 8वें विकेट के लिए 57 रन जोड़े और लाहिरू कुमारा के साथ 9वें विकेट के लिए अब तक 35 रन की अटूट साझेदारी की। दिनुषा दिन का खेल समाप्त होने तक 85 रन बनाकर नाबाद थे। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने 3-3 विकेट जबकि रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिया। विशाल शर्मा स्पोर्ट्स कैन।
1: शक्ति, इस मैच में एक बार फिर हम सबकी उम्मीदें जो थी वो मानव सुथार पट्टी की हुई थी लेकिन इस बार वो कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि 21 ओवर उन्होंने फेंके हैं जिसमें उन्होंने 83 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 3 विकेट हासिल किए हैं लेकिन जहां एक तरफ ऐसा लग रहा था कि जब शुरू के 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे श्रीलंका के तो लग रहा था कि शायद भारतीय टीम जो है इन्हें और जल्दी समेट लेगी, लेकिन पसिंदु सूर्या बनांद्रा उन्होंने 80 रन का जो योगदान दिया और साथ में इस समय जो बैटिंग कर रहे हैं दिनुषा 85 रन पर, उन्होंने भी बेहतर योगदान देते हुए श्रीलंका को एक अच्छी स्थिति में, अगर उनके हिसाब से कहें एक बेहतर स्थिति में ला दिया। और भारत के हिसाब से कहें तो शायद वो उन्हें हमें फॉरवर्ड की दरकार की तरफ ले चलेंगे।
0: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा नवीन, क्योंकि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी ने एक वक्त पे अपना अटैक कायम किया था, कह सकते हैं कि श्रीलंका के बल्लेबाजों से अधिक इस गेंदबाजी को किसने परेशान किया है तो वो है इस मैदान में बारिश ने, जिसने लगातार खलल डाला और उस रिदम को तोड़ने का काम किया है। आपने मानव सुधार का जिक्र किया, अपना तीसरा मैच ये खिलाड़ी खेल रहा है, आज 5वीं पारी और 20 विकेट ले चुका है, तो कह सकते हैं मोमेंटम में है। उम्मीद है कल भारतीय गेंदबाजों की मनोस्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी, जल्दी से जल्दी टीम को ऑल आउट किया जाए और फॉल ऑन देकर के आगे भारत तो किस तरह से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाता है मैच को।
1: शक्ति, भारतीय गेंदबाजी पर अगर हम एक नजर डालें तो एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद जो भारतीय स्पिनर हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विकेट्स आप देखेंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा को भी 3 विकेट मिले और मानव सुथार को भी 3 ही विकेट हासिल हुए हैं। इसका सीधा सीधा असर यह है कि कल कोई भी गेंदबाज अच्छा फायदा उठा सकता है क्योंकि आज बारिश रही है जिसमें लगातार खेल में रुकावट पैदा की है और कल सुबह जब खेल आरंभ होगा तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी श्रीलंका को पवेलियन भेजा जाए।
0: जी बिल्कुल, इसी पे नजर होगी और किस तरीके से इस मुकाबले के साथ साथ एक अच्छी शुरुआत टेस्ट में हो अफगानिस्तान के बाद एक और क्लीन स्वीप की तरफ भारत बढ़ता हुआ नजर आए।
1: कल उम्मीद है कि पंत को मैदान में उतारा जाएगा क्योंकि आज तीसरे दिन उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की और उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने यह जिम्मेदारी संभाली थी क्योंकि उनके कंधे पर जो है वो चोट लगी हुई थी। और उम्मीद करते हैं कि कल जब खेल आरंभ होगा और जब तक खेल प्रेमी अपने टीवी को ऑन करेंगे या क्रिकेट कमेंट्री सुनेंगे तब तक जो है पवेलियन में जा चुकी होगी श्रीलंकाई टीम और उम्मीद है कि भारत इस टेस्ट मैच को कल ही समाप्त करने की कोशिश करेगा। वही बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी की। ईस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। बेंगलुरु में क्वार्टर फाइनल में शाहबाज अहमद के शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत ईस्ट जोन ने नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ पारी और 210 रन से जीत हासिल की है। सेमीफाइनल में अब ईस्ट जोन का मुकाबला सेंट्रल जोन से होगा। यह मैच 30 अगस्त को खेला जाएगा और शक्ति ये एक बहुत बड़ा

0: टूर्नामेंट है और उम्मीद की जाती है कि इस टूर्नामेंट के बाद ही जो है कई खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट टीम में, खासकर क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में आने का अवसर मिलता है। और अगर हम बात करें, अगर आईपीएल को इससे कंपेयर करें, तो आज भी मुझे लगता है कि अगर मानव सुथार जैसे खिलाड़ी बिना आईपीएल में शिरकत किए हुए या बिना आईपीएल में अपना जलवा दिखाए हुए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हो सकते हैं, तो ऐसी दिलीप ट्रॉफी जैसे जो हमारे घरेलू टूर्नामेंट हैं उसमें से भी कई खिलाड़ी निकलकर हमारी टीम में आ सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। आईपीएल एक तरफ जहां पे ग्लैमर से भरपूर टी20 का रोमांच है, दूसरी तरफ रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, आपने मानव सुथार का जिक्र किया, अभी इसके पहले रणजी ट्रॉफी संपन्न हुई, आकिब नवी एक स्टार के रूप में उभरे और पूरा देश पूछ रहा था। तो आप ये अनुमान लगाइए कि आईपीएल में भी खिलाड़ियों को जो चुना जा रहा है उसके लिए एक पैमाना दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी बनते हुए नजर आ रही है।
0: जी, और घरेलू क्रिकेट से अगर आप खिलाड़ी चुनकर लेकर आते हैं तो लगता है कि हमारे पास अभी वो खिलाड़ी बचे हुए हैं जो एक क्लासिक क्रिकेट खेलते हैं, ना कि सिर्फ आईपीएल का सिर्फ गेंद और जिसमें सिर्फ बॉलर बॉल ही डाल रहा है और लगातार सिर्फ उसे बाउंड्री का तरफ ही अपना रुख करना पड़ता है, क्योंकि हर गेंद जो है, दर्शक भी चाहते हैं कि हर गेंद बाउंड्री के पार हो, लेकिन अगर आपको क्लासिक खेल देखना है तो आपको घरेलू क्रिकेट को थोड़ा और बढ़ावा देना पड़ेगा। नजर कर लेते हैं उधर दूसरे मैच में, दूसरे क्वार्टर फाइनल में मुशीर खान और ऋतुराज गायकवाड़ के शानदार अर्धशतक की बदौलत वेस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में मजबूत स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन नॉर्थ जोन ने लगातार विकेट चटकाकर तीसरे दिन के मुकाबले में वापस कर लिया है अपने आप को।
1: जी बिल्कुल, और जीत के लिए 287 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पश्चिम क्षेत्र की टीम एक समय अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 195 रन पर थी नवीन, और आसानी से लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 70 गेंदों पर 66 रन की एक पारी खेली, लेकिन वो आउट हुए और वेस्ट जोन अभी भी जीत से 67 रन दूर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि महज 3 विकेट हाथ में है।
0: जी, क्रिकेट प्रेमियों के लिए कल का दिन बेहद रोमांच से भरपूर रहेगा, आपकी नजर दिलीप ट्रॉफी पर भी रहेगी और कोलंबो में तो हम आपको एक ऐसा मैच देखने की हम लोग कोशिश करेंगे जहां भारत जो है जीत की ओर अग्रसर होगा। क्रिकेट के मैदान के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं बैडमिंटन स्टेडियम की ओर, जहां BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की स्टार भारतीय जोड़ी BWF की ताजा रैंकिंग में 12 पायदान ऊपर पहुंचकर गई हैं, और ये स्टार महिला डबल्स के 39वें स्थान पर था और अब 27वें स्थान पर आ गया। बेहतर खेल का प्रदर्शन किया त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने। अगर हम ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के बाद अगर हम किसी जोड़ी को देखते हैं शक्ति, तो यही एक जोड़ी नजर आती है, और इससे उम्मीदें भी करी जा रही हैं कि भविष्य में ये जोड़ी और बेहतर खेल दिखाएगी और रैंकिंग के साथ साथ अगली बार हमारे को एक पदक और ऊपर मिलने की कोशिश होगी।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि पदक का रंग और बेहतर चमक बिखेरता हुआ नजर आएगा और भारतीय बैडमिंटन में किसी नए तारे की तरह ये जोड़ी चमकते हुए नजर आ रही है। नवीन, एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा, आज 25 अगस्त का दिन है और आज ही के दिन आज से 7 साल पहले पीवी सिंधु ने पहली बार BWF विमेंस सिंगल्स का खिताब जीता था, तो एक महत्वपूर्ण दिन है और उस दिन एक महत्वपूर्ण और उपलब्धि इस महिला डबल्स जोड़ी ने जोड़ी है।
0: अश्विनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा के बाद शक्ति ऐसा लगता था कि शायद महिला डबल्स में कोई भारतीय जो, हालांकि भारतीय जोड़ी पनप भी नहीं पा रही थी, बहुत बेहतर खेल का प्रदर्शन नहीं कर रखे थे, लेकिन जिस तरह से इस जोड़ी ने उम्मीदें जताई हैं, मेडल की उम्मीदें जताई हैं और लगातार जिस तरह से इन्होंने खेल का प्रदर्शन किया है, उससे लगता है कि भारतीय जोड़ी भविष्य के अंदर एक अच्छे सितारे के रूप में चमकेगी।
1: और अब बात की जाए शतरंज की, जहां भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के सेंट लुइस में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया।
0: प्रज्ञानंदा ने क्लासिकल और रैपिड गेम के बाद ही फाइनल में जगह पक्की कर ली थी और इसके बाद खेले गए 3 ब्लिट्स गेम हारने के बावजूद उनके कुल स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ा और आज खिताबी मुकाबले में प्रज्ञानंदा का सामना मौजूदा चैंपियन अमेरिका के फैबियानो कारुआना से होगा। और अब बात खेलो इंडिया स्कीम की। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन राव ने कहा है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में खेल को शामिल करना कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी हमारी व्यवस्था का हिस्सा रहा है। श्री राव ने संवाददाताओं से कहा कि हम पाठ्यक्रमों में खेल को वापस लाने का काम कर रहे हैं।
2: Integration of sports in schooling curriculum is not something new to our nation. Gradually, I think we have moved on and there has been some shift in the alignment and priorities. I will not be able to give a timeline, but I would like to get it done as early as possible. Simply because if every child in the school is able to go to the playground and play, I think that will help the country in a very transformative manner to become a good sporting nation.
1: इस अवसर पर श्री राव ने यह भी कहा कि खेलो इंडिया की नई स्कीम के माध्यम से हम कई स्तर पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और जिलों के स्तर पर ज्यादा प्रतियोगिताएं और लीग शुरू करना अधिक बच्चों और खिलाड़ियों के लिए स्पोर्टिंग इकोसिस्टम से जोड़ने का काम करेगा.
2: In the new scheme of Khelo India, revamped scheme, we are now working on multiple layers. So one is to introduce more competitions and leagues at the level of schools, districts, universities, colleges, which will actually engage more number of children and athletes in sporting ecosystem, as well as they will get more opportunity to continue to play. Secondly, we are also thinking in terms of having Khelo India Utkrisht Vidyalay. These will be already existing schools, but they would have a very heavy focus on good quality sporting training program, and we'll have Khelo India feeder schools. Feeder schools will be able to feed talented athletes and budding students into the sporting ecosystem.
0: और अब आपको लिए चलते हैं टेनिस के मैदान की ओर. न्यूयॉर्क में सीजन के आखिरी टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का आगाज क्वालिफायर मुकाबलों के साथ हो चुका है, जहां कम रैंकिंग वाले खिलाड़ी मेन ड्रॉ में पहुंचने के लिए क्वालिफाइंग राउंड पार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं. और शक्ति, हम अपने सुनने वालों को बताते हैं कि चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन. यूएस ओपन आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है, जो आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच में खेला जाता है और ये हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट होता है.
1: जी बिल्कुल, और जितना खास ये टूर्नामेंट है उतनी ही खास इसकी इनामी राशि होती है. सभी इवेंट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए कुल 108 मिलियन अमरीकी डॉलर की इनामी राशि रखी गई है नवीन, जिसमें पुरुष और महिला सिंगल्स चैंपियन को $5.5 मिलियन मिलेंगे. तो आज जानते हैं कि टेनिस की दुनिया के इस रोमांचक टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में इस बार कैसी टक्कर देखने को मिलेगी.
3: ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से कार्लोस अल्कराज और यानिक सिनर ने किसी बड़े टूर्नामेंट में एक साथ हिस्सा नहीं लिया है. मौजूदा चैंपियन अल्कराज ने यूएस ओपन में वापसी की पुष्टि की है, जबकि दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर टूर्नामेंट से हट गए हैं. 2008 में रोजर फेडरर के बाद से किसी भी पुरुष खिलाड़ी ने सिंगल्स का खिताब सफलतापूर्वक डिफेंड नहीं किया है. 23 वर्षीय कार्लोस अल्कराज जीत के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं. अब नंबर वन सीड अलेक्जेंडर ज्वरेव होंगे, जो पिछले दो ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं और फ्रेंच ओपन में जीत हासिल कर चुके हैं. ओलंपिक चैंपियन नोवाक जोकोविच भी इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे. राफेल जोडर और लर्नर टीएन जैसे युवा खिलाड़ी अगर टूर्नामेंट में आगे तक जाते हैं तो टॉप 10 में जगह बना सकते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन के रनर अप फ्लेवियो कोबोली भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्टैंड.
1: नवीन, 30 तारीख से इस महीने की मेन ड्रॉ शुरू हो जाएंगे, कितनी उम्मीदें इन खास खिलाड़ियों से होंगी? स्टार्स हमेशा फेवरेट होते हैं.
0: उम्मीद करते हैं कि हम अपने तमाम उन खिलाड़ियों को जो हमारे फेवरेट हैं, अल्कराज को हम खेलता हुआ देख पाएंगे और ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं. और विंबलडन, क्योंकि ये एक आखिरी लास्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, तो हर कोई खिलाड़ी इसको जीत के साथ इसको अपने इस सीजन के एंड को इसको करने की कोशिश करेगा. और अपने सुनने वालों को हम एक बार फिर बता दें कि विंबलडन 1877 में शुरुआत हुई थी और यूएस ओपन जो था 1881 में, एक क्रोनोलॉजी है शक्ति, फ्रेंच ओपन 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ था. 30 अगस्त से इस प्रोग्राम की या कहने की इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी और हमारी नजर उस पर लगातार रहेगी. स्पोर्ट्स स्कैन में हम लगातार आपको ताजा तरीन जानकारी देते रहेंगे. बहरहाल, अब वक्त हमें बिल्कुल इशारा नहीं कर रहा है कि हम इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं. चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की स्थिति मजबूत हो चुकी है. श्रीलंका पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है.
1: जी बिल्कुल, और ईस्ट जोन की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है दिलीप ट्रॉफी के. नॉर्थ ईस्ट जोन पर पारी और 210 रन की जीत बनाते हुए.
0: आज के संक में बस इतना ही. मुझे यानी नवीन और शक्ति को जो इजाजत. नमस्कार.
4: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. यूपीआई का एक दशक पूरा. दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में

0: प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: आज दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से कर, ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: यूपीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
0: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
5: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
6: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2032

0: इस तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झिंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
1: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
2: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधाननगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि यह प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. UPI completes a decade making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for every Indian. Defence Minister Rajnath Singh says missile technologies developed by DRDO to be used by Indian companies to boost domestic production. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representative talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal pitches the country as a global data center hub, highlights $200 billion investment commitments from global hyperscalers. And in men's cricket, host Sri Lanka trailed by 238 runs against India in first innings as rain forces early stumps on day 3 of Colombo Test. The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as

0: 만탄.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सूखे से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: आनंद शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: आनंद जी। अगर हम सूखे की बात करते हैं तो इसे हर बार की आने वाली आपदा को मानकर राहत देने के बजाय एक ऐसे जोखिम के रूप में देखें जिसके पहले से तैयारी की जा सकती है, तो हमारी रणनीति में किस तरह से बदलाव आना आवश्यक है और भारत इस सोच को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहा है?
3: जितने भी हमारे जिसे कहते हैं जोखिम है, चाहे वो बाढ़ हो, अत्यधिक बारिश हो या फिर कम बारिश, सूखा, तो ये सूखा एक तरह का जोखिम है। और हम ये देखें तो ये अक्सर हमारे यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में मॉनसून सीजन में देखने को मिलता है, या सूखा हो या फिर एक लॉन्ग ड्राई स्पेल, यानी जब कभी लंबे समय से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बारिश ना हो, तो वो उस फॉर्म में देखने को मिलता है। और यदि उसकी तैयारी हो तो हम उसको झेल सकते हैं। तो इसीलिए जो है ओवर द ईयर्स तैयारी

0: फोकस जो है जो हमारा नया सिस्टम उसमें प्रिपेयर्डनेस पे फोकस है पहला, दूसरा फोकस है न्यूनीकरण पे, मिटिगेशन पे, कोई भी जोखिम है उसको न्यूनीकरण करना, उसको कम करना, और तीसरा है आपका अर्ली वार्निंग तो है ही प्रिपेयर्डनेस में, और साथ में सिस्टम को रेजिलियंट बनाना है। और इसमें हमारा जो इंडिया है उसमें हमने खासकर सूखे के ऊपर ड्राउट मैनुअल बनी है, बहुत अच्छी मैनुअल, और एक एसओपी बनी है किस तरह से कि जैसे ही मॉनसून शुरू होता है तो किन पैरामीटर्स को हमने फॉलो करना है, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप है जो मिनिस्ट्री में बना हुआ है जहाँ के सारे एक्सपर्ट मिलते हैं और स्टेट के ऑफिशियल्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहते हैं, तो उनको हर हफ्ते बताया जाता है कि भाई बारिश अब कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो उससे तैयारी रहती है, और ये तैयारी जो है हम बाकी लोगों से भी शेयर कर सकते हैं।
1: आनंद जी, आज सूखे का जो असर है सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा पर उसका असर पड़ता है, खेती, जैव विविधता, अर्थव्यवस्था, आपने भी वो बात कही है, तो आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में सूखा दुनिया के सामने है, सिर्फ हमारी बात नहीं पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी विकास चुनौती बन सकता है या बन चुका है?
0: देखिए, सूखा तो हर समय से हमारे लिए चैलेंज रहा है, पर हमने उस चुनौती को काफी हद तक टैकल कर लिया है, यानी कि हमने इरिगेशन को भी बढ़ावा दिया है, हालांकि और इरिगेशन जो हमारे को यदि हम सुधार कर लेते हैं, सबसे बड़ी है कि ज्यादातर किसान जो है हमारे जो सिंचाई पे निर्भर है, सिंचाई है उनके पास, तो उनके यहाँ कोई समस्या नहीं है। आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इवन राजस्थान का कुछ हिस्सा, जब से इरिगेशन उनके पास है तो बारिश कम भी हो जाए तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, बहुत एक बड़ा हिस्सा है जो कहते हैं वर्षा आधारित खेती करते हैं, जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर होता है, वहां पे सरकारों को इरिगेशन पहुंचाने की जरूरत है एक, दूसरा वहां पर किस तरह की फसलें लगाए जाएं, क्रॉपिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू द एग्रो क्लाइमेट, और तीसरा जो है वहां पर लाइफ सेविंग इरिगेशन। जैसे कि आप देखेंगे सदर्न इंडिया में पहले पॉन्ड इरिगेशन बड़ा कॉमन था, हर जगह तरह तरह के पॉन्ड होते थे, तो हमारे एक सिस्टम था कि कैसे तालाब बनाए जाते थे और उनको रखरखाव किया जाता था और उनसे ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था और खेती के लिए भी पानी लिया जाता था। तो आज पॉन्ड्स को रिवाइव करने की जरूरत है, उन नदियों को रिवाइव करने, तो जो हमारी पुरानी नदी है उनको रिस्टोर करना है, तालाबों को रिस्टोर करना है, तो ये यदि हम सब चीजें करते हैं और एग्रो क्लाइमेट आधारित खेती करते हैं और समय समय पे जो मौसम विभाग मौसम आधारित कृषि सलाह देता है वो किसानों तक पहुंचाते हैं, तो ये हम सारी चीजों को चुनौती रहेगी, मगर हम टैकल कर रहे हैं
1: बिल्कुल
0: और अच्छे से कर रहे हैं, और जैसे जैसे तकनीक और बढ़ती जाएगी हम और अच्छा करेंगे।
1: आनंद जी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा ये है कि अब हमारा लक्ष्य राहत के बाद प्रतिक्रिया नहीं बल्कि तैयारी और रोकथाम होना चाहिए, तो आपके हिसाब से हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो इस बदलाव को जमीनी स्तर पर लागू करना कितना आवश्यक है, क्या क्या इसके लिए हमें चीजें चाहिए और कैसे कोशिश की जाती है, और इसमें भी अगर कोई चुनौती है तो कैसी है?
0: देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, मैंने भी उनके पढ़ रहा था स्पीच का, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं उसमें। सही सीधी सी बात यह है कि देखिए, आपके पास तैयारी अच्छी है तो सबसे बढ़िया बात है। पहले क्या होता था, रिलीफ पे जोर होता था, रिएक्शन करते थे, रिएक्टिव था, अब हम हो गए प्रोएक्टिव, यानी कि पूरा फोकस है प्रिपेयर्डनेस पे। प्रिपेयर्डनेस वो मौसम विभाग से चालू हो गई है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को पता है कौन से बीज लगाने हैं, तो जब सारी तैयारी आपकी है, आपने समय समय ये भी बता दिया कि अगले 15 दिन बारिश नहीं होने वाली, किसान को अब पता है कि मुझे क्या करना है, सिंचाई है उसके पास तो वो सिंचाई करेगा, और सिंचाई नहीं तो क्या करेगा, मल्चिंग करेगा, जो नमी बची है सॉइल उसको बचाएगा अपने आप को, और प्लस फसलें भी कौन सी लगाएगा जो कि ड्राउट रेजिलिएंट है। तो हमारे यहाँ पे निकरा एक प्रोजेक्ट है आईसीआर के अंदर, जिसके तहत में इस तरह की ड्राउट रेजिस्टेंट फसलें तैयार की गई हैं, तो वो तरह की वैरायटी किसानों उन क्षेत्रों में जो कि वर्षा आधारित खेती करते हैं तो उनको वो वाली फसलें और वैरायटीज लगानी है। साथ साथ में पॉन्ड इरिगेशन है, तो जहां जहां सरकारों को लगता है कि यहां पॉन्ड्स थे, आप टोपो शीट से देखिए, जहां भर दिए मिट्टी से तो खुलवाइए, और यदि है तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाइए, और इरिगेशन यदि कैनाल्स आप बनवा सकते हैं तो वो बनाइए। ये सब करते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम, और जो मौसम विभाग जो आपको समय समय पर वार्निंग दे रहा है वो और सुदृढ़ होता जा रहा है, तो ये सब चीजें तो होंगी। अब ये हो गई, मगर कई बार ऐसा भी होता है मौसम तो खराब होगा, ऐसा नहीं है कि मौसम हमेशा अच्छा रहेगा और हमेशा ही ठीक रहेगा, तो वो खराब होगा तो ऐसे में क्या होगा, किसान की फसल खराब हो सकती है, तो क्रॉप इंश्योरेंस है उसके लिए। ये सब हम करेंगे, अर्ली वार्निंग भी है, एश्योर्ड इरिगेशन भी है, अच्छी वैरायटीज है, ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी है, क्रॉप इंश्योरेंस है, ये सब है, और अच्छा प्राइस मिल रहा है उनको, सही फर्टिलाइजर, सही पेस्टिसाइड, सब चीजें मिलती है जो कि किया जा सकता है। उसके लिए क्या जरूरत है, गुड गवर्नेंस की, तो हमें गवर्नेंस बढ़ाना होगा।
1: आनंद जी, अगर हमें लंबे समय तक जल सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें जंगलों को बचाना होगा, जल ग्रहण क्षेत्रों को बचाना होगा और भूजल स्रोतों को भी बचाना होगा, यानी कि नए जल स्रोत बनाना भी आवश्यक, और साथ ही पुराने प्राकृतिक जल तंत्र को पुनर्जीवित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण, और खासकर हमारे देश में तो नदियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक दौर कहते हैं कि ऐसा भी रहा है जब हर गांव में तालाब वगैरह भी हुआ करते, तो आपको लगता है कि पुराने तालाब, झीलें और अन्य पारंपरिक जल स्रोत जो हमारे पास रहे हैं उनका सही से अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे लिए काफी प्रभावी समाधान हो सकते हैं समस्याओं के लिए?
0: बिल्कुल, मैंने एक स्टडी भी की थी रिसर्च, यदि आप उत्तराखंड में और हिमाचल में पेड़ कटेंगे तो दिल्ली में ज्यादा फ्लड आएगा।

0: यमुना में। सिमिलरली जम्मू कश्मीर ऊंचे पहाड़ों में आप कहते हैं पेड़ काटोगे तो श्रीनगर में फ्लड आएगा, तो ये जो फ्लड्स आपके हैं कैचमेंट एरिया के अंदर, ये आपके जंगल अच्छे हैं सुनिश्चित, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तो आपको फ्लड रोकेंगे आपका आना, दूसरा जो सॉयल इरोजन होता है उसको बचाएंगे, और तीसरा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। तो इसलिए हमें जितने भी कैचमेंट एरियाज हैं उसमें जंगलों को बचाना है बल्कि और बढ़ावा देना है। और जैसे आपने कहा कि हमारी नदियां जो हैं उनको हमारे यहाँ तो वर्शिप किया जाता है, चाहे वो गंगा हो यमुना सभी नदियों को, मगर एक तरफ तो हम वहां उनको वर्शिप कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस गंद भी उसमें डाल रहे हैं, तो गंद डालना बंद करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज नदियों का अपने आप को साफ करना आता है। तो यदि वो करते हैं उसमें जो एनक्रोचमेंट है नदियों के अंदर उसको हटा देते हैं, और जो तालाब है हमारे आप देख लीजिए, बेंगलोर में एक समय में 1700 तालाब होते थे, दिल्ली में मेरा ख्याल 900 तालाब होते थे, पर आप जाएंगे तो वो तालाब नहीं दिखेंगे आपको। तो वो तालाब आप टोपो शूट से ढूंढिए कहां कहां थे तालाब, और मुझे लग रहा है कहीं शहरों में ये शुरू हो चुका है, दिल्ली में भी मैं सुन रहा था, तो उन तालाबों को खोज रहे हैं और उनको जो यदि खराब हो चुके हैं तो उनको रिवाइव कर रहे हैं। तो ये सब रिवाइव करेंगे तो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ेगा, तो आपको तालाब से पानी भी मिल जाएगा, आपको जब खेती के लिए भी मिलेगा आपको ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। तो ये सब करने की जरूरत है बिल्कुल, और डेफिनेटली इसके साथ साथ जैसे मतलब वाटर हार्वेस्टिंग, यदि आप वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं तो वो भी एक आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। और ये सब प्रयास जो है यदि हम उसको सही ढंग से और सही मंशा से करते हैं तो डेफिनेटली इट विल गो ए लॉन्ग वे। हमारी जो वाटर सिक्योरिटी है उसको तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वाटर सिक्योरिटी होगी तो ही फूड सिक्योरिटी होगी आपकी, और पेड़ पौधे और वो भी बचेंगे, अन्य जानवर, तो बायोडाइवर्सिटी भी बचेगी आपकी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक है, यदि हमें वाटर सिक्योरिटी को बचा लेते हैं तो फूड सिक्योरिटी को भी हम बचा लेंगे, एनवायरमेंट सिक्योरिटी को भी दुरुस्त कर लेंगे, और हमारे खासकर बायोडाइवर्सिटी को भी बचा लेंगे।
1: आनंद जी, सरकार की ये सोच रही है कि सूखे की जो स्थिति होती है उससे निपटने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, और सरकार की योजनाओं में हम ये देखते भी हैं कि स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी को महत्व दिया जाता है। एक तरफ जहां सरकार जल संरक्षण को महत्व दे रही है, वनीकरण को बढ़ावा दे रही है, भूजल रिचार्ज पर भी बात हो रही है, तो दूसरी तरफ इमरजेंसी वाटर सप्लाई या फिर रोजगार जैसी राहत भी इसमें शामिल हो जाती है, कई सारी चीजें हैं, तो इनका संतुलन अगर बना करके हम देखें तो क्या लगता है कि कैसे परिस्थितियां बदल सकती हैं?
0: नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये ध्यान रखिए कि चाहे हम किसी गांव में जा रहे हैं, पहाड़ पे कहीं जा रहे हैं, तो लोकल लोग जो है उनको तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बड़ा जरूरी है। और वो पेड़ बचे हैं तो पहाड़ बचे हैं, यदि पेड़ नहीं बचेंगे तो पहाड़ नहीं बचेंगे। तो सबसे पहले हमेशा जरूरी है कि हमें ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनको तो कम्युनिटी को सुदृढ़ करना पड़ेगा, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी उनकी, और यदि हम ये कर पाते हैं तो नेचुरली हम काफी हद तक बहुत सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ, उसके साथ साथ ऐसी परिस्थितियां हमेशा आती है नेचर में, जब कभी कभी बारिश कम हो जाएगी, जब नेचुरली सूखा पड़ेगा तो उस समय क्या होगा, आपका फॉडर की कमी हो जाएगी, पीने की पानी की समस्या आ सकती है, तो ऐसे में उस समय सरकारों को तैयार रहना है, चाहे आपको टैंकर से पानी प्रोवाइड करना है, जानवरों के लिए फॉडर उपलब्ध कराना है, तो वो आप कर सकते हैं। मगर हाँ, ध्यान रखना है जैसे कि फॉरेस्ट है, पहले जब तक आम जनता का वहां के जो किसान लोग थे या जंगल के आसपास रहते उनको एक्सेस थी जंगल में जाने के लिए, तो उनको फॉडर की कभी कमी नहीं रहती थी। बाद में किस तरह के कुछ नियम ऐसे आए कि उनको जंगलों से दूर रख दिया गया, फिर बाद में फिर पहल हुई ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, नहीं आसपास के लोगों को भी इन्वॉल्व करना है, तो उनको जरूर इन्वॉल्व करके रखना पड़ेगा जिससे कि उनको घास फोडर वगैरह ये मिलता रहे, जिससे कि वो अपने जानवर भी ठीक रख सके। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि फसल तो आपकी खराब हो गई, मगर यदि आपके पास जानवर है उसको फोडर मिल रहा है तो आपको चलो दूध दही मिल जाएगा, उससे आप सर्वाइव तो कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वो बहुत जरूरी है।
1: आनंद जी, सूखे का संकट किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं, ऐसे में भारत जिस तरह से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और अपने अनुभव दूसरे देशों के साथ साझा करने की बात कर रहा है, तो इससे एक मजबूत वैश्विक ड्रॉट रेजिलियंस नेटवर्क बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल, आपके सामने एग्जांपल है कि इस बार जो एलनीनो फिनोमेना है, अप्रैल के आसपास ही बोल दिया गया था कि भी एलनीनो इस बार आने वाला है और हो सकता है कि सुपर एलनीनो हो, और इसकी जो मॉनिटरिंग है पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रही है, तो वो जो मॉनिटरिंग चल रही है हमारे पास भी रिसर्च का जो डेटा आ रहा है, ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो हमारी भी तैयारी ऐसी है। और खासकर जो ये WMO जो है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, FAO है, यूनाइटेड नेशंस है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलजुल के काम करती हैं, और उनकी जो रिसर्च निकलती है, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस निकलती हैं या कोई अर्ली वार्निंग है, वो सारे देशों में शेयर की जाती हैं। और जैसा कि पता है एलनीनो हमें ही नहीं प्रभावित कर रहा है, वो पेरू को भी प्रभावित कर रहा है, वहां पे ज्यादा इस समय इफेक्ट दिख रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया को भी प्रभावित कर रहा है, वो इंडोनेशिया को भी प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए ये एक तंत्र बनाया गया है कि ऐसा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना दिया जाए जो WMO इस तरह से बना रहा है और वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है, जिससे कि हर कंट्री के पास यदि अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, हालांकि अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज डेवलपिंग है जिनके पास हर खतरे के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम को इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी हजार अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना पड़ेगा और लोकल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे पास हैं वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर करें, जो उनके पास है वो हम उनसे लें, और यदि हम ये सब करते हैं तो किसी भी खतरे से हम निपट सकते हैं।

0: और आज मैंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो चुकी है, हमारे पास सैटेलाइट है, हमारे पास रडार है, हमारे पास ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के हब्स हैं, कम्युनिकेशन लाइंस हैं, तो फटाफट जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है कम्युनिटी के आखिरी लोगों तक। हाँ, ये सुनिश्चित करना है कि ये जो जानकारी है उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो क्रूशल माइल कनेक्टिविटी, कि कौन सा वाला एरिया है जहाँ पे अर्ली वार्निंग की जरूरत है, तो वहां तक उस कम्युनिकेशन के लिए आप चाहे कैसा भी करें, चाहे उसको टेलीविजन से, रेडियो से, यदि बिजली नहीं है तो कैसे करेंगे, तो आप कम्युनिटी रेडियो से कर सकते हैं। टोन अलर्ट हैंड वाइंडिंग रेडियो आ गए हैं जिसमें बिजली की जरूरत नहीं है, बैटरी की जरूरत नहीं है, आप उसको पीछे 100 बार वाइंड करिए, वो आप 1-1.5 घंटा चलेगा।
1: आनंद जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने कई बार पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया, वहां से धाराएं निकलती हैं, और भूजल को बचाने के लिए भी मैदानी क्षेत्रों में कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति अगर सूखे की स्थिति से बचने के लिए प्रयास करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
0: देखिए, इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे जो आसपास जो है, चाहे वो स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं, नाले हैं, इवन फ्लड स्टॉर्म जो ड्रेन्स होते हैं वो हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, इन सबको हमें कंजर्व करना है, बचा के रखना है, और उनकी जिसे कहते हैं ना, तो पहले एक सिस्टम था हमारे पास किस तरह के तालाब को बनाया जाना है और कैसे उसकी मेंटेनेंस होनी है, तो उसमें हमें लोकल लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। हर यदि क्षेत्र में हमारे पास तालाब हो तो आपका पानी उसमें भरा रहेगा, तो जब कभी वर्षा कम होगी तो तालाब से पानी यूज कर लिया आपने, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर सिंचाई के लिए हो, और उसी से पानी से आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, और नदियों को प्रदूषित ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि वही पानी हमें काम आता है और वो भी हमारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, पूरी चीज आपस में कनेक्टेड है। यदि पहाड़ों को हम नष्ट करेंगे तो उसका प्रभाव प्लेन्स में पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है कि हमें प्रकृति को बचाना है, और यदि हम इसमें लोकल आदमी को इन्वॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है क्योंकि उनको उससे लगाव है, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, लाइवलीहुड उसको उसी से मिलती है, वो उसको खराब नहीं करेगा, तो उसको इन्वॉल्व करना है उसके साथ।
1: आनंद जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सूखे से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्यों के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन संवर्धन करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीकी क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2032 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेंचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग जी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेंचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झिंग से भी मुलाकात की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने के विचार को सहमति दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. It has emerged as one of the most successful pillars of India's digital public infrastructure, providing an interoperable and real-time payments platform. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crores rupees to nearly 314 lakh crore rupees during the same time period. Prime Minister Modi has hailed the decade-long success of the UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling upon the countrymen to share their UPI experience, the Prime Minister stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. Defence Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to the country's private defence industry to bolster indigenous manufacturing. This step marks an important milestone in promoting greater participation of the domestic industries in the defence ecosystem by enabling them to undertake indigenous production. National Security Advisor Ajit Doval today held special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing on the India-China boundary issue and improvement of relations between the two countries. The talks assume significance as they are being held ahead of Chinese President Xi Jinping's anticipated visit to New Delhi to attend the BRICS summit on the 12th and 13th of September. Both Doval and Wang are the designated special representatives for the boundary talks mechanism, which was established in 2003 to comprehensively address the dispute of the India-China border spanning over 3,400 kilometers. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held wide-ranging talks with his Russian counterpart Sergei Lavrov in Moscow last night. In a social media post, Dr. Jaishankar said they discussed bilateral and global issues. The state-run TASS news agency said the current situation surrounding Ukraine, Iran and Afghanistan was also discussed by the two foreign ministers. Earlier, Dr. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin as the two sides discussed economic ties, focusing on key areas such as trade, energy, fertilizers and nuclear cooperation. The government is closely monitoring the prevailing seasonal respiratory illness trends across the country through a robust pan-India surveillance network. It stressed that there is no cause for panic or alarm. Secretary of Department of Health Research and Director General of Indian Council of Medical Research, Dr. Rajiv Bahl, was addressing the media in New Delhi today. He said the influenza virus currently circulating in the country are consistent with the seasonal pattern observed in recent years. The Supreme Court today agreed to consider setting up of a special bench to hear the centre's plea on OBC creamy layer criteria. The centre has sought clarification on the applicability of the 11th of March judgment of the Apex Court for candidates of the Civil Services Examination 2025. President Draupadi Murmu has extended greetings to the people on the eve of Onam and Eid-e-Milad-un-Nabi. In her message, the president said, Onam is a celebration to express gratitude to the nature on arrival of the new harvest. She expressed hope that the festival will inspire citizens to contribute to the nation's progress. In men's cricket, host Sri Lanka were 265 for 8 against India in their first innings as rain forced early stumps on day 3 of the Colombo Test. Sri Lanka are trailing by 238 runs. India are currently leading the two-match series 1-0. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं भवतारिणी।

0: भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेनदेन की मात्रा से लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वार्षिक लेनदेन की मात्रा 2016-17 में मात्र 1,78,00,000 थी, जो 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है। इसी अवधि में लेनदेन का मूल्य भी 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 314,00,000 करोड़ हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: आज दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीय

0: को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
1: 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से ये बेनिफिट मिला है।
0: बिहार निवासी सानु भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
2: एनपीसीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
0: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
3: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। श्री डोभाल और श्री वांग यी दोनों सीमा वार्ता तंत्र के विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में करीब 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान तलाशने के लिए बनाया गया था। न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर पर प्रवासी भारतीय समुदाय की महिलाओं ने एक विशेष आयोजन में भारतीय साड़ियों के रंगों और विविध रूपों की कालजयी खूबसूरती, समृद्ध विरासत और भारत की सांस्कृतिक विविधता को गर्व के साथ पेश किया। टाइम्स स्क्वायर पर रविवार को साड़ी गोज ग्लोबल कार्यक्रम का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालत पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक संबंधों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को डेटा सेंटर्स के लिए एक बेहद आकर्षक और मजबूत गंतव्य के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए जापानी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और देश को बड़े वैश्विक निवेशकों से 200 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। एक रिपोर्ट।
4: टोक्यो में जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री आकाजावा रियोसेई के साथ हुई बैठक में श्री गोयल ने कहा कि भारत जापान साझेदारी को चार मुख्य स्तंभों, व्यापार में वृद्धि, तकनीकी सहयोग को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देने के आसपास केंद्रित किया जा सकता है। इससे पहले टोक्यो में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्रों की जापान की कंपनियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने एक बड़े सुधार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार एक ऐसे विशेष ढांचे पर कर रही है जिसके तहत भारत में उत्पादन इकाई लगाने वाली उच्च तकनीक कंपनियों को आवश्यक उपकरणों और कलपुर्जों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट दी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि देश में सेमीकंडक्टर की मांग वर्ष 2032 तक 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने पिछले वर्ष 7.7% की विकास दर दर्ज की है और देश वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
3: संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले को तत्काल रोकने का आग्रह किया है। गुतेरेस ने सभी

0: पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आग्रह किया। इसमें समुद्री कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून शामिल हैं। इसके साथ ही काला सागर, होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर में नागरिक जहाजों, बुनियादी ढांचे और नागरिक नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है। ब्रिटेन मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि ओमान के पास एक तेल टैंकर पर अज्ञात प्रक्षेपास्त्र से हमला किया गया और अन्य जहाजों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत और गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजीरा ने की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अमेरिका की उप विदेश सचिव एलिसन हुकर के साथ भारत अमेरिका इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिक वेंचर पहल को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी बातचीत की। ये पहल दोनों देशों के नेताओं ने पिछले वर्ष शुरू की थी। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। भारतीय श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक अवसंरचना पर हमलों को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम आर एस रघु विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. UPI completes a decade making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for every Indian. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representative talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. External Affairs Minister S. Jayshankar holds talks with his Russian counterpart Sergei Lavrov in Moscow on bilateral and global issues. UN Secretary General Antonio Guterres calls for immediate end to attacks on commercial shipping and civilian infrastructure. And in men's cricket, hosts Sri Lanka trail by 238 runs against India in first innings as rain forces early stumps on day 3 of Colombo Test. The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system. With the system now operational across 11 countries, it has emerged as one of the most successful pillars of India's digital public infrastructure, providing an interoperable and real-time payments platform. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम हर सिंगार में। दो नजरें मिलती हैं, दिल धड़कता है, मोहब्बत हो जाती है, एकदम सेट फॉर्मूला। पर कभी कभी किसी की नजरें दिल को चुरा लिया करती हैं। कैसे? कुछ इस तरह से।

0: नजरें तो न जाने क्या कुछ कह जाती हैं, और जब इंसान प्यार में होता है तो उसकी बात ही निराली होती है। जिसे मोहब्बत हो उसकी हर अदा पे प्यार आता है। नजरें झुके तो खास और जो उठें तो बात। अब मैं इससे अच्छा क्या ही कह सकती हूँ जो ये अगला गीत कहने वाला है। ये अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म कंगन से, महेंद्र कपूर और उषा खन्ना जी की आवाज़ में है ये गीत, सुनिए।
1: झुके जो तेरे में

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये सफर है हर सिंगार का, जिसमें आज आपकी हम सफर में हूँ माधुरी, और अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म अंगूर से आशा जी की आवाज में।

इश्क में बावरा हो जाना तो आम सी बात है, और जब दिल की चोरी की बात हो तो ज़रा गौर फरमाइए इन पंक्तियों को। चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, देखते ही आंखों में घर कर गया। दहर में खाक बसर ही रहा, उम्र को इस तौर बसर कर गया। और अब दिल ही नहीं है मंजिले सीना में, यहाँ से बेचारा वो सफ़र कर गया। कि जब नैनों से नैन मिलते हैं और चोरी की बात होती है तो चोरी इस हद तक बढ़ भी जाया करती है। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी

ये प्यारा सा गीत था फिल्म धरती कहे पुकार के से मुकेश और लता जी की आवाज़ों में। और आज दिल्ली एनसीआर का मौसम बड़ा भीगा भीगा है, तो कुछ बादलों की भी बात हो जाए, बारिश की भी बात हो जाए। और एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर आपको बुरा ना लगे। और एक बड़ी अच्छी चंद लाइनें हैं कि बरस रही थी बारिश बाहर और वो भीग रहा था मुझ में, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। और मोहब्बत में जो बारिश होती है और भीगना है और बादल हैं, उसको कैसे जो है डिस्क्राइब करते हैं, वो कुछ इस तरह इस अंदाज में है कि इस गीत को सुनकर आपको एहसास हो जाएगा। और ये गीत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिल्म मेरा साया से लता जी की आवाज़ में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले

0: डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Defence Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to countries' private defence industry to bolster indigenous manufacturing. This step marks an important milestone in promoting greater participation of the domestic industries in the defence ecosystem by enabling them to undertake indigenous production. India Today highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the special representative talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry said in a statement that the two representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The two sides noted the progress made in implementing the important consensus reached between the leaders in Kazan in October 2024 and Tianjin in August last year. The government is closely monitoring the prevailing seasonal respiratory illness trends across the country through a robust pan-India surveillance network. It stressed that there is no cause for panic or alarm. Secretary of the Department of Health Research and Director General of the Indian Council of Medical Research, Dr. Rajiv Behl, was addressing the media in New Delhi today. He said the influenza viruses currently circulating in the country are consistent with the seasonal patterns observed in recent years. The Supreme Court today agreed

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एसपी शर्मा जी। एसपी, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज, सेंसेक्स जंप्स नियरली 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,300। Prime Minister Narendra Modi hails UPI as a major turning point in India's digital payments journey, says it is a source of pride for every Indian. And global crude oil prices decline around 3%.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त का रुख, सेंसेक्स में लगभग 300 अंकों का उछाल और निफ्टी 24,300 से ऊपर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में यूपीआई के बढ़ते उपयोग की प्रशंसा की, कहा यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात, और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 3% की गिरावट।

0: 335 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.5% की तेजी आई, जबकि स्मॉल कैप में मामूली बदलाव से 0.1% की सुस्ती देखी गई। इससे पहले भू राजनीतिक तनाव के बीच बाजार गिरावट के साथ खुले और दोनों सूचकांक ज्यादातर समय दबाव में रहे। हालांकि कारोबार के आखिरी आधे घंटे में बाजार में जबरदस्त रिकवरी हुई और बढ़त के साथ बंद हुए। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बाद सूचकांक अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा रहा, जिसका मुख्य कारण क्लोजिंग ऑक्शन सेशन लागू होने के बाद निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शन की पहली मंथली एक्सपायरी रही।
1: Benchmark domestic equity indices ended in positive zone today. The Sensex gained 287 points or 0.37% to close at 77,656. The Nifty advanced 116 points or 0.48% to settle at 24,335. In the broader market of the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.5%, while the small-cap 100 index dipped 0.1%. Earlier, the markets opened lower amid ongoing geopolitical tensions, with both benchmark indices remaining under pressure for most of the session. However, in the final half an hour of trade, the market staged a sharp recovery and turned into positive territory. Following the closing auction session, CAS, the indices ended the day with healthy gains. Volatility remained elevated, largely due to the first Nifty futures and options monthly expiry since the implementation of the CAS.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंडिगो 2%, अडानी पोर्ट्स 1.2% और इन्फोसिस तथा ट्रेंड 1.1% ऊपर आ गए। इसके उलट एटर्नल 0.8%, एचसीएल टेक 0.7% और पावर ग्रिड 0.5% लुढ़क गए।
1: इन द सेक्टरल इंडिसेस ऑन द बीएसई 25 आउट ऑफ 28 सेक्टर एज्ड अपवर्ड। Among the top gainers, telecommunications rose 1.4%, hospitals increased 1.3%, and PSU Bank added 0.8%. In contrast, midst small private banks lost 0.25%, private banks index dropped 0.1%, and insurance dipped marginally. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,330 companies declined, 2,007 advanced and 188 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ। एसपी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
0: एसपी, आज के कारोबार में शेयर बाजार ने शुरुआती कमजोरी दिखाई, लेकिन इसके बाद शानदार रिकवरी हुई और सकारात्मक रुख के साथ क्लोजिंग हुई मार्केट की, तो आपके आकलन में इस रिकवरी के पीछे सबसे बड़े घरेलू और वैश्विक कारण क्या रहे और इससे बाजार में मजबूत खरीदारी की वापसी हम मान सकते हैं या अभी लग रहा है कि कुछ और स्थितियां हैं?
2: देखिए, मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में है और सेकंड जो आज की एक खरीदारी की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे पॉजिटिव्स हैं। एक तो क्रूड के प्राइसेस थोड़े से स्टेबल हुए हैं, बहुत ही एस्केलेशन जो हम देख रहे थे तो शायद उसमें कुछ ऐसा पॉज यहां पे आए, तो जिससे एक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो थी वो भी थोड़ा कम हो जाती हैं जब क्रूड के प्राइसेस में थोड़ी गिरावट आती है। और दूसरा जो हमने देखा, जो हमारी कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं उन्होंने काफी अच्छे से सपोर्ट किया है। पीछे के कुछ सेशन जो है हमारे काफी स्ट्रांग रहे हैं, बीच में भले ही कुछ वॉलेटिलिटी तो जरूर रही है लेकिन ओवरऑल जो सपोर्ट है फंडामेंटल सपोर्ट के अलावा जो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं कॉरपोरेट अर्निंग को लेकर और दूसरा जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर जो हमने काफी फोकस किया और हमारे एक्सपोर्ट के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, 13% से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है
0: जी।
2: तो इन सब चीजों के मद्देनजर जो मार्केट की मजबूती है वो काफी अच्छी है पिछले कुछ महीनों से। भले ही वॉलेटिलिटी रहती है, जब भी कोई ग्लोबल डेवलपमेंट होती है तो उसका इम्पैक्ट तो मार्केट के ऊपर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है। अब कल कोई और कुछ नेगेटिव का कोई न्यूज आ जाए तो मार्केट में फिर एक गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल जब भी मार्केट में कुछ भी ग्लोबली कुछ पॉजिटिव होता है तो मार्केट स्ट्रांगली रिबाउंड करती है। ये एक इंडिया की मार्केट की एक स्ट्रेंथ है जो जहां से हमें पता चलता है कि डोमेस्टिकली वी आर वेरी स्ट्रांग बट चैलेंजेस आर फ्रॉम दी ग्लोबल साइड।
0: इसमें आपको ये लगता है कि निवेशकों का एक ट्रेंड बदल रहा है, उनके सेंटीमेंट्स भी काफी तेजी से बदलते हैं इसके साथ में?
2: बिल्कुल, उसमें क्या है कि मार्केट का अगर हम बिहेवियर देखें पीछे के 4-5 महीनों का, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है ईरान में और यूएस में, तो मार्केट में कोई ऐसी करेक्शन जो डीप करेक्शन जाके जहां पे मार्केट वहीं पे सेटल हो जाए ऐसा नहीं देखा गया। मार्केट ने रिकवर किया है। मार्केट जब भी उसको मौका मिला तो मार्केट ने स्ट्रांगली रिकवर किया। तो कुल मिला के जो गिरावट है वो उतनी ज्यादा नहीं है कि हम देखिए
0: ओवरऑल
2: जो ओवरऑल निफ्टी था वो 25,000 से ऊपर था, तो अभी हम देखते हैं कि निफ्टी 24,000 के आसपास ऑन एन एवरेज रहता है, प्लस माइनस 23,500 से 25 तक भी चला जाता है। तो ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट में कोई ऐसी डेसिलरेशन आई हो और मार्केट जाके 22,000 पे सेटल हो जाए और वहां से फिर रिकवरी का नाम ही ना ले। तो वहां पे हम देखते हैं कि बहुत ही कुछ नेगेटिव है हमारी अर्थव्यवस्था में, कुछ नेगेटिव है, हमें हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अभी मार्केट भले ही कोई करेक्शन आती है तो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली रीबाउंड भी करती है। तो जो इसका एक दायरा है जो जैसे मैंने बताया 23,500 से लेके 25,000 के बीच में ये पिछले 5-6 महीने से उधर ही अपना एक रीच बाउंड।
1: सर डॉक्टर शर्मा, विच डोमेस्टिक ट्रिगर्स मैटर द मोस्ट टुडे, द FII और DII फ्लोज और द रुपी स्टेबिलिटी और सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज?
2: देखिए इसमें लेख साहब मेनी डेवलपमेंट्स लाइक अवर फर्स्टली द इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस लाइक द क्रूड इज नाउ डिसेलरेटिंग, नॉट गोइंग सिग्निफिकेंटली अप, एंड सेकेंड इज द फंडामेंटल फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स एंड फ्रॉम द IIP नंबर्स, सो रिसेंट मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग, एंड थर्डली एज आई सेड द कॉरपोरेट अर्निंग्स आर वेरी सपोर्टिव, एंड फोर्थली सम स्टेबिलिटी in the FII inflows also, they are the net buyers, and DII is also investing strongly, and their investment is higher than the FIIs. So all these factors are supporting the market, because market strength is showing a great resilience despite many headwinds at the global level, like various negative news from Iran and US side regarding their ongoing war, but markets remains strongly resilient and behaves in a very positive way when there is some positive news at the global level.
1: I have two sector related questions to you. How exposed are Indian IT and pharma to any US slowdown or policy shifts? Also, the PSU banks and financial, will they remain the index drivers, and is that sustainable?
2: Yes, Lake Saab, because last year 25-26 was very challenging for the India's economy and India's external sector, but our economy proved very resilient despite many headwinds from the tariff front. Firstly, from the months of April, May, June, July, thereafter tussle in West Asia. Our external sector was very, very strong, and we were in a positive trajectory in our export numbers. Rather, we were higher in with US also in our export figure. That has proved that India is not dependent on any one economy or single economy. We are diversified, and our resilience is very strong. Our products are demanded at the global level. That is the strength of our products in the global market. Like during the recent 4 months, starting from April, May, June, July, our exports are showing 13.5% growth, and the merchandise exports are increasing significantly, more than 17-18%. So that is the strength of India's external sector, which is now becoming more and more resilient and competitive in the global market. So this has proven that we are, our global marketplace is very strong. We are a great support in the global ecosystem, and the growth front, we are already proven that.
1: How should the markets interpret the latest US sanctions on Iran? More political pressure than supply shock?
2: I believe this is more in noise, actually, the actual happenings, because there are so many developments. Sometimes they announce the positive developments that they are going to talk and talk peace. And sometimes they are announcing some sanctions. And I don't see that such sanctions are going to impact a single country, Iran or US. दीज सेंक्शंस विल हैव रिपरकशन फॉर द होल ग्लोबल इकोनॉमी, बट वी बिलीव देयर विल बी सम पीस टॉक एंड देयर विल बी सम पीस प्रोसेस एंड सेंक्शंस विल नॉट कम इन टू फोर्स.
0: एसपी, आज जो मार्केट में हमने हलचल देखी है नेगेटिव से पॉजिटिव जोन में आना, इसमें मासिक डेरिवेटिव्स एक्सपायरी और क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम की भूमिका रही, तो क्या आपको लगता है कि इस नई व्यवस्था के आने से मार्केट पर किसी तरह का असर पड़ा है या एक नई राह हमें देखने को मिलेगी?
2: ठीक है, मैंने इसमें एक स्टेबिलिटी देखी है. जो डेरिवेटिव मार्केट है, खास करके जो ऑप्शंस का एक्सपायरी होता है, पहले काफी वॉलेटाइलिटी रहती थी और ऑप्शंस के प्राइसेस काफी वॉलेटाइल होते थे सुबह से शाम तक, तो नाउ एक स्टेबिलिटी है प्राइसेस में. जो एक अनयूजुअल कई बार ऐसा प्रीमियम रहता था जो अभी एक नॉर्मल लेवल पे देखा गया है, विच इज प्रोवाइडिंग अ ग्रेट स्टेबिलिटी टू द इन्वेस्टर्स आल्सो.
0: ओके, आगे बढ़ते हैं. सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर में 3% हिस्सेदारी की बिक्री का ऐलान किया है. मांग अधिक रहने पर अतिरिक्त 3% हिस्सेदारी बेचने का विकल्प भी रखा गया है, जिसे ग्रीन शो ऑप्शंस भी कहा जाता है. इस तरह से कुल संभावित बिक्री 6% तक हो सकती है. इसके लिए न्यूनतम भाव 514 रूपये प्रति शेयर तय किया गया है. बिक्री पेशकश आज संस्थागत निवेशकों के लिए खुल गई, जबकि खुदरा निवेशक इसमें कल भाग ले सकेंगे.
1: The Indian equity markets will operate as usual tomorrow. However, the day will be observed as a settlement holiday on account of Eid-e-Milad. A settlement holiday occurs when trading exchanges remain open, but banks and depository are closed. As depositories will remain non-operational, the transfer of shares and the pay-in and payouts of funds will be rolled over to the next working settlement day. Tomorrow, trading in the cash, equity derivatives and commodity derivatives segments on the BSE and NSE will remain fully functional during regular market hours. However, trades executed today and tomorrow will be settled on August 27, that is Thursday. Moving on, Prime Minister Narendra Modi hailed the decade-long success of service of unified payment interface. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. He stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. The unified payment interface UPI, which was launched on this day in 2016, has completed 10 years of transforming digital payments in India. It has emerged as one of the most successful pillars of India's digital public infrastructure, providing an interoperable real-time payments platform. The UPI has surged almost 13,000-fold in transaction volume. Finance Ministry said that the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore to nearly 314 lakh crore during the same time period. Dr. Sharma, this is interoperable and it is a real-time payment platform, which is a great success, and other countries too have kind of expressed interest in it.
2: Yes, Lake Saab, this is a great development and we are global leader in the digital transaction supported by the UPI. And as you rightly said, there is a 13,000-fold surge in the UPI transactions. That is a great number. We are now globally recognized. UPI has emerged as a global platform for cross-border digital payments also, and is currently operational in 11 countries, namely United Arab Emirates, France, Bhutan, Sri Lanka, Nepal, Singapore, Mauritius, Qatar, Cambodia, Greece, and Maldives. So this is becoming now a robust system for our global transactions and supporting our economy significantly. So digital contribution in our economy is now becoming significantly strong on the back of these developments in the recent years.
0: आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना है। इसके अलावा निवेश संबंधों को गहरा करने और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकता

0: योजनाओं पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वित्त मंत्री मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ एक निवेश गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगे। एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज 0.7% बढ़ा और जापान का निक्की 225 आधा प्रतिशत ऊपर आकर बंद हुआ। एशियन मार्केट में आज बहुत ज्यादा हमने उथल पुथल नहीं देखी, क्या कारण इसके रहे होंगे?
1: वही जो मैंने बताया कि एक तो क्रूड में थोड़ी स्टेबिलिटी देखी गई है और दूसरा जो एक पीस प्रोसेस की बात होती है कई बार, जो उसको देख के भी, क्योंकि मार्केट्स अभी एक पीछे काफी महीनों से हमने देखा कि बहुत ही कंफ्यूज्ड मोड में है, मार्केट को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है। तो दैट्स व्हाई जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट है जैसे काफी एशियन मार्केट्स में वो बहुत कम हो गया है। जैसे हमारा इंडिया के उसमें हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है जब भी कोई पीस प्रोसेस आती है, लेकिन काफी मार्केट्स ऐसी हैं कि उसमें कोई ऐसा प्रोसेस भी होता है तब भी वो स्टिकी जोन में ही रहती हैं, उनमें कोई मेजर प्रभाव देखने को नहीं मिलता, तो ये भी एक कारण है।
2: Moving on, the United States has imposed sanctions under Operation Economic Outcast on nearly 60 entities, individuals and vessels over their alleged links to Iran's military activities, procurement networks and petroleum and petrochemical trade. In a fact sheet released by the U.S. State Department, the measures aim to further expose individuals and entities that enabled strikes against U.S. forces and allies and to restrict the revenue that the Iranian regime uses to attack its neighbors, support terrorism abroad, brutally oppress its own people, and hold the global economy hostage. Very briefly, how do you think India should react to such an Operation Economic Outcast, or how will the world at large react to the Operation Economic Outcast, and what repercussions could it have on the world economy?
1: Yes, repercussions can be in the financial markets, and because financial markets are already very volatile since the last many months or quarters, so going forward we have to watch carefully the developments in the financial markets and stability about the exchange rate movements particularly, so that the fundamentals of the economy are not impacted or face such kind of repercussions.
0: आगे बढ़ते हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए उसके पास 2 साल की योजना है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की घोषणा करते हुए इसे आर्थिक डी डे बताया है। वहीं ईरान के वित्त मंत्री अली मदनी जादे ने कहा कि उनका देश इन कदमों के लिए तैयार है और उसके पास जवाब देने के अपने साधन है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो क्षेत्र से तेल का निर्यात रोक सकता है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्ग होर्मुज जल डमरों मध्य से जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकता है। एसपी, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनका कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट पर, और खासतौर पर ऐसे समय में जब भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं और ऑयल्स के जो प्राइसेस और तेल की जो कीमतें हैं उनमें भी उतार चढ़ाव देखने, कभी बढ़ रहे कभी गिर रहे, भारतीय बाजारों को कैसा असर इस पर देखने को मिल सकता है?
1: देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनसे वॉलेटिलिटी बहुत क्रिएट होती है, मार्केट्स वॉलेटाइल हो जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो अभी तक हमने नतीजा देखा है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि हमारी मार्केट है स्टेबल है, मार्केट में मतलब ऑन एन एवरेज जो है स्टेबिलिटी दिखाई है, कोई ऐसी डीप डिसेलरेशन नहीं आई जहां पे मार्केट जाके सेटल हो गई हो, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा नुकसान हुआ हो, मार्केट ने रिकवरी ना किया हो, तो मार्केट हमारी रिकवर करती है। ये जो वॉलेटिलिटी है, कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आती है कभी नेगेटिव आती है, तो इनकी वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन एक जो प्रोलॉन्ग्ड जो जिसकी हम बात करें कि करेक्शन आ जाए, वैसा मार्केट में रुख नहीं देखा गया।
0: लेकिन इसका असर अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उस पर भी काफी क्षेत्रों में नजर आने लगा है, ऐसा आपको लगता है?
1: ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारा जो जीडीपी नंबर है अभी भी बहुत अच्छे से एंटिसिपेटेड है, वी विल ग्रो मोर देन 7% इन द करंट ईयर ऑल्सो, दैट इज द एस्टिमेट, दो मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव प्रोवाइडेड 6.5-7%, 6.5-7% के बीच में तो बहुत सारे अनुमान है। और इसके अलावा जो जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, एक्सपोर्ट्स बहुत

0: स्ट्रांग है, आईपी नंबर स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन एक स्टेबल ट्रेजेक्टरी में है, तो ऐसी जो वॉलेटाइल न्यूज है वो एक दिन दो दिन के लिए मोमेंटली कुछ ऐसी वॉलेटाइलिटी भय पैदा करती हैं, लेकिन जो जो अगर हम बात करें कि शॉर्ट टर्म में एक महीने में दो महीने के अंतराल में मार्केट्स एक स्टेबल लेवल पे ही बिहेव कर रहे हैं,
1: यानी निवेशकों को इस पॉइंट पर आकर के घबराने की जरूरत नहीं है।
0: जी बिल्कुल नहीं, मैं ये कहूंगा कि खास करके जो रिटेलर है उसको ऐसे मूवमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए, अगर वो इन्वेस्टेड है तो रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ना कि ऐसे पैनिक में आके अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको विड्रॉ करें, क्योंकि मार्केट्स देखा गया है जो ट्रेंड है, मार्केट्स अगर गिरावट आती है तो बहुत शार्पली रिकवर करती है।
2: सो हाउ शुड इंडियन पॉलिसी मेकर्स एंड इन्वेस्टर्स हेज अगेंस्ट अ जियोपॉलिटिकल ऑयल स्पाइक?
0: I believe this is very good question because we have observed significant volatility in the crude oil prices. The prices are prevailing in the trajectory of 50 more than 50-60%, like $55 per barrel to more than $100 per barrel. So there are major corrections also, crude decelerates sometimes to the level of 70, somewhere 70-75. So we have opportunity when there is a great correction in the crude oil prices, then we should build our inventories, build our stocks so that the future trajectory remains strong and we are not worried about the days that we have now, 50 days or 60 days. We should be operating on more than 100 days like many other countries.
2: Global crude oil prices declined over 3% today. Brent crude was trading 3.4% down at $89.01 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.6% lower at $81.94 per barrel when reports last came in. SP, why has the oil fallen despite fresh U.S. sanctions on Iran?
0: Because when there are sanctions, the demand trajectory or the business activity will be impacted. So, anticipating the lesser demand for the fuel. So, that's why when there is some negativity at the global level, then the speculation or spikes also not work that much strongly. So, that is the, I believe, reason for this.
2: So, if the price remains at this level that we are talking about, how does that change your outlook for India's inflation?
0: My outlook
2: growth
0: for India's inflation will remain stable. Inflation will remain within the RBI band, though crude prices may prevail somewhere between $90 to $100. But still, we have our supply chain very strong, and there will not be any impact on the inflation trajectory, and growth is already resilient, and our fundamentals are very strong to support the growth trajectory.
1: Okay. श्रोताओं, सराफा बाजार में सोना आज मामूली गिरावट के साथ 1,62,041 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 1.4% गिरकर 2,41,848 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। एसपी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू
2: फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर शर्मा। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices rise, Sensex jumps nearly 300 points, Nifty settles above 24,300. Prime Minister Narendra Modi hails UPI as a major turning point in India's digital payments journey, says it is a source of pride for every Indian. And global crude oil prices decline around 3%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: Namaste. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की।

उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब समय है गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम का, जिसमें हम सुनवाते हैं आपको सुनहरे दौर के सदाबहार गीत, वो भी बिना रुके। तो चलिए शुरू करते हैं।

तो इस प्यारे से गीत के साथ ही अब दीजिए माधुरी को विदा। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: आज दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकट, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। भारत ने कल भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। पेजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके साथ सुरभि और मैं लेकर हाजिर हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी आंखों से गुजर कर दिलो जा में आना, मेरी आंखों से गुजर कर दिलो जा में आना, जिस्म में ढल के मेरी रूह रवा में आना। इश्क ने देख लिए हुस्न में आफाक तमाम, इश्क ने देख लिए हुस्न में आफाक तमाम, एक सकते का वो उम्रे गुजरा में आना, मेरी आंखों से गुजर कर दिलो जा में आना, जिस्म में ढल के मेरी रूह रवा में आना।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जी हाँ, जब कभी इस खूबसूरत रात में आसमां से चांद चमकता है तो शायद उसे भी अपनी मोहब्बत पर नाज होता होगा। चांद की रोशनी, ठंडी हवाओं का एहसास और ऐसे में किसी की याद, इन सब के बीच रात और भी हसीन हो जाती है। कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ किसी के साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि कई बार दूर रहकर भी आप उसे अपने करीब महसूस करते हैं, ये भी मोहब्बत ही है। तो अगर आज की रात आपके दिल में भी किसी की याद दस्तक दे रही है तो उस याद को छुपाइए मत, कुछ पल आंखें बंद कीजिए और उस चेहरे को, उस मुस्कुराहट को याद कीजिए जो आपकी पूरी दुनिया को खूबसूरती से भर देती है। और चलिए, ऐसे में हम सुनवाते हैं आपको एक गीत रफी साहब की आवाज में। फिल्म है धरती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के

विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। जी हाँ, कुछ लोग हमारे सामने होकर भी कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों का ठहरना उनकी बहुत सारे दिल की बातें बयां कर जाती हैं। उनकी मुस्कुराहट या फिर अचानक से आई कोई याद हमारे दिल को खुश कर जाती है, और उस वक्त वो छोटे छोटे इशारे याद आते हैं जिससे मोहब्बत अपना पता छोड़ जाती है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक इशारा ही काफ़ी होता है, और जिसे समझना होता है वो इशारे से भी समझ जाता है, खामोशी से भी समझ लेता है। तो चलिए, जब बात इशारों की हो रही है तो इशारों ही इशारों में सुन लेते हैं रफ़ी साहब और आशा भोसले को कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत में।

रात के खामोश पहर में जब शहर की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, तब कुछ यादें और साफ सुनाई देने लगती हैं। कभी किसी खास शख्स की मुस्कुराहट यूं ही ख्यालों में आ जाती है, बिना दस्तक बिना वजह। शायद एहसास लफ्जों के मोहताज नहीं होते, बस एक सुकून दे जाते हैं। तो चलिए अपनी आंखों को जरा बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए उस खामोशी को, उस याद को, उस मुस्कुराहट को जिसमें किसी की मौजूदगी शामिल होती है। और अब उसी एहसास को थाम कर रखिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसा ही गीत जिसे सुनकर आपके लबों पर मुस्कुराहट आ जाएगी।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। हर रात का एक मिजाज होता है, दिन की भागती दौड़ती जिंदगी में जिन बातों के लिए वक्त नहीं मिलता, वही बातें रात की खामोशी में न जाने क्यों याद आने लगती हैं। कोई पुराना चेहरा, एक अधूरी सी मुलाकात, या फिर किसी की कही हुई वो छोटी छोटी बातें जो बरसों बाद भी दिल में कहीं ठहरी होती हैं, छुपी होती हैं। और जब हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत या गाने, तब वो पुराने खूबसूरत एहसास अचानक उभर आते हैं। शायद ये धुन हमें या आपको एक ऐसे ही शख्स की याद दिला देती है जिसे याद करने के लिए वैसे तो किसी वजह की जरूरत हमें पड़ती ही।

जब कोई पुरानी याद चुपके से पास आकर बैठती है और शहर की आवाजें अंधेरे पड़ जाती हैं और रात का सुकून भरा पहर होता है, ऐसे में दिल की बातें कुछ ज्यादा याद नहीं आने लगती। कभी सोच कर देखिए आप, कभी अकेले बैठ कर देखिए आप, तब आपको कोई चेहरा, कोई मुलाकात या किसी के आवाज, किसी की स्वर आपको जरूर सुनाई देंगे। और उस वक्त हम मुस्कुरा कर सोचते हैं कि कुछ रिश्ते वक्त के

रात खत्म नहीं होते बल्कि खामोश हो जाते हैं। कैसी खूबसूरत थोड़ी सी अधूरी सी कहानी के नाम, चलिए सुनते हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने कार्यक्रम में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: आज दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा सहयोग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक के

अध्यक्षता वाली समिति की ये इस मुद्दे पर छठी बैठक थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया या निष्क्रिय कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को चेतावनी दी गई है कि नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी भी जहाज या नाव को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ सुरभि। मैंने कब चाहा कि मैं उसकी तमन्ना हो जाऊं, मैंने कब चाहा कि मैं उसकी तमन्ना हो जाऊं, ये भी क्या कम है कि उसको गवारा हो जाऊं। मुझको ऊंचाई से गिरना भी है मंजूर अगर, मुझको ऊंचाई से गिरना भी है मंजूर अगर, उसकी पलकों से जो टूटे वो सितारा हो जाऊं। मैंने कब चाहा कि मैं उसकी तमन्ना हो जाऊं, ये भी क्या कम है अगर उसको गवारा हो जाऊं।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कहते हैं कि रात जितनी खामोश होती जाती है, दिल उतनी ही साफ तरीके से और साफ आवाज में पुरानी बातें सुनने लगता है। एक चेहरा याद आने लगता है, किसी की बातें, किसी की हंसी कानों में उतर आती हैं। शायद खूबसूरती है यादों की ये सब। वो आती हैं तो कोई दस्तक नहीं होती, बल्कि बहुत ही खामोशी से चुपचाप पास बैठ जाती हैं, जैसे बरामदे में रखी कुर्सी पर आकर कोई अपना बैठ गया हो और हम बिना कुछ कहे बस उसके साथ उस बीते हुए वक्त को महसूस करने लगते हैं। और मोहब्बत भी शायद ऐसी ही चीज़ है, क्योंकि हमेशा इजहार की ज़रूरत नहीं होती। कभी किसी की खामोशी में उसका ख्याल मिल जाता है और कभी किसी रास्ते से गुजरते हुए अचानक ही उसकी याद आ जाती है, और कभी रात के सन्नाटे में दिल बस इतना चाहता है, इतना ही कहता है कि काश काश वो इस वक्त यहाँ मौजूद होता या मौजूद होती। तो अगर आपके पास भी वो ख़ास इंसान इस वक्त नहीं है जो आपसे दूर है, लेकिन आपके दिल में है, आपकी यादों में है और आपके आपके पास मौजूद रहता है हमेशा, तो ये जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस गीत को सुनकर आप उसे एक बार फिर से याद कर बैठेंगे। जी हाँ, फिल्म है दिल एक मंदिर, लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं ये गीत।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और चलिए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हिमालय की गोद फिल्म से ये गीत। जिसे आवाज दी है मुकेश साहब ने।

जैसे कभी कभी मौसम बदलते हैं, ठीक वैसे ही रिश्तों में भी ना ये मौसम बदलता है। बात वही रहती है, इंसान वही होते हैं, लेकिन लहजे में थोड़ी सी दूरी आ जाती है। कोई अपना रूट जाए तो घर वही रहता है, शाम वही रहती है, लेकिन न जाने क्यों सब कुछ अधूरा सा लगता है। और ऐसे वक्त में मन यही सोचता रहता है कि आखिर नाराजगी किस बात की है, और वो छोटी सी मुस्कान फिर कब लौटेगी। शायद मोहब्बत की खूबसूरती भी यही है कि रूठने में भी एक अपनापन छुपा होता है। तो चलिए ऐसा ही एक नगमा आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर मन की जो खटास है वो दूर हो सकती है, फासला थोड़ा कम हो जाना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत सी धुन है, बहुत ही प्यारा सा ये गीत है, फिल्म है शागिर्द, रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं ये गीत, वो है ज़रा खफा खफा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने, और चलिए गीतों की इस बहुत ही खूबसूरत सी महफिल में अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है किस्मत, और गीत को आवाज दी है आशा भोसले और शमशाद बेगम ने।

कुछ गीत अपने संगीत की वजह से याद नहीं रहते, बल्कि वो अपने साथ एक पूरा समय लेकर चलते हैं। और कुछ गीत उस दौर की सहजता, रिश्तों की गर्माहट, प्रेम की मासूम शरारतों को भी लेकर चलते हैं। कुछ गीतों में लोक संगीत की मिट्टी की खुशबू भी शामिल होती है, जिसे हम जब भी सुनते हैं वो हमें हमेशा एक नया ही लगता है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। हमारी मुलाकात होगी एक बार फिर 2:10 पर रात सुरमई प्रोग्राम में। और अब से

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजना को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्री स्टेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह इस मुद्दे पर 6ठी बैठक थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत के मामले में गुजरात के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के अनुसार अवैध शराब में बड़ी मात्रा में मेथनॉल मिलाया गया था और इसे एक लोकप्रिय ब्रांड के नकली लेबल वाली बोतलों में बेचा जा रहा था। भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 2026 के 14वें चरण में विक्रांत पांचाल ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ का खिताब जीत लिया है। एथलेटिक्स सीरीज का अगला चरण 2 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मेरठ में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Chairing the 53rd meeting of Pragati at Siva Teerth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors, spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. India highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the Special Representative's talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry said in a statement that the two representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The two sides noted the progress made in implementing the important consensus reached between their leaders in Kazan in October 2024 and Tianjin in August last year. Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security, addressing the concluding session of National Security Strategies Conference in New Delhi. Mr. Shah said, strong internal security is essential to achieving Prime Minister Narendra Modi's vision of a Viksit Bharat by 2047. The minister said, government has successfully eliminated issues of narcotics, Naxalism and the challenges in the Northeast. He credited state police, central agencies and CAPFs for these achievements. The Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. The Delhi government has informed that more than 9,13,000 women have registered for the scheme so far, and overall 6,52,000 applications have been finally submitted. The government said that the financial assistance will be credited directly to women beneficiaries' bank account from 1st of next month. Secretary, Department of Consumer Affairs Nidhi Khare has said that Kanda Express is bringing about 800 metric tons of onions to Delhi. In a social media post, the secretary said the onion will be sold at 35 rupees per kilogram at NAFED, NCCF and Kendriya Bhandar stores. She informed that Kanda Express will initially reach Chennai, Ernakulam, Madurai and Guwahati. The Delhi government has said that there is currently no shortage of onions or sugars in the capital. Delhi Chief Minister Rekha Gupta reviewed their availability and prices in the national capital. Government said if the prices rise further, it will produce onions and sugar from NAFED and arrange to make them available at various locations across the capital. It has also assured that the items will be sold at the procurement price, while the Delhi government will cover transportation and other related costs. President Draupadi Murmu has extended greetings to the people on the eve of Onam in Eid Milad-un-Nabi. In her message, the president said, Onam is an occasion to express gratitude to nature on arrival of the new harvest. She expressed hope that the festival will inspire the citizens to contribute to the nation's progress. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 265 for 8 against India in their first innings as rain forced early stumps on day 3 of the Colombo test. Sri Lanka trailing by 238 runs. Earlier, visitors declared their first innings at 503, powered by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal centuries. India are currently leading the two-match series 1-0. The India Meteorological Department

आईएमडी हैज फोरकास्ट हैवी रेनफॉल ओवर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड ईस्ट राजस्थान टुडे. मीनवाइल पार्ट्स ऑफ दिल्ली एनसीआर विटनेस लाइट टू मॉडरेट रेन ड्यूरिंग द डे. आईएमडी हैज सेड दैट क्लाउडी स्काई कंडीशंस विल कंटिन्यू टू प्रिवेल ओवर दिल्ली विद स्पेल्स ऑफ लाइट टू वेरी लाइट रेनफॉल फॉर द नेक्स्ट टू डेज. एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस न्यूज बुलेटिन.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है रात सुरमई। खराब दर्द हुए गम परिस्थिति में रहे, खुशी की खोज बहाना थी मस्तियों में रहे। हर एक से झुक के मिले यूं कि सरफराज हुए, अजब मजाक से हम घर की गृहस्थियों में रहे। खुशी की खोज बहाना था मस्तियों में रहे।

जब हम कोई गीत सुनते हैं तब हमारे मन में गीत और संगीत के साथ साथ कुछ भावनाएं भी साफ सुनाई देने लगती हैं और इंतजार उन्हीं एहसासों में से एक है, जहां वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है लेकिन ये मन किसी एक पल पर रुक जाता है, ठहर जाता है। किसी खास कयामत की उम्मीद, उसकी आहट का ख्याल और इस भरोसे का बना रहना कि दूरी चाहे जितनी हो, मुलाकात कभी न कभी जरूर होगी। तो इंतजार और मोहब्बत की उम्मीद को बड़ी ही खूबसूरती से पिरोता है हमारा अगला गीत। जी हाँ, चलिए आपको सुनवाते हैं यलगार फिल्म का ये गीत

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कुछ रिश्तों की अहमियत उनकी मौजूदगी में कम और उनकी कमी में ज्यादा महसूस होती है। कोई अपना पास ना हो तो जिंदगी रुकती नहीं है, बल्कि जिंदगी के मायने थोड़े से बदल जाते हैं। वही दिन, वही रातें, वही शाम, वही रास्ते, लेकिन पता नहीं क्यों ये मन उसी व्यक्ति को, उसी इंसान को ढूंढता रहता है। शायद मोहब्बत का सबसे सच्चा रूप यही है कि जब वो दूर हो जाता है, फिर भी उसका ख्याल रोज़मर्रा की जिंदगी में साथ चलता रहता है। और ऐसे में कोई धुन अगर कानों में पड़ जाए तो उसकी याद आ जाती है, या फिर कोई जगह देखते ही उसका जिक्र मन में उतर आता है। इसी खामोशी, इसी कमी और गहरे लगाव को पेश करता है ये गीत।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज का गम क्या करें। पूरे होंगे अपने अरमां किस तरह, पूरे होंगे अपने अरमां किस तरह, शौक बेहद वक्त है कम क्या करें। बख्श दें प्यार की गुस्ताखियां, बख्श दें प्यार की गुस्ताखियां, दिल ही काबू में नहीं हम क्या करें। दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज का गम क्या करें। बख्श दे प्यार की गुस्ताखियां, दिल ही काबू में नहीं हम क्या करें।

ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा। अपने दिल को भी बताऊं न ठिकाना तेरा, सबने जाना जो पता एक ने जाना तेरा। ये समझकर तुझे ए मौत लगा रखा है, काम आता है बुरे वक्त में आना तेरा। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा।

0: बस प्यार रहेगा।
1: और इसी गीत के साथ रात सुरभि का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। इसी के साथ नमस्कार, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये इस मुद्दे पर 6वीं बैठक थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया है या निष्क्रिय कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को चेतावनी दी गई है कि नई बारूदी सुरंग बिछाने वाले किसी भी जहाज या नाव को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के सेंट लुइस में प्रज्ञान नंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आर एस रघु।

रात की खामोशी में एक सदा आती है, हर एक याद बीते वक्त की हवा लाती है। कुछ वादे जो गए थे राहों में कहीं, आज फिर ये शब उन्हें दोहराने आती है। जी हाँ, रात का ये सुकून और इसी गहरी खामोशी में उभर कर आती है वो बातें, वो वादे जो हमने कभी किसी से किए थे, या हमसे किसी ने किए थे, या फिर हमने खुद से किए थे। कुछ वादे जो उम्र भर निभाए गए और कुछ जो वक्त के साथ अधूरे रह गए। तो आइए इस प्यारे से वादों और यादों की दुनिया में रूबरू होते हैं हम और आप हमराही कार्यक्रम में, जिसमें अनमोल वादों की यादों का खजाना गीतों की जुबानी आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इस सफर पर आपके साथ रहूंगी मैं, आप ही के दोस्त, आप ही के हम सफर, रूपा धवन। नमस्कार। तो तैयार हैं आप इस वादे के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे जब तक हम रहेंगे? इसी वादे के साथ हम भी आपके साथ हैं और सुनवाएंगे आपको बेहद ही खूबसूरत से गीत वादे शब्द पर। तो जुड़े रहिए इसी तरह और सुनते रहिए बहुत ही मधुर मधुर तराने हमराही के सफर पर।

साथियों, दिन की रोशनी में हमारा दिमाग बस सिर्फ चारों ओर के शोर में और जिम्मेदारियों में उलझा रहता है, पर रात जब गहराती है तब कमरे की खामोशी एक आईने की तरह काम करती है। उस आईने में बहुत सारी बातों और वादों की तस्वीर अचानक से उतर आती है और हम उन्हीं ख्यालों में खो जाते हैं जिसमें वादों का और बातों का सिलसिला होता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 3:29 और 7 सेकंड। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ हमराही कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं वादों से रचे गए गीत। और जनाब, वादे कुछ ऐसे ही होते हैं जिसमें कुछ इस तरह की भावनाएं होती हैं। ना चांद की चाहत, ना तारों की फरमाइश, तेरे चेहरे पर मुस्कान रहे, बस इतनी सी है ख्वाहिश। जिंदगी के हर मोड़ पर तेरे साथ खड़ा रहूं, आज इस दिल की भी बस यही है आखिरी गुजारिश।
1: वादा?
2: हाँ वादा।

एक वादा हवाओं से किया था, एक वादा हवाओं से किया था कि तुम जब भी आओगी उसकी खुशबू लाओगी। एक वादा रातों से किया था कि तुम जब भी आओगी गहराओगी उसके दिए ख्वाब लाओगी। वक्त बीत गया, मौसम बदल गया, कुछ इंसान दूर हुए, कुछ रास्ते बदल गए, पर इस शब की खामोशी में आज भी वही वादे पुराने मेरे साथ नए बनकर ढल गए।

साथियों, अक्सर रात को कोई पुरानी किताब सिराहने रखी या तकिया, खिड़की से आती ठंडी हवा या सिर्फ आपकी बंद आंखें ही चाबी बन जाती है। इसी वक्त वो पुराने वादे सामने आकर खड़े हो जाते हैं।

कभी कभी मोहब्बत में इंतज़ार, निसार, दोस्ती, वफादारी जैसे भावों और जज्बातों को निभाने के बाद भी हमें धोखा ही मिलता है। सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसमें धोखे का एहसास भी है और वादे का एहसास भी है। इस एहसास को अपने स्वरों से पिरोया है किशोर कुमार साहब ने। फिल्म है दुश्मन और गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

वादा सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल से भी निभाए जाने वाला एहसास होता है। सबसे प्यारा वादा वो है जो बिना कहे आंखों से निभाया जाता है। कारवां फिल्म का ये गीत आप सभी सुन रहे हैं रफी साहब और लता जी के स्वर में।

रात के वादों से ये मुलाकात असल में हमें ये एहसास कराती है कि वक्त कितना भी बदल जाए, हमारी नीयत और जज्बात आज भी जिंदा हैं।

रात ढल रही है पर यादों का चिराग जलता रहेगा, वादा रहा फिर मिलेंगे ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ फिलहाल रूपा विदा लेती है। 4:10 पर फिर से आपके साथ रहूंगी अरुणिमा कार्यक्रम में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच

0: मजबूत समन्वय पर जोर दिया। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिवसीय दौरे पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भारत के महावाणिज्य दूत महावीर सिंघवी ने उनका स्वागत किया। इस दौरे के दौरान वह कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इस वार्ता में दोनों देश आर्थिक स्थिति, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, निवेश और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वित्त मंत्री अमेरिका के लिए रवाना होंगी, जहां वह G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह इस मुद्दे पर 6वीं बैठक थी। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित यह पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका भी भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आपका अपना साथी, अपना दोस्त सदाबहार, आपका चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां रात का गहराया अंधेरा धीरे धीरे हटकर उजले सूरज की किरणों को अपनी आगोश में पनाह देने की तैयारी कर रहा है। और ये वक्त है अरुणिमा का, 4:11:38। अरुणिमा में आपके साथ रहूंगी मैं, आप ही की हम सफर, आप ही की अपनी, आप ही की अपनी दोस्त रूपा धवन। नमस्कार।

आपने देखा ही होगा, जो पौधे पानी और धूप पाते हैं वही फूल खिलते हैं। ठीक वैसे ही इंसान भी वही व्यवहार दोहराता है। जिसे सराहा जाता है वो खूब तरक्की पाता है, मन की शांति पाता है और हर क्षेत्र में विजय को प्राप्त करता है। आशाओं और निराशाओं के दामन से लिपटा हुआ आदमी, उसकी जिंदगी में जब निराशाएं आती हैं तो वो हताश नहीं होता, बल्कि अपनों का साथ पाकर हमेशा आशा का दामन थामता है और थामकर हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी के रास्तों पर चलता है।

किसी को भी गलतियां गिनाना आसान होता है, पर किसी के छोटे प्रयास को पहचान कर उसे आगे बढ़ाना ही असली समझदारी है।

साथियों, सफलता पाने के लिए जब हम सच्चे दिल से प्रयास करते हैं, तब नतीजे का इंतजार न करके अपनी तरफ से हम बार बार सफलता पाने के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें हम सफल भी हो जाते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं, करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। और जब सफलता हमें मिल जाती है तो ये खुशियों को दोगुना कर देती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 4:36 और 7 सेकंड। आप हैं अरुणिमा कार्यक्रम में अपनी दोस्त रूपा के साथ और हम बातें कर रहे हैं सकारात्मक विचारों की। कभी कभी हमें गिराने वाले इंसान वरदान बन जाते हैं जो हमें और भी मजबूत और समझदार बना देते हैं, और जिंदगी में ऐसे दोस्तों का होना भी जरूरी है। दोस्त क्यों ना कहें उन्हें, जो हमारे जीवन में मजबूती देते हैं, हमें एक तरह का सहारा देते हैं समझदार बनने का। तो वास्तव में तो हमारे लिए वही दोस्त हुए ना, तो ऐसे दोस्त भी जिंदगी में होने चाहिए।

दोस्त हमें हमारी खूबियां बताते हैं ताकि हमारा हौसला बढ़े, और कुछ लोग हमारी कमियां ढूंढते हैं। पर ये कमियां भी ढूंढने हैं जब, तो इन कमियों पर जब हम नजर डालते हैं तो हम अपने आप में बेमिसाल बन जाते हैं। तो कमियों से घबराएं ना, बल्कि उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें ताकि आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें।

जी हाँ, जीने की राह तो हमें सच्चे दोस्त ही बता पाते हैं, या फिर हमारे आदर्श हमें जीने की राह देते हैं, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। खुद पर विश्वास हमारे मन को मजबूत बनाता है, जो हमारे विचारों को और भी ज्यादा समृद्ध करता है। वक्त हुआ है इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 4:44 और लीजिए हो गए 45 मिनट और 3 सेकंड। आप है रूपा के साथ अरुणिमा के सफर पर।

किसी के द्वारा झूठे सपनों में ना जीकर खुद पर यकीन करके जब हम जिंदगी की नाव पर सवार होते हैं, तब वो यकीन हमारे सपनों को संवार कर हकीकत में बदल देता है। वो हकीकत जिसे पाने की जद्दोजहद में हमने ना जाने कभी कितने त्याग और समर्पण किए थे।

कुछ लोग हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह से खुशियों की बौछारें लाते हैं कि कभी अपनी बातों से, कभी भावनात्मक रूप से जुड़कर हमें एक नई ऊर्जा में बदल देते हैं। यहाँ तक कि हमारे जीने का नजरिया ही बदल जाता है जब हम उनके साथ रहते हैं। वाकई इन खास रिश्तों की अपनी ही एक खास जगह है और ये खास जगह हमें बनाती है उनके साथ, जिन्हें हम अक्सर रिश्तों में ढूंढते हैं जो हमारे बहुत ही खास हैं।

5:10 पर भोर सुहानी कार्यक्रम होगा जिसमें आपके साथ फिर से जुड़ूंगी। फिलहाल अरुणिमा से अनुमति दीजिए, रूपा धवन को नमस्कार। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता

0: की सराहना की है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में कल उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैंपेन के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका रवाना होंगी। भारत ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया है। पेचिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों के 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श हुआ, साथ ही सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल कार्य मंत्री की संसदीय समिति ने बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से विकसित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका भारत से अभी 238 रन पीछे है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Chairing the 53rd meeting of Pragati at Seva Teerth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors, spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. India highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the special representative's talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry in a statement said that the two representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The two sides noted the progress made in implementing the important consensus reached between the leaders in Kazan in October 2024 and Tianjin in August last year. Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference in New Delhi, Mr. Shah said, strong internal security is essential to achieving Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat by 2047. The minister said, government has successfully eliminated issues of narcotics, nationalism and the challenges in the northeast. He credited state police, central agencies and CAPFs for these achievements. The government is closely monitoring the prevailing seasonal respiratory illness trends across the country through a robust pan-India surveillance network. It stressed that there is no cause for panic or alarm. Secretary of the Department of Health Research and Director General of the Indian Council of Medical Research, Dr. Rajiv Behl, said that the influenza viruses currently circulating in the country are consistent with the seasonal patterns observed in recent years. The Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. The Delhi government has informed that more than 9,13,000 women have registered for the scheme so far and over 6,52,000 applications have been finally submitted. The government said that the financial assistance will be credited directly to women beneficiaries' bank account from 1st of next month. Secretary, Department of Consumer Affairs Nidhi Khare has said that the Kanda Express is bringing about 800 metric tons of onions to Delhi. In a social media post, the secretary said the onion will be sold at 35 rupees per kilogram at NAFED, NCCF and Kendriya Bandhar stores. She informed that Kanda Express will initially reach Chennai, Ernakulam, Madurai and Guwahati. The Supreme Court has agreed to consider setting up of a special bench to hear the centre's plea on OBC creamy layer criteria. The centre has sought clarification on the applicability of the 11th of March judgment of the Apex Court for candidates of the Civil Services Examination 2025. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 265 for 8 against India in their first innings as rain forced early stumps on day 3 of the Colombo Test. Sri Lanka are trailing by 238 runs. Earlier, visitors declared their first innings at 503 runs, powered by Dhruv Jurail and Devdutt Padikkal's centuries. India are currently leading the two-match series 1-0. And that is the end of this news bulletin.

लीजिए जनाब, खुशियों की भोर आ गई है। धीरे धीरे मंजिलों के रास्तों से होते हुए आपके घरों तक सूर्य की किरणें

आ रही हैं आपको जगाने के लिए। समय हुआ है 5:11 और 19 सेकंड। आप हैं भोर सुहानी में अपनी दोस्त रूपा के साथ। नमस्कार, सुप्रभात।

ठंडी हवा का ये झोंका एक मीठा सा संदेश लाया है। उठो, जागो और पहचानो, तुम्हारा नया सवेरा आया है। आसमान का ये सुनहरा रंग गवाही देता है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी का ही साया आया है।

घड़ी की सुइयां जल्दी जल्दी दस्तक दे रही हैं और बता रही हैं 5:23 हो चुके हैं 12 सेकंड। आप हैं भोर सुहानी में मेरे साथ, यानी अपनी ही दोस्त रूपा के साथ, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। तो दोस्तों, भोर का समय आपसे कह रहा है बीती बातों को भूल जाइए। जी हाँ, बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि वो इतिहास बन चुकी हैं, वो सिर्फ यादों के रूप में रह चुकी हैं। आज के दिन को सुखद पल बनाने के प्रयास में जुट जाइए जनाब, और जल्दी से उठिए, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए। क्योंकि क्या पता आज आपने किसी से मुलाकात करनी हो, कोई ख़ास हो आपके लिए। तो जनाब, भोर सुहानी की पहली प्रहर को ज़रूर जिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।